उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: यो

0: I love FM 101. 101.
1: More music coming your way.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: guys, good guys. Good.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने कहा है कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगम दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां कौमी सलामती के तहफ्फुज के लिए नागुजीर हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होंगे। कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप लियो ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में फलस्तीनियों पर तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया है। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडम में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पूल डी में पाकिस्तान पर दूसरा मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगा।
1: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, ना पेट्रोल का खर्चा ना आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। IT, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड CS टेक्नोलॉजी साइंस में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
2: दिस इज FM.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने कहा है कि बैरूनी सर

0: दिल मुब्तला है कब से अजाबे सुकूत में, तू रब्बे नुत को लब है मुझे बोलना सिखा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम लाहौर, वेलकम खुशामदीद। जी आई नो, एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हवा के दोष पे अब आप सुनेंगे हमारा प्रोग्राम लेडीज लाउंज। मुझे कहते हैं सादिया रफीक। एवरी मंडे हम और आप होते हैं साथ साथ इस शो में। सो जनाब, उसी खूबसूरत से साथ को निभाने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं हम आपके साथ। कहिए कैसे हैं आप। वेल, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते गाते मुस्कुराते हमारे साथ साथ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। जहां भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन हमारे साथ साथ रहें। क्योंकि हमारे पास है बहुत कुछ आज के शो में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ढेर सारा म्यूजिक लाए हैं आपके लिए। हमेशा की तरह आगाज करते हैं जनाब हमारे वेदर अपडेट से। लेट्स सी क्या चल रहा है, मौसम के हालात में क्या हो रहा है। ऑलराइट, एज बी रिकॉर्डेड एट 10 AM, आई गेस वी शुड रिफ्रेश इट। सो एज बी रिकॉर्डेड एट 11 AM, इट्स 33 degrees Celsius ऑन द स्केल। मैक्सिमम टेम्परेचर आज के दिन 34 degrees, जबकि कम से कम टेम्परेचर 28 degrees रहने की उम्मीद की जा रही है। हवा में, फिजा में नमी की तनासुब की बात करें तो दैट इज 70%, 70% तक नमी है और हवा चल रही है 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। और ये वेदर इसी तरह से कंटिन्यू कर रहा है थ्रू आउट द वीक with average highest temperature of 34 degrees. यानी ऐसे ही चलने वाला है और हमने भी ऐसे ही चलना है इसके साथ साथ। एनी और जनाब, बढ़ते हैं अपने शो के आगाज की जानिब। और आई एम जस्ट थिंकिंग, सोच रही हूँ कौन से ट्रैक से हम करें आगाज। सो जनाब, दिस वन I really liked it.
1: ठंड का रूप चमोरा है,
0: आरिफ लाहौर साहब।
1: प्यार सरासर तो काए मैं खादाए।
0: Stick around, this is FM 101.
1: साना कावी सके आदा।
0: लेडीज लाउंज के साथ मैं हूँ सादिया रफीक।

0: Now you're tuned into
1: FM 101.

All right, listeners, welcome back once again. हमारे वो लिसनर्स, वो दोस्त जो इस वक्त सफ़र में हैं, रास्ते में हैं, मूव कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आपसे कहेंगे हैव सेफ वे और ये चाहेंगे कि आप दाएं बाएं आगे पीछे जहां तक आपकी नज़र जाती है घुमा लीजिए, इस बात का इत्मीनान कर लीजिए कि आप ठीक जा रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी ठीक जा रहे हैं। अक्सर दूसरों की गलती से किसी और को नुकसान उठाना पड़ जाता है। एक बहुत ही सैड और ट्रेजिक इंसिडेंट अभी दो दिन पहले हुआ कि जिसमें बहुत यंग ड्राइवर्स जो थे वो ड्राइव कर रहे थे और आई डोंट नो किस स्पीड पे ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि उस गाड़ी का कुछ नहीं बचा, उसके व्हील्स तक अलग हो गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उन दो लोगों के लिए हुआ कि जो रोड पे जा रहे थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, और वो लोग भी उस एक्सीडेंट की लपेट में आ गए। सो आई वुड से टू ऑल द पेरेंट्स स्पेशली, हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब गवर्नमेंट ने, सिटी ट्रैफिक ने बहुत काम किया, पिछले साल से ये कैंपेन चल रही है और उन्होंने बहुत सेंसिटाइज करने की कोशिश की है आवाम को कि जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनको गाड़ी ना दें, उनको बाइक देना बहुत डेंजरस है, और जब हम उनको फोर व्हील उनके हवाले कर देते हैं कि ये ले आप इसको चलाएं, तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने साथ साथ और भी कई लोगों का नुकसान कर जाते हैं। सो प्लीज़ बी वेयर, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक ही मिली है हमें, बार बार नहीं मिलनी है। सो किसी भी शौक के लिए, उस शौक के लिए जो अभी, जिसके लिए आप क्वालिफाई नहीं किए, अभी आप अंडर एज हैं, बच्चे जितनी भी जिद करें, कभी भी उनके हवाले गाड़ी मत करें। एनीहाउ जनाब, थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन होगी, लेकिन ये करनी बहुत ज़रूरी होती है, सेंसिटाइज करना, आप लोगों को बताना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनाब पैगाम होता है ये हमारी तरफ से थे, और जहाँ तक, जितने लोगों तक, जितने कानों तक पहुँचे उतना ही अच्छा है। कोई पता नहीं होता कि किसके दिल पे बात असर कर जाए। और जनाब 04211100101 इज द नंबर जिसको आप डायल करेंगे और शामिल हो सकते हैं आप हमारे शो में। आप लोगों की ऑफर कॉल्स हम रिसीव करेंगे भी थोड़ी देर में, साथ ही साथ आप डायल कर सकते हैं, नहीं डायल नहीं कर सकते, आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं जनाब हमें 447। एक बार फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101L, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए 4471 पर। आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस भी शामिल करेंगे शो में। राइट नाउ इट्स 11:14 ऑन द डायल, और अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, एंड दिस टाइम आई एम गोना प्ले आतिफ असलम। सो लेट्स एंजॉय।

All right, listeners, we're back again. FM 101, Radio Pakistan TV, और रेडियो और अखबार सभी हमारी नज़र से गुजरते हैं, आजकल उससे भी ज़्यादा गुजरते हैं जनाब सोशल मीडिया, जिसके थ्रू हम अपडेटेड रहते हैं और हम तक बहुत सारी खबरें पहुंचती रहती हैं, उन लोगों तक भी पहुंचती हैं जिनका बहुत कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसी एक न्यूज़ पे हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ अभी ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन जनाब अब हम बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक के हवाले से। बहुत ही मज़े का टॉपिक है और आई होप कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। सो आप लोगों ने आज के शो में मुझे बताना ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जब भी किसी मुश्किल में होते हैं आप, तो सबसे पहली कॉल किसको करते हैं, या सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको किससे होती है कि यार इस बंदे से डिस्कस करता हूँ मेरा मसला हल हो जाएगा, या हल ना भी हो तो हमारी कोशिश होती है, कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं कि हम सबसे पहले उनसे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले उनको बताते हैं अपने मामलात। सो वो खुशकिस्मत बंदा आपकी ज़िंदगी में कौन है जिसको आपकी सबसे पहली कॉल जाती है, सोचें, गौर करें और हमें बताएं। और फिर अनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनीफ ड्राइवर, मैंने उनसे कहा कि बताएं, आप बताएं, अभी मैं जिस एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ हरबंसपुरा वाला, उसमें आपको क्या लगता है कितनी स्पीड होगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी स्पीड कम से कम 150 प्लस होगी एटलीस्ट, जो गाड़ी की हालत है, जो गाड़ी के साथ हुआ है, और गाड़ी से भी ज़्यादा वो कीमती जाने, मतलब एक ही घर के, एक ही फैमिली के चार बच्चे और सब के सब अंडर एज। आई मीन सीरियसली, ये दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे, और ये भी हनीफा भी यही कह रहे थे कि मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी रोड पे चढ़ें हमेशा रोड की जो स्पीड लिमिट है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस रोड पे जा रहे हैं और यहाँ पे आपने किस स्पीड पे जाना है। और ये बात अगेन वही बात है कि जो एक लाइसेंस होल्डर है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो तो इस बात का ध्यान रखेगा, उसको ये सारी सेंस जो है वो उसका लाइसेंस, उसके लाइसेंस से पहले के जो इम्तिहानात हैं वो दे चुके हैं, लेकिन जो अभी अंडर एज है, जिसने अभी क्वालिफाई ही नहीं किया है उसके लिए, जिसने अभी हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई भी ना किया हो, लर्नर भी ना अप्लाई किया हो, उसको तो हम नहीं समझा सकते ना, उससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, और उसे हमें गाड़ी की चाबी भी नहीं देनी चाहिए, ये हमारा कहना है जनाब। एक दिन और भी मैं एक और साहब को सुन रही थी जो एक अच्छे मतलब कह लें कि माहिर ड्राइवर थे अपने दौर के, और मैं मुझे यही लगता है कि पिछले दौर में या पिछली जनरेशन में या उससे भी पिछली जनरेशन में जो लोग ड्राइव करते थे वो लोग बहुत बहुत एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद गाड़ी रोड पर लेकर आते थे, ऐसे ही हर कोई रोड पर नहीं आ जाता था। तो वो एक साहब को सुन रही थी मैं, उन्होंने कहा कि जो आजकल के ड्राइवर हैं ना, ये सारे बेउस्तादे ड्राइवर आ रहे हैं, मतलब ठीक है आपने टेस्ट पास कर लिया, आपने रिटन भी पास कर लिया, आपने ट्रैफिक आपने उसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो भी पास कर लिया, लेकिन स्टिल इन लोगों की प्रैक्टिस उतनी नहीं है, इन्होंने किसी उस्ताद से उस तरह से सीखा नहीं है, डांट नहीं खाई, तो इसलिए उनका इनका वो एक्सपोजर नहीं है जो पहले के ड्राइवर्स का हुआ करता था। टू विच आई एग्री कि आजकल यूथ जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर रही है, और उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो तमाम समझ बूझ रखने के बावजूद फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। एनी हाउ जनाब, हमारा टॉपिक बिल्कुल भी आज ट्रैफिक रूल्स पे नहीं है, लेकिन बात चूँकि चली तो बात चल निकली। बी वेयर, बी केयरफुल, एंड डू लेट मी नो कि जनाब आपका इन इमरजेंसी सबसे पहला कॉल जो है, सबसे पहला फोन किसको जाता है।
11 बज के हो चुके 25 मिनट, आपके ऑफ योर कॉल्स शामिल कर रहे हैं हम शो में 04221000101।

वेलकम बैक, हम लौट कर आ चुके हैं आपके साथ एक बार फिर से एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन स्टूडियो से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज और मुझे कहते हैं सादिया रफीक। हमने आपसे पूछा जनाब वो कौन है ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में जिन्हें सबसे पहले आप कॉल करते हैं जब भी कहीं फंस जाते हैं, जब भी किसी मुश्किल में होते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी होती है। और जनाब बताने के लिए आप डायल कर रहे हैं 04221100101। और फिर अभी मर्ज़ाद एहसन खान मौजूद थे और एहसन ने कहा जनाब आज मैं आपको लाहौर से सुन रहा हूँ, इससे पहले मैं भक्कर में था और भक्कर से जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था FM 101 के शोज़ में। सो वेल

और जनाब उन्होंने कहा कि अभी लाइव आएंगे तो बात होगी, आज के टॉपिक के हवाले से भी तो जनाब ज़रूर होगी। हम भी मुंतज़र हैं, आप लोग डायल करते रहिए, हमारे साथ साथ रहिए। तो जनाब टॉपिक के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, जब भी हम देखें अपनी ज़िंदगी को तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, हमारे पैदा होने से हमारे इस दुनिया से जाने तक हम लोगों में ही घिरे होते हैं। और सच में इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो तन्हा रह भी नहीं सकता, उससे किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ज़रूरतें हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने ऐसी रखी हैं कि जिसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और लोगों के साथ जो ये हमारे कनेक्शंस हैं, जो ये ताल्लुकात हैं, इन्हीं के बेस पे हमारे आमाल जो हैं उनका भी दारोमदार है और वो चल रहा है एक सिलसिला। लेकिन एक भीड़ हमारे आसपास हो, बेशक बहुत ज़्यादा लोग हों, लेकिन उनमें फिर बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं, ख़ास लोग होते हैं कि जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिन पे हम रिलाय करते हैं, इमोशनली करें, मेंटली करें, फिज़िकली करें, इकोनॉमिकली करें, तो वो बहुत चंद लोग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली हमारी फैमिली होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, घर के वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं, वो लोग जो हैं जिनसे हमारा फर्स्ट कनेक्शन होता है बेसिकली इस दुनिया में। और जब हम घर से निकलते हैं तो फिर हम कुछ ऐसे दोस्त बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कमाते हैं, बल्कि दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्त कमाए जाते हैं, और हर कोई दोस्त होता भी नहीं है। और ये तभी पता चलता है जब हम फंस जाते हैं कहीं, जब हम पे कोई मुश्किल आती है, जब हमें किसी की ज़रूरत होती है, तो फिर खुलता है हम पे कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं है। तो जो हालात होते हैं, जो बड़े हालात होते हैं, वो असल में हमें पहचान करा रहे होते हैं उन लोगों की, कि जिनकी वाकई में हमारी ज़िंदगी में जगह होनी चाहिए और जिनको हमें एक्चुअली में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनको तरजीह देनी चाहिए। सो जनाब जब हम लर्न कर लेते हैं लोगों के रवैये, जांच लेते हैं, परख लेते हैं हालात की कसौटी पर, तो फिर वो कौन से चंद नाम आपकी ज़िंदगी में, बल्कि कोई एक नाम हमने पूछा है कि जिसको सबसे पहले आप कॉल करेंगे और बताएंगे कि जनाब ये मसला हो गया मेरे साथ, आप उससे सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, हेल्प लेंगे, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप बताएंगे कि दिस इज़ व्हाट हैपन टू मी।

फ्रॉम द मूवी थी फाइन ट्रबल. अली जफर एंड आयमा बेग को हम सुनेंगे चनवे. और एहसन के नाम एहसन ने कहा कि जनाब मेरे नाम कोई भी सॉन्ग लगा दे. सो एहसन दिस वन इज फॉर यू. एवरी वन ऑफ यू स्टिक अराउंड. दिस इज एफएम 101.

जी जनाब, लॉर्ड कर चुके आपके साथ एक बार फिर से FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज और मुझे कहते हैं सादिया रफीक। आपको क्या कहते हैं, आप हमें बता रहे हैं अपनी

और साथ ही साथ आप हमें ये भी बता रहे हैं जनाब कि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी मुश्किल में मुसीबत में सबसे पहली कॉल किसको करते हैं।

और जनाब अभी ऑफर हमारे साथ शमीम आपी मौजूद थी ऑल द वे फ्रॉम इच्छरा, हमें सुन रही हैं और हमेशा की तरह बहुत अच्छे से बहुत ही खुशगवार मूड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया शो में अपनी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ। और उनका ये कहना है कि जनाब अब तो ऐसा है कि घर के मामलों में जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो तो सबसे पहली कॉल मियाँ साहब को ही जाती है और उनको ये कहा जाता है कि बस जल्दी से घर आ जाओ। सो आई एग्री जो फीमेल्स घरों में होती हैं उनकी पहली कॉल अक्सर हस्बैंड्स को ही जाती है बिकॉज वो उन पे हर तरह से डिपेंड कर रही होती हैं।

और ऐसा नहीं है जनाब कि ये डिपेंड करना है तो ये कहीं महदूद होने की बात है या खुद अपने किरदार में कहीं कम होने की बात है। ये बड़ी खूबसूरत सी बातें हैं, हम इमोशनली कुछ लोगों पे बहुत डिपेंड करते हैं, हम मेंटली जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो फिर हम एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं कि जिसके सामने हम बयान करें और वो सुने हमें, बस कुछ ना कहे, हमें जज ना करे। बिकॉज ये वो दुनिया है ना कि जो वक्त एक मिनट से पहले हमें जज करना शुरू कर देती है, मतलब लोग अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, अपने हालातों वाकयात के मुताबिक हमारे हालात को जज कर रहे होते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी हमारी होती है और हम कहाँ से गुजर रहे हैं, किस मोड़ से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ हम जानते होते हैं। सो ऐसे लोग बहुत मैं समझती हूँ कम हैं इस दुनिया में और बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि जो चुप करके आपकी बात सुने और सारी बात सुन के आपको तसल्ली दें, जज ना करें, लेक्चर ना दें। सो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी सारी बातें सुनता है और सुनकर आपको चार बातें नहीं सुनाता बल्कि कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो आई मस्ट से कि वैल्यू दैट पर्सन। यही बंदा है, इसको जाने नहीं देना।

सो जो सफर कर रहे हैं और हमें रास्ते में सुन रहे हैं, आपसे कहेंगे हैव सेफ ड्राइव, हैव सेफ वे। और जनाब नेक्स्ट ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ, आई होप आप भी इंजॉय करेंगे, शमीम आपी की फरमाइश पे शो में शामिल कर रहे हैं। हनीफ ड्राइवर, तारिक भाई कुवैत वाले और जनाब फरी को शमीम आपी का सलाम पहुंचे और हमारे सभी सुनने वालों को हमारा सलाम पहुंचे। अहमद जहांसेब की आवाज, तेरा मेरा है प्यार अमर।

जनाब 11:52 ऑन द डायल राइट नाउ, और थोड़ी ही देर में हमने बढ़ना है अपनी आज 12 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस की जाने में। जनाब कहीं भी नहीं जाना, जाना कहीं नहीं है, रहना यही है। लेकिन जनाब घड़ी पे नज़र रहती है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं साथ साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। आफिया खान हमारे साथ थी अभी ऑफर, बहुत अच्छा लगा आफिया आपसे बात करके। और आफिया का ये कहना है कि उनको जब भी कोई मसला होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहली कॉल वो करेंगे अपने बाबा जान को। तो मैंने कहा फिर बाबा जान क्या करेंगे, मसला हल करेंगे कि डांटेंगे? उन्होंने कहा पहले मसला हल करेंगे फिर डांटेंगे। तो जनाब मैं उनसे ये डिस्कस कर रही थी कि एक वर्जन हमारे फादर्स का ऐसा भी गुजरा है जो पहले डांटते थे फिर मसला हल करते थे। लेकिन ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं। ये हमें डांट रहे होते हैं तो इसलिए डांट रहे होते हैं कि वो हमें सेफ रखना चाहते हैं, हमें बचा के रखना चाहते हैं मसलों से, परेशानियों से। और जनाब इसके अलावा अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जनाब आप भी शो में शामिल हुए। और उन्होंने बहुत सारी दुआएं भी जनाब हमारे नाम की, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कहा कि जनाब अगर मुझे कोई मसला होगा घर में तो बेटे तो मेरे पास हैं, मैं पहली कॉल सबसे पहले अपनी बेटी को करता हूँ। टू विच आई सीरियसली अडोर अ लॉट, सीरियसली कितनी खूबसूरत बात की आपने, दिल खुश कर दिया। सो ये जो एक फादर डॉटर कनेक्शन है ना, बहुत कम लोग खुल के कह पाते हैं इसके बारे में। हर कोई नहीं कहता, सारे फादर्स को अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से बहुत प्यार होता है, लेकिन हर कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। तो जब मैं किसी को इतना एक्सप्रेसिव देखती हूँ ना, तो आई सीरियसली लाइक इट बहुत ज़्यादा। सो उनका भी यही कहना है कि बेटी को कॉल करता हूँ और फिर बेटी जो है वो सुबह दिन रात नहीं देखती, वो भागे चली आती है। सो दैट्स सो स्वीट। आप भी मुझे बताते रहिए जनाब कि आप किसी मुसीबत में, परेशानी में हो, कोई मसला दरपेश हो, तो सबसे पहले आप किसको कॉल करते हैं या करेंगे।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत करने पर अमरीकी सदर की तहे दिल से तारीफ की है। सदर मुल्कत ने इंडोनेशिया के यौम आज़ादी के मौके पर अपने तहनीती पैगाम में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी शराकत दारी को वसत देने की ख्वाहिश जाहिर की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके के लिए जायक में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए दो दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम की गैर मुंतखब हुकूमत के 5 साल दौर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है।

0: Big socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

All right, listeners, welcome back once again. Lot Kraju ke aapke saath news break ke baad FM 101 Radio Pakistan Lahore se. Aap sun rahe hain Ladies Lounge mere yani ke saath ya Rafiq ke saath. एक बजे तक हमारा और आपका साथ है जनाब, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कुछ अपनों की, कुछ प्यारों की, उन लोगों की जिनको हम याद करते हैं अपने मुश्किल वक्त में, उस वक्त के जब और किसी से हमें आस नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, तो हमारी सबसे पहली कॉल उन्हीं को जाती है. सो ऐसा कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में है कि जिसको आप मुश्किल में याद करते हैं? आप हमें बता रहे हैं 04211100101 पर.

अब से कुछ ही देर में हम आपकी लाइव कॉल चैन को भी अपने शो का हिस्सा बनाएंगे, आपसे लाइव बातचीत करेंगे, आपसे जानेंगे। और जनाब एक और एक्साइटिंग सा सेगमेंट हमारे पास मौजूद है, आपसे शेयर करेंगे कुछ ही दूर में, अनदर वंडर वुमन ऑफ पाकिस्तान। सो लेट्स सी आज हम किसका जिक्र करते हैं, इसके लिए हमारे साथ साथ रहिए, जाना कहीं नहीं। It's 12:06 on the dial right now and we're heading towards another song and this time I'm gonna play to Sabat. जी हाँ, सबात बातिन की आवाज़, a top hit।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: और जनाब राजे झूठे झूठी रानी झूठी झूठ की बात हो रही थी जनाब, तो हमने सोचा कुछ सच्ची खरी बातें भी कर ले। लौट कर आ चुके आपके साथ वापस एक बार फिर से और लाइव कॉल हम लेने जा रहे हैं। लेट्स सी कौन हमारे साथ, पहली लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सादिया रफीक
0: जी। जी कौन हमारे साथ?
1: बेटा जी आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, सलमानाबाद लाहौर से।
0: जी जी सलमान साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सब ठीक हैं जी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किसको कॉल करते हैं सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम हो?
1: वैसे एक बात बताऊं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि माँ बाप ने परेशानी आने से पहले ही काम कर देते थे। माँ बाप इतने समझदार थे तो, लेकिन फिर भी जब माँ बाप होते हैं उनको बंदा कहता है बाद में फैमिली में परेशानी हो, फैमिली सबसे पहले पास होती है ना, बंदा उन्हीं को कहता है। तो लेकिन ये है कि इतना शुक्र है अल्लाह का कि माँ बाप के ने बड़ा ख्याल रखा है, वो परेशानी आने से पहले ही हमारे काम कर देते थे।
0: जी जी
1: बड़ी मेहरबानी, उनकी भी बड़ी मेहरबानी और अल्लाह का भी बड़ा शुक्र है। लेकिन ये है कि जब कोई परेशानी हो, माँ बाप दुनिया में नहीं रहे, अब पहले उनको कहते थे, अब कोई और घर में जो फैमिली है बाकी सारे बीवी बच्चे उन्हें कहना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया।
1: प्रोग्राम आपका अच्छा है,
0: थैंक यू,
1: बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा बाकी कॉलर भी अभी आज आ रहे,
0: अभी आ रहे हैं सारे ही आ रहे हैं, आपके बाद सब नहीं आना है।
1: साहब आते रहते हैं लतीफ मुगल साहब, वो काफी अरसे से उनका फोन नहीं आया।
0: अच्छा
1: लतीफ साहब,
0: चलिए आपका पैगाम पहुंच गया, अब शायद आ जाए वो भी।
1: आप ये हर पीर को आती हैं?
0: जी जी जी जी पीर को।
1: चलिए ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। सो जनाब अभी तक तो फैमिली जीत रही है, हमने जितने भी अपने लिसनर्स से बात की अब तक एवरीवन हैज वोटेड फॉर फैमिली के जनाब, हम मदर को, फादर को, बाबा जान को या बेटी को या मियां को कॉल करते हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जनाब जो ये कहता कि मेरा फलां दोस्त बहुत अच्छा है, मैं सबसे पहले उसको कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ? जी आप लाइव हैं इस टाइम एफएम 101 लाहौर पर, क्या कहना चाहेंगे?
2: खान बाबा बोल रहा हूँ लाहौर डिफेंस से।
0: जी खान बाबा कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्लाह का फजल करम है बच्चा, सबसे पहले मैं कॉल करूँगा अपनी होम मिनिस्टर को।
0: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। All right, जनाब आई गेस लाइन ड्रॉप हो गई, सो आई गेस मैंने मिस कर दिया। वो अपनी बेगम का नाम लेने ही वाले थे जनाब की कॉल कट गई। और जनाब कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आई वुड से बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कीप डायलिंग 1214 ऑन द डायल राइट नाउ। एक और कॉलर ट्राई करते हैं और इसके बाद एक ट्रैक प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: मैं ठीक हूँ, इससे कौन है हमारे साथ? जी जी कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा
3: मैं ना साजिदा बात कर रही हूँ।
0: साजिदा बात कर रही है?
3: हाँ जी। जी कैसी हैं?
0: मैं खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साजिदा क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से?
3: जबरदस्त और बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, पहले तो मेरे मामा पापा थे,
0: आपकी आवाज ब्रेक हो गई साजिदा, सॉरी रिपीट कीजिएगा। ऑलराइट हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको, लाइन ड्रॉप होगी जनाब एक बार फिर से। अच्छा जितनी बात उन्होंने ओवरऑल अपने टॉपिक के हवाले से बात करने से पहले बात की वो सारी समझ आई है, लेकिन जहाँ पे टॉपिक की जिक्र छेड़ा हमने वहीं पे लाइन ड्रॉप होगी। एक ही हो रहा है, ये कौन कर रहा है हमारे साथ आखिर? कोई तो है जनाब जो नहीं चाहता आवाज़ जाए आप सबकी ऑन एयर। आपके प्यारों के नाम ऑनर जाएं। एनी वॉज ना 12:15 हो चुके हैं और नेक्स्ट ट्रैक प्ले करते हैं हम अपने शो में, शामिल करते हैं एक और सॉन्ग।

0: एक और ओएसटी, ऐसा लग रहा है जो ओएसटी डी है, आई गेस सेकंड और थर्ड ओएसटी हम प्ले कर रहे हैं, थर्ड ओएसटी।
1: जद ओ मनोंदा सी मैं रुस जान,
0: इनफैक्ट फोर्थ। लेकिन क्या है जनाब कि बहुत मेहनत होती है हमारे ओएसटीज पर,
1: मनोंदा सी मैं रुस जानदा
0: सी, एंड दे आर वर्थ इट कि उनको सुना जाए, बार बार सुना जाए। सो लेट्स एंजॉय सजना ने दिल तोड़या, सजना दा दिल तोड़या।

0: और जनाब इसीलिए कहते हैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में होता है हमें बहुत सारा पछतावा, अफसोस। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास अपोलोजाइज करने का भी मौका नहीं रहता। सो दिल मत तोड़िए और दिलों को जोड़िए। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी शादी क्या?
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ?
1: आपकी नहीं रहा गया, मैं गया और ऑनर भी कार करनी करनी।
0: जी जी बिल्कुल ठीक किया आपने। जो आपके पीछे आवाज है ना, इसको बंद कीजिएगा थोड़ा।
1: वो बाजी वाला बाहर सब्जी वाला सब्जी बेचन दिया ओरी आवाज है, तो मैं जरा इधर हो जाना। एक मिनट बाजी ख्याल होता जी।
0: जी जी जी जी
1: तो ना इधर आ गया बाजी मैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया आपका जो बिजनेस बिजनेस होना, ये ऐसा दिल को सुकून मिल रहा ना, तो चलता ही रहे।
0: क्या कहने आपके? हाँ, क्या बस,
1: क्योंकि सराखी है ना लांदे पासे दा, जिधर ऐसन खा लेंदा उधरले पासे दा ये बीबी।
0: अच्छा क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ना टॉपिक में बारे गल करूंगा, सब तो पहले कोई अल्लाह ना करे कोई परेशानी बने ते बने, तो सब तो पहले तो अपनी बेटी नु कॉल करूंगा भी फटाफट आ जा मेनू आ परेशानी। हां ते माशाल्लाह बेटा भी है, अल्लाह पाक दा शुक्र, जेडी बेटी है ना सब तो जल्दी वो पहुंचेगी।
0: बिल्कुल सही है।
1: मेरा ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਅਹਿਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਸਲੀਮ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ, ਫਰੀ ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਆਪੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ,
1: ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਬਦੁਲ ਮੀਦ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰੇਂਗੇ, फटाफट पहुंचे। अच्छा ये जो मान होता है ना, ये जो हमारा ट्रस्ट होता है, ये जो हमें एक दूसरे के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम कॉल करेंगे और वो भागा आएगा, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। और मुझे लगता है कि जैसे कम हो रही है ओवर द टाइम, हमें ऐसे ताल्लुकात मजीद चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगियों में ऐसे लोग चाहिए। हमने ओवर द टाइम एक प्राइवेसी के चक्कर में, एक सेल्फ कह लें कि स्पेस के चक्कर में ना, खुद को एलिनेट करना स्टार्ट कर दिया है लोगों से, अपने रिश्तों से, अपने आसपास के लोगों से। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे पे डिपेंड करना चाहिए, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, बिकॉज इमोशनली जब हम वीक होते हैं तो इट हिट्स रियली हार्ड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ?
2: हेलो।
0: जी जी
2: खान बाबा बोल रहा हूँ, मेरी कॉल कट गई थी।
0: हाँ जी जी जी,
2: बात कर सकते हैं?
0: जी जी बात कर सकते हैं, बोलिएगा।
2: बात ये है कि पहली कॉल जो मैं करूँगा तो अपनी बेगम को करूँगा।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस।
2: वो जब आ जाएगी ना तो वो देखेगी तो इधर सब खरीद है, कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि झूठ क्यों बोला है? मैंने कहा ये खास मेरे दिन होते हैं, जैसे यकम अप्रैल
0: अप्रैल फूल
2: बनाता हूँ। फिर मैं उसको बिठा के उसको नान चने हलवा बहुत पसंद है और का, तो फिर मैं उसको बिठा लेता हूँ। तो हमारे पास है बंगाली बाबा, उसके जब हलवा चने दाल खाते उसका सारा गुस्सा डाउन
0: हो जाता है। बिल्कुल सही हो गया।
2: वो मैंने कहा तुम घर में बैठ के बाहुओं पे हुक्म चलते, ये साफ करो वो साफ करो वो साफ करो ये साफ। बेटियों को तुम क्यों बुलाए भाई, बेटों को क्यों बुलाए, तुमने क्यों ना सर के ऊपर चप्पल रख के भाग के आती है।
0: अल्लाह हाफिज़। बहुत खूबसूरती इन रिश्तों की यही है कि इमोशनली मियाँ बीवी और हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप होता है, उसमें हम इमोशनली एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, और जितना हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे उतना ही खूबसूरती इस रिश्ते की बढ़ती है। सो देखा उन्होंने कहा कि वो सर पे चप्पल रख के भाग के आएंगे, उनको आवाज़ देंगे, तो दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड आई मस्ट से कि हम सबको अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी जो ताल्लुकात है, अपने रिश्तों को इसी तरह से लाइवली रखना चाहिए, इसी तरह से जिंदा दिली होनी चाहिए। छोटी छोटी शरारतें होती हैं जो खूबसूरती बढ़ा देती हैं, जो मजबूती बढ़ा देती हैं हमारे रिश्तों की। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम बानवान के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: शमीम बात कर रही
0: हूँ। आपकी कॉल मिल गई है जनाब, बड़ी लकी हैं आप।
3: बहुत लकी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो हर काम में हर जगह पे लकी हूँ मैं,
0: माशाल्लाह
3: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। تو سب سے پہلے تو آپ نے گانا پلے کیا, اتنا پیارا خوبصورت, بہت بہت شکریہ, تھینکس میں کہوں گی.
0: تھینک یو.
3: میری بیٹی بھی میرے ساتھ ساتھ سمیرا بھی سن رہی ہے اس وقت آپ کا شو. تو جیسا کہ سوال کا جواب تو میں دے چکی ہوں کہ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی بات ہوگی, تو سب سے پہلے اپنے میاں کو ہی فون کروں گی کہ گھر میں یہ بات ہے تو آپ جلدی سے آ جائیں, کیونکہ اماں ابو تو ہے نہیں, یعنی جن کو میں نے بلانا کہنا ہے, تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو ہی فون کروں گی, وہ آ جائیں گے.
0: مجبوری میں کال کر رہی ہیں آپ, ہے نا؟
3: نہیں, کیوں
0: پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے آپ بڑی مجبوری میں کہہ رہی ہیں کہ بس اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر انہیں کو کال کروں گی.
3: نہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. تو باقی سب سننے والوں کو بھی بہت بہت سلام, اور پروگرام کا ایک مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا شو.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ شبینہ.
3: سب کو السلام علیکم, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. آلرائٹ جناب, ایک بہت مزے کا ٹریک میں نے لائن اپ کیا ہے اور ہم اپنی یادیں تازہ کرنے جا رہے ہیں, بچپن کی یادیں. بہت سارے لوگوں کی جوانی کی بھی یادیں ہوں گی یہ. سو آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گے اس ٹریک کو. ایک ٹریک پلے کرتے ہیں جناب, اور اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں واپس, آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. بلکہ پہلے بات کریں گے ہم آج کی ونڈر ویمن کے حوالے سے, دو چار منٹ کے لیے صحیح بس. Alright, جواد کالو and شاہ زمانہ. میری اکھیاں جو مکی نہ اڑیک ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو جب ہم مشکل وقت میں یا جب کوئی کام پڑے اور کال کرے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں, وہ فون نہیں پک کرتے, یہ فون بند کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے

0: और जनाब आप लोगों की लाइव कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं शो में, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं। आज की वंडर वेमन के हवाले से बात करेंगे जल्दी से, और जो आज की वंडर वेमन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है रज़िया सुल्ताना। हमारे साथ मौजूद नहीं है लेकिन उनका जिक्र मौजूद है, ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट, और एक ऐसा जेम, एक ऐसी खातून कि जिन्होंने अपनी शादी के बाद उन हालात में कि जब उनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं थी, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और घर में मेहनत से आगाज़ लिया और फुटबॉल स्टिच करने का काम जो उनके आस पड़ोस में और भी दीगर ख़वातीन करती थी, उन्होंने उससे स्टार्ट लिया और अपने घर को सपोर्ट किया एज अ हाउस वाइफ। सो जनाब, 100 रुपये से 150-200 रुपये हफ्ता के जो उजरत के ऊपर उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, और दिल में एक लगन थी कि जनाब इन हालात से निकलना है और किसी तरह से आगे बढ़ना है। सो चलते चलते जनाब उन्होंने सियालकोट चैम्बर से अपने बच्चों को जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई, और उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म्स जो है वो सीने के का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, बहुत ही छोटी सी महदूद सी तादाद में, और उसके बाद सिलसिला चल निकला। 50 यूनिफॉर्म्स के बाद उन्हें 300 यूनिफॉर्म्स का आर्डर मिला, और उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, और वो मेहनत करती रहीं, लगन के साथ काम करती रहीं, और फिर अब एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी एक गारमेंट फैक्ट्री रन कर रही हैं, एक बिजनेस ऑनर के तौर पर जो है वो खुलकर सामने आई। एक ऐसी खातून के जिसकी अपनी एजुकेशन सिर्फ प्राइमरी है, और प्राइमरी इसलिए कि उनके गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, उसके आगे एजुकेशन की सहूलत उस वक्त नहीं थी, तो उन्होंने प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल की, और उसी एजुकेशन के साथ उन्होंने एक एनलाइटेंड ब्रेन के साथ अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की। और आज ये आलम है कि उनकी फैक्ट्री में उनके आस पड़ोस की, उनके मोहल्ले की और सिटी से और बहुत सारे इलाकों की खवातीन जो हैं उनके साथ जॉब करती हैं उनकी फैक्ट्री में, और वो बहुत सारे घरों की तकदीर जो है इस तरह से बदल रही हैं। सो वी मस्ट से कि जो लगन है, जो मेहनत है, जो कुछ कर गुजरने का जज्बा है हमारे अंदर, दैट इज़ समथिंग जिसको हमें ज़िंदा रखना चाहिए और हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। सो रज़िया सुल्ताना एक ऐसी एग्जांपल हैं हमारे लिए, हमारी दीगर ख़वातीन के लिए जो घरों में हैं और जिनको ये लगता है कि उनकी लाइफ बस अब घरों में बंद रहना है और घर के काम करना है। सो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी, जो मैंने देखी, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ऐसी ख्वातीन भी हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं कि जिन्होंने एक फ़ुटबॉल की स्टिचिंग से आगाज़ लिया, फ़ुटबॉल सीने से एक मेहनत मजदूरी करने के काम से आगाज़ लिया, और आज वो एक बिज़नेस ऑनर हैं और बहुत अच्छे से अपना घर भी चला रही हैं और कई और घरों के लिए भी वो ज़रिए माश का जो है वसीला बन गई हैं। सो जनाब कुछ और कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह से किसको कॉल करता है मुश्किल में, परेशानी में। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ, जल्दी से बताइएगा।
1: कौन किसी नु बुलांदा ते किस्मत ल्योंदी टोर। कौन किसी नु बुलांदा ते किस्मत ल्योंदी टोर, दाना पानी अपना ते हाथ मालिक दे डोर, अल्लाह सोने दा नाग नहीं रब आ गया बेदियां रोड कैंड तो।
0: क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। नहीं भाई
1: सारिया भी देखो, मैं टॉपिक दे वजह ने गल करांगा कि कोई भी बुरा मतलब मुश्किल वक्त आंदा जा कोई वैसे भी कोई थोड़ा बहुत काम होंदा है। मैं अपने सब तो बड़े बेटे नु, दो बेटे ने माशाल्लाह मेरे, मैं सब तो अपने बड़े बेटे नु पहले कॉल करना ताकि छोटे दे फिर बहाने नहीं मुकते, कॉल करा कहेगा पापा जी वो फोन जेब च मेनू पता नहीं लगा, मैं बैग चला रहा हाँ, मैनेज कर रहा हाँ।
0: सही।
1: ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
1: ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬੇਟੇ ਜਬ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੋ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰ।
1: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
0: ਚਲੇ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ?
1: ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੀਮ ਆਪੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਬਾਜੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਰਾਜਪੂਤ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬੇਰੀਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਮਾਰਾ ਬੇਗ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆ। ਲੀਲਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਣ, ਬੜੇ ਅਗਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ।
0: ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ ਜੀ?
1: ਨੀਲਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨੀਲਾ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਮੇ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਆਰ ਕਾਲਰ ਨਾ ਉਨਕੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ।
0: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ
1: ਨੀਲਾ ਜੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾ ਤੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਲਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰੁਹਾਨਗੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
1: ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੁਹਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੀਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆਓ।
0: ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਕਹੇ ਆਪਕੋ ਨੀਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਹੇ ਆਪਕੋ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪ ਕਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆਖਿਰ। 12:37 ਔਨ ਦ ਡਾਇਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਨੈਕਸਟ ਟਰੈਕ ਪਲੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਆਪ ਵੀ ਟਰੈਕ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਫੋਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਕੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਬੋਹੀਮੀਆ, ਸੌਂਗ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸੰਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਲੌਟ ਕਰ ਆਤੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਇਟਸ 12:38 ਔਨ ਦ ਡਾਇਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਔਰ ਆਪਕਾ ਸਾਥ। ਲੇਡੀਜ਼ ਲਾਊਂਜ ਮੇ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਾਦੀਆ ਰਫੀਕ, ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈਂ? ਕੀਪ ਡਾਇਲਿੰਗ 0422111001, ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਆਪਕੀ ਲੇਂਗੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਕੇ ਬਾਅਦ।

0: All right, listeners, we're back for once again. FM 101 Radio Pakistan, Lahore. Se aap sun rahe hain Ladies Lounge. Mujhe kehte hain Sadia Rafiq. Aapko kya kehte hain? आप हमें बता सकते हैं, आप हमें बता रहे हैं 04221100101 इज द नंबर जहां पे आपकी लाइव कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं अपने शो में और आपसे बातचीत कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से, उन प्यारों के हवाले से कि जिनको आप इमरजेंसी में सबसे पहले कॉल करते हैं। सो जनाब, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। आई नो बहुत मेहनत से आप लोग डायल कर रहे थे, बार बार डायल कर रहे थे कि शायद हमारी कॉल मिल जाए, और जब ड्रॉप होती है बहुत दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन हमारे साथ?
1: मैं ठीक हूँ, मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना आज।
0: बहुत शुक्रिया बिस्मा, आपने हमें सुना। मेरी भी आपसे पहली बार बात हो रही है, पता है?
1: हाँ जी, इस दिन ना रूबी आपकी होती है, तो आप मेरी होती, वो सेकंड कल होगी, ट्यूसडे वाले दिन। हाँ जी,
0: मंडे को मैं होती।
1: तो आप क्या बात कर रहे हो? मैं ना अभी अपने लिए नाश्ता बना रही थी, लेट उठी हूँ मैं।
0: मैंने
1: और अभी मैंने ऑमलेट और ब्रेड और साथ में चाय वो मैं कर रही
0: थी। इतनी तफसील से आप बता रही हैं जैसे आपने हमें दे ही जानी है ना। अच्छा बिस्मा, मैंने ये पूछा है कि अगर आप किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो सबसे पहले किसको कॉल करती हैं?
1: सबसे पहले पापा को, क्योंकि पापा नंबर उठा लेते हैं, मम्मा को पता नहीं चलता। मम्मा का फोन कभी कहाँ होता है, कभी छोटे भाई के पास होता है, कभी किसी के पास होता है, तो वो नहीं, कभी भी नहीं उठा सकती वो ना मुसीबत।
0: अम्मिया नहीं उठा सकती भाई।
1: हाँ, बस पापा को करती हूँ, फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड है दरक्षान, उसको करती हूँ। अगर पापा उठा ले तो फिर जरूरत नहीं पड़ती उसको करने की। पापा भी करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: सही। आप किसको करती हैं?
0: मैं भी बताती हूँ जनाब, मैं किसको कॉल करती हूँ। और बहुत शुक्रिया बिस्मा, आप शामिल हुई शो में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: थैंक यू,
0: टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अरे जनाब बिस्मा, इतने मज़े मज़े के नाश्ते की तफसील बताने लगी, मैंने कहा ये कोई तरीका होता है, ऐसे करते हैं किसी के साथ? कोई नाजुक दिल का भी होता है, किसी का चाय पीने का दिल कर रहा होता है, आपने तो नुमाइश ही शुरू कर दी चाय की। ऑमलेट बना रही हैं, ब्रेड बना रही हैं, साथ चाय बना रही हैं, और हमें बस बता रही हैं, ऐसे नहीं करते बिस्मा, बुरी बात। लेकिन स्वीट, वेरी स्वीट, उन्होंने कहा कि अम्मी फ़ोन नहीं उठाती, और अम्मियों के साथ ये मसला है जनाब, हमारी अम्मियों के साथ ये मसला हकीकतन है कि उनको फ़ोन लेके दिए हुए हैं लेकिन उनको नहीं पता चलता कॉल आ रही है। पता नहीं उन्होंने कहाँ रखा होता है, घर के कौन से कोने में रखा होता है। जो यंग मदर्स हैं उनके साथ तो यही मसला है जनाब, कि उनके पास स्मार्टफोन्स हैं और वो तो उनके बच्चे छोड़ते नहीं हैं, तो वो बहुत घंटों बाद जाके पता चलता है कि जनाब, जब अपने हाथ में फ़ोन आता है ना तो फिर पता चलता है कि यार किसकी कॉल आई थी, कौन कौन बेचारा सर फोड़ता रहा, दीवारों में सर मारता रहा कि कॉल उठा ले, लेकिन हम नहीं उठा पाए। 1247 ऑन द डायल, मैक्सिमम लोगों से बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ?
2: बाबरेली बोल रहा हूँ, फ्रॉम मलकंद स्वात।
0: मलकंद स्वात से हमारे साथ बाबरेली, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे?
2: बस जश्न आजादी मुबारक सब पूरी पाकिस्तान को, और आपको, आपकी पूरी टीम को, 101 के जो टीम है वो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया।
2: और हम बहुत खुश हुए, बस चक्कर लगाए हमने, उधर गए, पिशावर भी गए, भी गए।
0: तो बाबर, मेरे आज के शो का टॉपिक सुना आपने, मैंने ये पूछा है कि आप किसको कॉल करते हैं इमरजेंसी में, सबसे पहले किसको कॉल करते हैं?
2: अच्छा, इमरजेंसी मतलब जब मुझे जरूरत हो तो मैं किसको कॉल करता हूँ?
0: किसको कॉल करते हैं?
2: मेरे कॉलेज का दोस्त है।
0: क्या नाम है उनका?
2: और मेरा कजन भी है, नवाज अली नाम है, मैं अक्सर उसको कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसको कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जल्दी आओ, तो कहता है क्यों क्यों जल्दी है, मैंने कहा नाश्ता
0: बस पहुँचो। बस पहुँचो। चलें, बहुत शुक्रिया बाबर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: ठीक है मेहरबानी, मैं बोन वन मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत ज्यादा।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। ऑल द वे फ्रॉम मलकण हमारे साथ बाबर, बहुत प्यारी बात कर रहे थे, बहुत मीठे लहजे में उनका कहना जनाब कि वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं, कोई भी मसला हो तो पहली कॉल उसी को जाती है, कहते बस पहुंचो। और दोस्तों के साथ यही होता है कि हमारा हक भी यही होता है, हमारी उनके साथ एक आप कह लें केमिस्ट्री ऐसी होती है कि हम उनको पूरी तफसील कभी भी नहीं बताते, फ़ोन करते हैं और बस कहते हैं कि हाँ बस पहुंचो। सो जनाब ये मोहब्बतें और ये चाहतें यूं ही सलामत रहें और यूं ही चलती रहें, ये सिलसिले मोहब्बतों के चाहतों के जिन पे हमें मान होता है, असल में हम उन्हीं को कॉल करते हैं परेशानी में मुश्किल में, जब भी गिरफ्तार हो, हर किसी को कॉल नहीं होती।

नहीं जनाब, हम फंस गए हैं और अब समझ नहीं आ रही कि हमने कॉल लेनी है या हमने सॉन्ग प्ले करना है. ऐसा भी होता है, हो जाता है कभी कभी, नो प्रॉब्लम. और जैसे जैसे शो हम एंड की तरफ जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरे जहन में इतने मज़े मज़े के और अब भी ट्रैक आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ. सो जनाब, एक और अब भी ट्रैक है जो मैं सर्च कर रही हूँ और जैसे ही मुझे मिलता है हम उसको प्ले करते हैं. मिल गया. और जनाब, ये ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ और शो का मूड जो है ना, शो का मूड और स्टूडियो का जो माहौल है उसको थोड़ा और अब बीट करते हैं, इंजॉय करते हैं. स्टिक अराउंड, दिस इज FM 101. लौट कर आते हैं और वाइंड अप करते हैं आज के शो को.

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आप जी क्या हाल है? ठीक हो
0: जी? मैं ठीक। कौन हमारे साथ?
1: मैं अब्दुल रहमान रावी से।
0: अब्दुल रहमान, एक मिनट है आपके पास, आपने हमें बताना है जल्दी से किसको कॉल करते हैं आप जब भी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े किसी की।
1: मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ।
0: नाम लेंगे एक दो के, खुश हो जाएंगे वो।
1: हाँ जी हाँ जी, एक दोस्त है हमारा जाहिद और एक दोस्त है हमारा शहबाज।
0: शहबाज बिल्कुल ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल रहमान?
1: हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, बहुत स्वीट सी कॉल और एक मुकम्मल मैसेज दे के जनाब, ये जा वो जा, यही कमाल होता है ना, इसी को कमाल करना कहते हैं। और जनाब जाने का वक्त 12:54 ऑन द डायल राइट नाउ, और आप लोगों से इजाज़त चाहनी है हमें। और जनाब जाते जाते मैं ये कहूँगी कि एक तो मैसेज आप सबके नाम कि इमरजेंसी में हम खुद तो कॉल करते हैं, जाहिर है हमें, हमने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है लोगों को, हमें सबका आइडिया है, हमने उन लोगों के साथ मिला बरता है तो हमें पता है कि कौन हमारे काम आएगा और हम उसको कॉल करेंगे। लेकिन एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम अपने अपने फ़ोन में, अपने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी एक एक नंबर ऐसा सेव करना चाहिए ICE के टाइटल के अंडर, ICE के टाइटल के अंडर इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि अगर हमारा फ़ोन किसी को मिले और कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो किसको कांटेक्ट करे। तो कोई एक प्यारे किसी ऐसे करीबी का नंबर हम अपने फ़ोन में किसी हादसे की सूरत में, किसी प्रॉब्लम की सूरत में अगर किसी को हमारे नंबर से डायल करना पड़े तो उसका नंबर हमारी डायल लिस्ट में मौजूद हो। एनीवे जनाब, मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मैं कॉल करती हूँ अपने हस्बैंड को और मेरे एक अदद बहुत ही डियर एंड नियर और बहुत ही प्यारे भाई को। सो ये दो लाइफ लाइन्स हैं मेरी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं कहीं फंस जाती हूँ। इसी के साथ जनाब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद इस ख्वाहिश पर आपसे होगी फिर से मुलाकात नेक्स्ट मंडे इन द सेम शो जिसे हम कहते हैं लेडीज़ लाउंज। उस वक्त तक के लिए आपसे कहेंगे अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा जहाँ भी जिस भी हाल में है, जस्ट प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। और लास्ट सॉन्ग में बहुत ही मज़े का प्ले करके जा रही हूँ, आप भी इंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिए FM 101 रेडियो पाकिस्तान। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: लो जनाब, प्रोग्राम अपने एंड ते पहुंची है जे, आखिरी कॉलर। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मला खैर, बात कर रहा हूं कोई तरह
0: जी। अल्हम्दुलिल्लाह वाला खैर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त आपकी शो सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बड़ी मेहरबानी। आप क्वेटा में हैं इस वक्त?
1: बिल्कुल, हम क्वेटा में।
0: आप बड़े उस्ताद हैं। सर्दियां होती है तो लाहौर में होती है, गर्मियां होती है तो क्वेटे में होते हैं।
1: हाँ, यही तो मेरा कमाल है।
0: जबरदस्त, चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
1: ओके, अल्लाह हाफिज।
0: हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम सलाम। कौन?
2: मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहे हैं, सन्नाबाद लाहौर तो।
0: कौन बोल रहे हैं जी?
2: मोहम्मद सलमान भट्ट
0: जी। मोहम्मद सलमान भट्ट, की हाल है? ठीक ठाक जी।
2: और मैं क्या जानी भर दा, मेरा भी फोन सुन दे जाओ, की हाल चाल तुदी है? ठीक है,
0: हां शुक्र अल्लाह दा। तुसी सुनाओ, उसदा फर्स्ट क्लास प्रोग्राम पसंद आ रहा है?
2: अल्लाह दा शुक्र, बहुत जबरदस्त। मैं कहना सुल्तान भाई साहब दी यादा ताजा कर देंदे हो तुसी, मदर शाह साहब दी कमाल हो जांदा।
0: क्या बात है, मदर शाह दा डायलॉग सुनाओ फिर। मदर शाह दा
2: नहीं, मैं हुण खड़क गया, मैं नहीं, हुण आवाज ही नहीं रह गई ते खड़के तड़के खत्म हो गए। लो ताडी आंटी ने इनियां झाड़ा पा पा के ढिला कर छड़िया सानू।
0: तुसी तुसी तुसी साडी भरजाई नु कहो ना, ओ मैं टुबर खा जाऊं ते डकार ना मारा।
2: नहीं नहीं, ओ कहंदी मैं आप खा लांगी, बड़ा है बड़ा।
0: ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। चौं पैसे वाली भेड़िया बदीद हो गई है। हेलो,
3: हेलो
0: जी, कौन? चलो बड़ी मेहरबानी अब्दुल मीद, प्रोग्राम वेला मुक गया, थैंक यू वेरी मच।
3: चलो कोई गल नहीं, साडी आ ही
0: लग गई, लग गई, लग गई, लग गई, बड़ी मेहरबानी।
3: चलो खैर होवे, खैर होवे, खैर होवे।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
4: तू ही जानना है मनु, मैं भी तन्नू जान दी,
0: टांगे वाले या सवारी मैं भी तेरे हां दी। हेलो,
5: ओए कुमा, ओए फूफा, मैं चौधरी दा पुत्र, ओ मेरी दासी कौन जंदा, ओ मैं तो फिर खाया दुकान ना मारा। हां जी,
0: क्या बात है।
5: मेले दे भी गाने ले लगदे नहीं, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਾ ਚੁੰਮ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਆਈ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਵੱਲੇ ਦਈ ਦਈ ਦਈ।
0: ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੈਲੋ,
6: ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵੈਰੀ ਸਲਾਮ। ਕੌਣ?
6: ਰਾਣਾ ਯਾਸਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ
0: ਨੇ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਯਾਸਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਜੇ?
6: ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਂ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਫੀ ਵੱਲ
0: ਜੀ,
6: 6 ਸਾਲ ਮੇਲ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
0: ਓਹੋ,
6: ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10
0: ਭੈਣ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਜੇ?
6: ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਂ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਫੀ ਵੱਲ

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत करने पर अमरीकी सदर की तारीफ की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के वजीर खारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। कौमी ग़िज़ाई तहफ़ुज़ के वजीर ने पाकिस्तानी और मिस्री ज़री तहकीकी इदारों के दरमियान तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके के लिए जायक में खुफिया इतला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर का हल नागुज़ीर है। और नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में मर्दों के FIH हॉकी आलमी वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपना दूसरा पूल मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबाव एफ एम 101।

0: सजा होती है।
1: There's music and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: तो कैसा लगता है कि जब आप सोकर उठ कर आते स्टूडियो और आप शो कर रहे होते, तो बहुत अच्छा लगता है। बट एनीवेज जी, हम बात कर रहे थे 14 अगस्त जब गुजरी है और हमने एक भरपूर ट्रांसमिशन की रेडियो पाकिस्तान से, और उसके साथ साथ हमने कुछ रोल्स की बात की, कुछ अपनी तरफ से जो हम ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, हमने उनकी बात की। और अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो ये है कि 14 अगस्त तो गुजर गई है, बट आई नो कि अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जितनी भी जो आपने फ्लैग रेस किए थे, झंडियाँ लगाई थी, उन सब का जो है ना अब आपने ख्याल रखना है, और अगर वो उतर रही हैं तो उनको संभाल के रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी जो फ्लैग है या झंडी है जो वो कहीं भी ज़मीन पर ना गिरी हो, तो उसको प्लीज़ ज़रूर जो है वो कलेक्ट कीजिएगा। ऑलराइट जी, 14 अगस्त तो गुजर गई है लेकिन अब स्कूल्स खुलने का जो है ना आखिरी हफ्ता रह गया। सो बच्चों की छुट्टियों का जो है ना वो आखिरी हफ्ता रह गया, और इस आखिरी हफ्ते में जो है मुझे पता कि बहुत सारे लोग आउटिंग्स के लिए गए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है अपनी वेकेशंस को कंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी नानी दादी के घर से जो है वापस आ रहे हैं, समर वेकेशन वर्क कम्प्लीट हो रहा है, और इस टाइम जो है ना वो ये आखिरी हफ्ता या तो शॉपिंग का होता है कि बस अब जल्दी से स्कूल बैग, स्कूल शूज़, यूनिफॉर्म, वॉट एवर जी जो भी एक्सेसरीज होती हैं, नोटबुक्स खरीदनी, बुक्स खरीदनी है, इन सारी चीज़ों पे जो है ना एक आखिरी हफ्ते में जो है ना भरपूर तरीके से काम होना है, तो बच्चे जो है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि जी इस आखिरी हफ्ते में भी अभी जो अलर्ट जारी हुआ है उसके मुताबिक यही है कि जी बारिशों का सीज़न है, और बारिशों का जो है वो एक और स्पेल एंटर हो गया है, जो कि बाय द एंड ऑफ अगस्त जो है वो स्पेल रहेगा, और इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और मौसम की भी बात करेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन जी सबसे पहले हम ट्रैक की जानी बढ़ते हैं ताकि शो का बाकायदा आगाज़ कर सके। सो लेट्स सी जी, पहला ट्रैक हम कौन प्ले कर रहे हैं, इट्स आसिम अज़र।
1: सारी रात करूं इंतजार, फोन तुझे करूं कहीं।
0: ऑलराइट जी, आसिम अज़र की आवाज आप सुन रहे हैं, और साथ साथ आवाज हमदा खान की आवाज भी सुन रहे हैं।
1: सानू इत पुछ ले जरा,
0: स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के 11 लाहौर स्टूडियो से. जी हाँ जनाब, लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हम खान को, मेरा आपका साथ रहेगा. ठीक जी, 8 बजे तक 6:12 हो गए हैं और मुझे पता है कि ऑफर कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है बट अभी तक हमने ऑफर कॉल स्टार्ट नहीं की. जी जी 4G 111 पर आप भी कॉल कर सकते हैं और इसके साथ साथ जी फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/lahore के पेज पर जाना जी. पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इतना कोई मज़ा आ रहा है ना, मतलब आप लोगों को लग रहा था मैंने इस मंडे छुट्टी करनी है बट मेरे को नहीं इस मंडे सरप्राइज देते हैं. सो एनीवेज जी, मैं यहाँ आ गई हूँ और आप लोग जो है वो कॉल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं. और इतना अच्छा लगता है ना जब मैं शाम के टाइम पे शो करती हूँ और शाम के टाइम पे इतनी कोई मोहब्बत मिलती है रेडियो पाकिस्तान से, कभी आप लोगों की तरफ से, कभी जो हमारे यहाँ DOs हैं, यहाँ हमारे और जो हैं कोलीग्स कह लें एक तरह से उनका, तो इतना अच्छा लगता है कि अभी आपको पता चले कि अगर फ्रेश समोसे आए हों और चाय आई हो तो क्या ही बात है. और राइट जी, सारी नींद भी उड़ जाती है और आप जो है ना एनर्जी भी आपकी आप लेवल हो जाती है कि शाम में समोसे हो, लाहौरी हो, अच्छी हवा चल रही हो, कोई हल्की सी बारिश हो रही हो, छत पर बैठे हो या बातें चल रही हो. हर किसी का अपना अपना इवनिंग टाइम होता है ना, हर कोई अपना इवनिंग टाइम अपने तरीके से लेके चलते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि बस शाम के टाइम ना चीज़ें थम जाएँ, ठहर जाएँ, जो दोपहर में काम करना था हेक्टिक कर लिया, बस अब शाम है तो अब सुकून होना चाहिए और उसके बाद फिर आप रात की तैयारी करें, नाश्ते रात के डिनर की तैयारी करें या अगले दिन की तैयारी करें, तो वो उसके बाद होना चाहिए. चलें जी, मौसम की हम बात कर रहे थे तो मौसम के हवाले से मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जी अभी करंटली जो वेदर है ना वो खैर छत पे बैठने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर आपको आदत है, जो कि एक बड़ी अच्छी आदत होती है कि परिंदों को पानी डाला जाए शाम के टाइम पे या दाना डाला जाए और ख़ास ख्याल रखा जाए, तो ऐसे में जो है ना लोग कोशिश करते हैं कि छतों पर थोड़ा पानी छिड़का के और वो सारी हीट निकल जाती है और फिर वहाँ बैठ के जो है ना वो चाय पीते, तो बड़ा अच्छा लगता है. इस टाइम जी 33 डिग्री है और रात के टाइम पर जो है वो बारिश होने के इम्कान हैं, जो कि मैं अभी देख रही थी कि कितने परसेंट जो है वो चांसेस हैं. तो जी रात 11 बजे जो है वो तकरीबन 25% चांसेस हैं, लेकिन उससे ऑनवर्ड जो है वो चांसेस बढ़ते जा रहे हैं और सुबह 4 बजे तक जो है वो हो सकता है आपके या मेरे इलाके में बारिश हो सकती है. बट इसके अलावा जी इस पूरे हफ्ते में बारिश है, कल भी बारिश है, परसों भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी एंड देन सैटरडे भी जो है वो बारिश है. तो इस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी बहुत ज़रूरी है. गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलेगा, अगर आपने निकलना है तो कोशिश करनी है कि आपने खंभों से, इस तरह के नालों से दूर रहना है, कच्चे दरख्तों से दूर रहना है और किसी ऐसी जगह पे आपने अपनी कोई माल मवेशी या गाड़ी वगैरह जो है वो पार्क नहीं करनी, उनको नहीं बांधना, अपने जो जानवर हैं मवेशियों को किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे दरख्त के साथ, किसी ऐसे पोल के साथ जो है वो नहीं बांधना. और ख़ास तौर पे जो है वो बरसाती का इस्तेमाल करना है जितना हो सके जो है ना. अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, तो आपने जो पैदल चल रहे हैं उस सारे पानी में से गुजर के जा रहे हैं या फुटपाथ से कोशिश कर रहे हैं बच के गुजरने की, तो आपने उनके पास से हुदारा स्लो बाइक गुजारनी है, स्लो गाड़ी गुजारनी है, ताकि उनके कपड़े और उनके जूते जो हैं वो महफूज रहें. मैं बहुत देखती हूँ सुबह के टाइम पर सबको जल्दी होती है, सब ने जाना होता है, वापसी पर सब ने आना होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा ख्याल किया करें, थोड़ा सा एहसास किया करें अपने इर्द गिर्द गुजरने वालों का कि उनके कपड़े और उनके जूते जो हैं वो भज जाएं, खासकर जो पैदल जा रहे होते हैं.

ऑलराइट वेलकम बैक वंस अगेन. मैं बारिश की बात कर रही थी और अभी मुझे खबर आई है जी ऑफ एयर कॉल्स पे हमारे साथ जी एक हनीसा मौजूद थे और सेकेंडली हमें रजा चौधरी ने भी बताया कि उनके एरिया में बारिश हो रही है. सो इस टाइम डिफेंस में भी बारिश हो रही है और रजा चौधरी के मुताबिक जो ग्रीन टाउन में भी बारिश हो रही है. तो बिल्कुल जी बारिश हो रही है और जिन इलाकों में बारिश हो रही है तो वो मौसम को ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं. साथ ही साथ शाम का टाइम है तो शाम को भी इन्जॉय कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जी इन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप हमारे साथ शेयर की हनीफ साहब ने, और इन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है और आपने उस पानी में से गाड़ी गुजारनी है और आपको पता है कि आपका जो बम्पर है गाड़ी का वो पानी के अंदर से गुजरेगा, तो ऐसे में आपने जो है वो गाड़ी का एसी ज़रूर बंद करना है क्योंकि उससे इंजन पे लोड काफ़ी ज़्यादा होता है. वो लोड कम होगा तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी. सो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको किसी ऐसी जगह से गुजरना पड़ रहा है, मजबूरी है आपकी, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, बहुत बारिश हुई है, तो ऐसे में जो है वो कोशिश करें कि इंजन का लोड कम करें और उस एसी को जो है वो बंद करें और फिर गाड़ी जो है वो वहाँ से गुजारें. और इसके साथ साथ जी मुझे कहते हैं कि जी आज आप बड़ी फ्रेश लग रही है. मैंने कहा इसका मतलब सो के आना चाहिए. सो के आने के देखिए फायदे होते हैं, सो के आओ तो फिर आप फ्रेश होते हैं. अच्छा एक बड़े मज़े की चीज़ होती है समटाइम्स, हम सब की एक आदत होती है ना कि जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जी आपने खाना जो है वो हमेशा सीधे हाथ से खाना है और उल्टे हाथ से नहीं खाना. लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनकी ज़रा हैबिट डेवलप हो जाती है और वो हैबिट चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसी तरह से हमें कहा जाता है कि जी सीधे हाथ से लिखना है, उल्टे हाथ से नहीं लिखना. लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड वो होते हैं, मतलब लेफ्ट ही होते हैं, जो लिखते ही उल्टे हाथ से, है ना. सो ऐसे में जी बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि जी मुझसे अगर आप कहेंगे ना कि मैंने कुछ काटना है छुरी से या कैंची से, तो मुझसे वो राइट हाथ से नहीं होगा, मुझसे वो हमेशा वो लेफ्ट हाथ से होगा. खाने में लिखने में मैं राइट हाथ यूज़ करूँगी. तो वो एक होता है ना कि आपके ब्रेन ने एक डिवाइड किया होता है कि ये चीज़ मुझसे इस हाथ से नहीं होगी, ये उल्टे हाथ से होगी, ये सीधे हाथ से होगी. तो एक चीज़ होती है कि आप अपने ब्रेन को जो है ना वो ट्रेन कर सकते हैं, जिसे कह सकते हैं न्यूरोप्लास्टी थ्योरी कहते हैं. कि कभी कभी आपको लगता है ना कि कुछ लोग इतने पुरसकून कैसे होते हैं, कैसे होते हैं जी, उसके लिए एक बड़ी ट्रिक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं भी प्रैक्टिस करूँगी. लेकिन आप लोग भी कीजिएगा, अगर आप लोग करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएगा. वो उसमें पहली चीज़ क्या है कि जी आपने क्या करना है, आपने अपने दांतों को जो है ना ब्रश करना है. अगर आप सीधे हाथ से ब्रश करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उल्टे हाथ से भी ब्रश करें. मतलब अगर आप उल्टे हाथ से ब्रश करने के आदी हैं, अगर आपको लगता है कि उल्टे हाथ से ब्रश ठीक होता है आपसे, तो अब आपने सीधे हाथ से भी ब्रश करना है. अच्छा कुछ बच्चे होते हैं ना इतने मल्टी टैलेंटेड होते हैं कि पेपर्स में स्पेशली ये चीज़ बड़ी काम आती थी. मैं स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स की अगर बात करूँ, इतना लिखना पड़ता था. तो ऐसे में वो बच्चे जिनको बड़ी प्रैक्टिस होती थी, वो बड़े इस तरह के शार्प बच्चे होते थे जिनको प्रैक्टिस होती थी दोनों हाथों से लिखने की. वो कभी राइट से लिख लेते थे, कभी एक हाथ थक गया तो उल्टे हाथ से लिख लिया. बट खैर हमें तो आता नहीं था. लेकिन जी ऐसा क्या होता है, इस वजह से जो है ना आपका ब्रेन जो है अडेप्ट करता है और ये ऑटोमेटिक हो जाता है. अगर आप कुछ हफ्ते करते रहेंगे ना कि आप दाएं हाथ से ब्रश कर रहे हैं तो अब आप बाएं हाथ से कर रहे हैं, फिर आप बाएं हाथ से अगर टूथब्रश कर रहे थे तो अब आप दाएं हाथ से कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका ब्रेन जो है वो खुद ही रीवायरिंग करता है और अपने आप को चेंज करता है और ये आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है. इसी तरह से एक चीज़ होती है कि जब हम कहते हैं ना कि हम बुरा सोचते हैं फिर बुरा ही होता है. सो अगर आप हर दफ़ा अपने आप को वो कोसते रहते हैं ना कि जी मुझसे तो हमेशा चीज़ें गलत होती हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आपका ब्रेन इस चीज़ को भी अडेप्ट कर लेता है. अडेप्ट करने का मतलब ये है कि वो इस चीज़ को सीख जाता है और इस पैटर्न को समझ जाता है कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है. अब जब आप हर दफ़ा अपने आप को कोसते रहते हैं ना कि जी ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे से ही हमेशा चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो आपका ब्रेन ये चीज़ सीख जाता है. तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा गलत होने लगता है तो जितनी नेगेटिव थॉट्स होती हैं ना, बुरी सोचें होती हैं, वो सारी की सारी इंस्टेंटली अपेयर होती हैं और ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि आपने अपने ब्रेन को सिखा दिया होता है कि जी ये अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मेरी वजह से हुआ है, और कुछ भी गलत होने लगा तो जितनी बुरी सोचेंगे वो सारी चीज़ आपका ब्रेन जो है वो सीखना शुरू कर देगा. सो आप अपने ब्रेन को जो है वो खुद सिखा सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा जो है ना जिसे कहते हैं ना काम बना सकते हैं, पुरसकून इंसान बना सकते हैं. और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो थी कि अगर आप दाएं हाथ से ब्रश करें तो आप बाएं हाथ से आप अपनी जो ब्रेन को है ना कंट्रोल करें और उसको चेंज करें, और सेकेंडली आप अपनी सोच को जो है वो कंट्रोल करके अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं.

अच्छा जी, एक और बड़ी मज़े की बात मैंने पढ़ी. हम सबको आदत थी बचपन में, तकरीबन लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा आदत होती है, लड़कों को शायद थोड़ी कम होती है, लेकिन बचपन में सबको शौक़ होता है शीशा देखने का. और बचपन में हमें बहुत डांटा जाता था इस बात पे और बहुत बार जो है ना मना किया जाता था कि जी शीशा क्यों देखना है, इतना शीशा कौन देखता है, और शीशा इतना देखना कहते थे कि अच्छा नहीं माना जाता था कि शीशा इतना क्यों देखना है. बट जी अब अगर मैं आपको बताऊँ कि आप अगर कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जो आपके माइंड को इतना इतना इतना रीवायर कर सकती हैं, मतलब चेंज कर सकती हैं, कि आप जो है वो डेंजरसली, मतलब इतने स्मार्ट आप बन जाएंगे ना, इतने आप एक्टिव बन जाएंगे, उसमें एक चीज़ है शीशा देखना. और वो कैसे है जी, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रैक के बाद बताऊँगी. अभी एक ट्रैक के जाने बढ़ते हैं जी, ट्रैक प्ले करते हैं, और ट्रैक के बाद जब हम लौट कर आएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो जो बचपन में हमें कहा जाता था ना कि शीशा देखना क्यों बुरा है और शीशा नहीं देखना चाहिए, तो उसमें अच्छा क्या है. अब जो अच्छे वाला फैक्टर है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जी किस तरह से शीशा देखना जो है वो अच्छा भी साबित हो सकता है. लेट्स सी जी, नेक्स्ट ट्रैक कौन सा है. ये ट्रैक है जी ज़िशान अली की आवाज़ में, और बहुत खूबसूरत ट्रैक है जी, खूबसूरत सी शाम के लिए खूबसूरत सा ट्रैक.

Alrighty, welcome back once again. Radio Pakistan FM 101 के live in Lahore studio से आप सुन रहे आज हमदा खान को मेरा आपका साथ रहेगा ठीक ठीक ठीक जी 8 बजे तक एंड 6:33 PM on the dial और ऑफर कॉल्स का सिलसिला जारी है 0421-000-101 पर आप कॉल कर सकते हैं. आई नो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बस हमारी भी कॉल उठा ली. अभी एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे और जब मैंने ये बात की कि आप अगर चिड़ियों को या परिंदों को जो है वो दाना डालते पानी डालते तो इस टाइम पर आपके पास थोड़ा सा एक मोमेंट होता है कि आप जो है ना वो छत पर टाइम गुजार सकते हैं या अगर आपके सहन खुले हैं वहाँ पर आप डालते हैं तो वहाँ पे भी आप टाइम गुजार सकते हैं. तो ये बता रहे थे कि अभी इस टाइम पे शाम के टाइम में जो इनके छत पर जो पौधे लगे हुए हैं, जो गमलों में पौधे लगे हुए हैं, उसमें न्याजबो का पौधा है. और मैं न्याजबो से इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना खैर इतनी तो कोई प्लांटिंग नहीं आती, लेकिन आपको खुशी बड़ी होती है जब आप कहीं से कोई थोड़ी सी टहनी उतार के लाएँ और वो पौधा आपका बढ़ जाए. तो न्याजबो का पौधा ऐसा था कि जो कि मैंने पिछले साल जो है ना मुझे बड़ा खूबसूरत लगा वो, और बड़ी खूबसूरत सी उसकी ना फ्रेग्रेंस होती, स्मेल होती है. तो मैंने ऐसे ही जो है ना वो ला के घर में ना एक छोटी सी टहनी लगा दी और वो अब इतनी इतनी इतनी बढ़ गई है ना कि जब भी मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैंने लगाया था और ये इतना बढ़ गया. तो इसके अलावा जी इनकी छत पे और बहुत सारे जो है वो पौधे हैं, बहुत सारे हैं जिनको देखकर जो है ना अच्छा लगता है और यकीन माने वाकई अच्छा लगता है. और मैं कहती हूँ कि एक छोटा सा ना किचन गार्डन होना चाहिए आपके पास, छोटी छोटी छोटी छोटी सब्जियाँ जो है ना जो बड़ी बेसिक सी होती हैं, सब्जियाँ ना कहें आप वो कह लें कि धनिया पुदीना कह लें या उस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो ऊपर गार्निशिंग के लिए. तो मैं कहती हूँ इस तरह की चीज़ें लगी हों आपके पास, आपके पास सहन में जगह हो या छत पर जगह हो तो आप छोटी छोटी जो है ना इस तरह के पौधे ज़रूर लगाएं. उसके अलावा जी हम जब ये उल्टे हाथ से टूथब्रश करने की बात कर रहे थे तो ये जो है ना कहते हैं कि आप लोगों को मशवरा दे रही हैं, तो मैंने कहा ये तो आपके दिमाग को ट्रेन करने की बात है ना. तो कहते हैं कि जब एक हाथ पे चोट लग जाए तो आपको मजबूरन दूसरे हाथ से खाना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, तो वो समटाइम्स मजबूरी भी सिखा देती है. तो इसी तरह से इनकी एक जॉब का पार्ट था जिसमें इन्हें उल्टे हाथ से जो है ना कुछ ड्राइंग वगैरह करनी थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने उस चीज़ को सीखा भी, शुरू में मुश्किल भी होती थी. और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो एक मरहला था ना मेरी ज़िंदगी का वो होता है ना कि जब बच्चे को आप पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं तो पता नहीं क्यों मैंने आम बच्चों की तरह पेंसिल पकड़नी थी सीखी मतलब जैसे बाकी सब लिखते होते थे ना पेंसिल, मैंने हमेशा दो उंगलियों के बीच में, और उसकी वजह से जो मेरी ये सेंटर फिंगर थी ना उसकी हड्डी जो है ना वो बिल्कुल दब गई और वो अंदर चली गई. लेकिन मैंने लिखा सारी ज़िंदगी ऐसे ही है, मुझसे कभी भी जो है ना वो उस तरह से पेंसिल नहीं पकड़ी गई. और बड़ा मेरे लिए मुश्किल रहा ये मरहला. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जी पेंसिल नहीं सही पकड़ती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन मैं कहती थी ठीक है हैंडराइटिंग तो अच्छी आ रही है ना बस ठीक है. अच्छा जी उसकी वजह से जो है ना खैर मैंने थोड़ा सा फेस भी किया, मेरी जो हड्डी थी उसमें दर्द भी रहती थी और मैं बहुत दबा के लिखती थी लेकिन मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सीखते भी हैं, कुछ चीज़ें आप में स्पेशलिटी भी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिफरेंट भी बना देती हैं.

नाइट जो मैं शीशा देखने की बात कर रही थी और मैंने कहा कि बचपन में हमें जो है ना बहुत डांटा जाता था, टोका जाता था इस बात से कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो शीशा नहीं देखना. और लड़कियों को मुझे लगता है बच्चे को वैसे भी ज़रा ज़्यादा शौक होता था. लेकिन एक चीज़ और भी कही जाती थी कि अगर आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है ना, या आपको कोई एक्टिंग वगैरह का शौक है, या आपकी कोई स्पीच है, इवन अगर आपने कोई परफॉर्म करना है कहीं स्टेज पर, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी जो है ना कहा जाता था कि शीशे में देख के जो है ना आप बोला करो और आप जो है ना प्रैक्टिस किया करो. तो ये बात की जाती थी. और अभी मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ कि आप इतने स्मार्ट कैसे बन जाएंगे, क्या हॉबीज़ हैं, उसमें एक शीशा देखने की भी है. और वो कैसे है कि जी आपने अपनी आंखों में ना 10 मिनट आपने रोज़ शीशे में देखना है. और ज़ाहिर है जब आप शीशे में देखेंगे तो आप अपने आप को ही देखेंगे और अपनी आंखों में ही देखेंगे. तो उस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए. और उसके बाद जो है ना आपके अंदर से आपका वो एक वरियन निकलेगा, एक वो इमेज निकलेगा आपका, जो कि आप एक्चुअली तोड़ना चाह रहे हैं. समटाइम्स होता है ना, हम शाई फील कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, कोई स्किल होता है हमारे अंदर, चाहे वो एक्टिंग का हो, सिंगिंग का हो, या कोई डिबेट वगैरह आपने करनी है, कोई स्पीच करनी है. तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप शीशे में देख के करें.

अगर। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बड़ी यूनिक लगी। एक चीज़ होती थी ना जो मैं आपसे बात करती थी हमेशा कि लिखे लिखे लिखे लिखे, और हमें कहा भी जाता था बचपन में कि जी अगर आपके कोई गोल्स हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कोई है आपके अंदर कोई कि आपने ये चीज़ हासिल करनी है, तो उसको आप लिख के जो है ना वो कहीं लगा लें जहाँ आप बार बार देखें। तो एक चीज़ होती है रिवर्स जर्नलिंग, उसमें क्या होता है कि जी आपने खुद से स्टोरी क्रिएट करनी होती है अपने कल के बारे में, और उसको आपने लिखना होता है हर डिटेल, हर विन, मतलब आपको ये हासिल होगा, आप ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा जो आपको लगता है, जो आप अपने लिए चाहते हैं उसको आपने ऑलरेडी जो है ना लिख लेना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस में यानी आपके दिमाग के अंदर जो है ना कहीं पे वो रिहर्स होता है, और वो सारी सक्सेस जो है ना पहले ही आप रियलिटी में उसको कैच कर चुके होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक थोड़ा सा नुकसान ये भी होता है ना कि समटाइम्स आपकी उम्मीद बन जाती है। सो लेट्स सी कि जी ये कितना यूज़फुल है करके देखेंगे, लेकिन होता ये है कि समटाइम्स जब आप चीज़ों को लिख लेते हैं जिनको आपने अचीव करना होता है, तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी पॉजिटिव साइड जो है वो ज़्यादा अच्छी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आप पहले से लिख के रख लेंगे कि मुझे ये हासिल करना है, ये करना है, और आप अपने आने वाले कल को जो है वो खुद एक बार जो है ना, जैसे कहते हैं ना, खुद एक बार आप पूरा रीडिज़ाइन करेंगे। तो ऐसे में जो है ना ये चीज़ अच्छी

ऑलराइट जी, ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौरिया बता रहे हैं कि जी अच्छी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है जी। अभी एक और लाहौरी हमारे जो इचरा बाज़ार से सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने भी बताया कि जी बाहर अच्छी हवा चल रही है और इस टाइम ये छत पे गए हैं तो क्या खूबसूरत मंजर इन्होंने भी एक्सप्लेन किया। और अच्छा लगता है मैं साथ में जब आप लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना कि ऐसे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और छत पर ऐसा मंजर है तो मैं भी साथ में ना इमेजिन कर रही होती हूँ। मेरी हमेशा से आदत रही है कि जब मुझे कोई स्टोरी सुना रहे हो या कोई एक मंजर कशी कर रहे हो ना किसी चीज़ की तो मैं हमेशा ना उसको अपने माइंड में जो है ना बिल्डअप करना स्टार्ट कर देती हूँ और मैं उसको इमेजिन करके ना वो एक फील करती हूँ कि ये अच्छा कैसा लग रहा होगा, किस तरह का सीन होगा। तो मैंने अभी इमेजिन किया तो ये बहुत खूबसूरत लगता है कि इस टाइम पे चिड़ियाँ जो है ना बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि शाम है और जैसे ही सूरज ग्रूब होगा तो चिड़ियाँ और सब अपने आशियानों पर चले जाएंगे। सो उससे पहले की जो एक चहचहाट होती है ना जो आपकी शाम को और खूबसूरत बनाती है, सो वो अभी मंजर इन्होंने देखा है और उसको इन्होंने इन्जॉय किया। और उसके साथ साथ तो मुझे पता है कि आप लोगों ने सब ने जो ये बात पकड़ ली है कि ये जो सीधे हाथ से टूथब्रश करते हैं वो कभी उल्टे हाथ से भी करके देखें, तो इन्होंने भी इस बात पे सोचा और इन्होंने अपने जो इनके साथ हैं जो वहाँ पे काम करते हैं इनके कोलीग हैं उनसे इन्होंने डिस्कस किया कि क्या ऐसा किया आपने किया और करना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे उल्टपटांग काम जो है ना कर लेने चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे उल्टपटांग काम वाकई कर लेना चाहिए, समटाइम्स आपको डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है, समटाइम्स आपका ध्यान बढ़ जाता है और समटाइम्स आप जो है ना जाने में कुछ अच्छा आपका ब्रेन जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आप एक चीज़ पर कोशिश करें, एक चीज़ आपकी रूटीन है ना, टूथब्रश करते हुए हम क्या ही करते हैं, क्या ही एफर्ट करते हैं, हमें पता है बस टूथब्रश पकड़ना है और एट टाइम्स तो हम शायद गौर भी नहीं करते। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि मैं राइट हैंड से टूथब्रश करती हूँ या लेफ्ट हैंड से करती हूँ, मैं तो अभी ये भी सोचने पड़ गई हूँ कि हम इतना इतना ज़्यादा जो है ना मतलब मगन हुए होते हैं शायद अपनी रूटीन में, शायद जल्दबाजियों में, कि मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैं किस हाथ से टूथब्रश करती हूँ ना। सो मैं अभी कल से ट्राई करूँगी दूसरे हाथ से भी करने की, फिर मुझे पता चल जाएगा कि कौन से वाले हाथ से वो जो है मेरी एक आदत बनी हुई है। और जब फिर जाहिर है जब आप ऑपोजिट हाथ अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और उसको मुश्किल होगी, आपको मुश्किल होगी कि टूथब्रश सही से नहीं हो रहा या लिखा सही से नहीं जा रहा या ये अब कटिंग मेरे से सही नहीं हो रही, सीजर मेरे से सही नहीं पकड़ी जा रही, छुरी मेरे से सही नहीं पकड़ी जा रही। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है।

साइड से अगर आप लोगों ने भी अपने आप को स्मार्ट बनाना है ना, तो आप लोगों ने ये काम शुरू कर देने। और इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में जो है ना बहुत शीशा देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी प्रैक्टिस जो है ज़िंदगी में, कोई स्पीच करनी होगी, कोई एक्टिंग करनी होगी, कोई सिंगिंग करनी होगी, या कुछ भी ऐसा अपने आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर ज़रूर जो है वो की होगी। तो अगर आपने की है तो आप ज़रूर रिलेट कर सकते हैं मेरी उस बात से कि शीशा देखना जो है वो किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आपने की है तो आप ज़रूर ऑफ कॉल पर मुझे बता सकते हैं 0421-111-0011 पर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जी फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, fizz.com/FM111 के पेज पर आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि जी शीशा देखना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है। और राइट जी, रजा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से ऑफ एयर कॉल की ट्राई कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करेंगे जी इनकी कॉल लग जाए और मिल जाए कॉल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी इनका एक कमेंट आया हमारे पास, तो कमेंट ही शामिल कर लेते हैं हम। और कमेंट में ये शीशे के हवाले से बात करें, कहते हैं कि शीशे का एक ये भी फ़ायदा है कि हमारे अंदर टैलेंट है बोलने का, लेकिन हम किसी के सामने बोल नहीं सकते, अपने दिल की बात कर नहीं सकते। इसका आसान तरीका ये है कि हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बातें करें। तो अगर हम शीशे के सामने बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे, नहीं दिल की बातें अच्छा जी अगर हम आरजे बनना चाहते हैं तो हम शीशे के सामने बोलें, और इससे ये होगा कि जो हमारे अंदर प्रेशर होगा, किसी का डर होगा, वो ख़त्म हो जाएगा और हम आसानी से जो है वो अल्फाजों का इंदराज करना शुरू कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये भी है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अपनी स्किल्स जो है वो अच्छे करने हैं, आरजे भी बनना है, आपको वैसे भी कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी है, कोई स्पीच करनी है, बहुत सारी ऑडियंस है और आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है ना वो शीशा एक अच्छी चीज़ है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसमें आपको अपने अंदर का पता चलता है। आपको इवन ये भी पता चलता है कि मैं ये चीज़ कैसे कर रहा हूँ, मेरी आँखें क्या वो नर्वस तो नहीं लग रही, मेरी बॉडी लैंग्वेज नर्वस तो नहीं है।

और आज इसके साथ नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि जी खेल किस्मत नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी खेल जाते हैं। धोखा अपनों से मिलता है वरना गैरों को क्या पता दिल की दीवारें कहाँ कमज़ोर हैं। ऑल राइट जी बलोचिस्तान से हमारे साथ मौजूद है फरहान इकबाल, हमारे साथ मौजूद है अस्सलामुअलैकुम जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है जी डीजी खान से। मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद है जी गुच्छू कहते हैं। और इसके अलावा जी फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। राइट जी, इन्होंने मुझे कहा है कि थोड़ा स्लो बोला करें क्योंकि जब जब मैं नंबर बताती हूँ तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से ये पेज मिला है। सो मैं अभी आराम से आपको नंबर बताती हूँ 04221100101। और इसके अलावा जी फेसबुक पेज भी मैं आपको बता देती हूँ कि जी facebook.com/FO11Lahore के पेज पर आपने जाना है। पोस्ट अपडेट है जी जिसके नीचे आपने कमेंट कर दी तो आप कॉल भी मिला सकते हैं 04221100101। ठीक है जी। और जी सलमान आज हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद एजाज अली हमारे साथ मौजूद है जी शरकपुर शरीफ से। रमज़ान गुज्जर हमारे साथ मौजूद है जी। कवल नाज हमारे साथ मौजूद है जी पंजाब यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये तो बताएं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से बात कर रही है। अब्दुल्ला वलखेल हमारे साथ मौजूद है जी। नईम टेलर हमारे साथ मौजूद हैं। सईम हमारे साथ मौजूद हैं जी। और इसके अलावा जी एजाज हमारे साथ मौजूद है। मनाजिर महमूद हमारे साथ मौजूद है जी।

राइट, जिसके साथ साथ रियाज भट्टी मेरे साथ मौजूद है। रजा चौधरी ने शीशे पे एक और बात की है जो कि एक अच्छी मुझे लगी है, थॉटफुल बात लगी है। वो ये कि कहते कि अभी भी आप शीशे की बात कर रही थी, तो अगर शीशा ना होता तो हमारे चेहरे पे जितने भी दाग होते वो हमें नज़र ना आते, क्योंकि हमारी आदत है कि दूसरों के ऐब निकालने की। लेकिन शीशा हमें बताता है कि आपका जो अपना चेहरा है उस पर कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है, तो वो मैं भी देख सकता हूँ और कोई नहीं। सो बिल्कुल ठीक है जी, शीशा जो है वो काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना रियलिटी, आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं और एक काइंड ऑफ आपको रियलिटी भी दिखाता है। और राइट जी, एक और ट्रैक के जाने बढ़ते हैं जी, बातें बहुत सारी हो गई हैं, फिर कहते हैं कि जी आहिस्ता नहीं बोलती तो ओके जी, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ट्रैक प्ले करते हैं, न्यूज़ ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। और न्यूज़ ब्रेक के बाद मैं टॉपिक के हवाले से भी बात करूँगी और ये भी बताऊँगी कि आज किसकी बर्थ एनिवर्सरी है और किसकी डेथ एनिवर्सरी है।

मेरे दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की।

0: और नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन्स के दरमियान कल मुल्तान में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101.

0: pocket.
1: All right. Welcome back to once again Radio Pakistan FM 101 ke live on Lahore studio se aap sun rahe hain aaj Hamna Khan ko mera aur aapka saath rahega theek ji 8 baje tak 7:06 ho gaya Lahore hi is time jo hai na kahin pe barish enjoy kar rahe hain kahin pe jo hai wo thandi hawa enjoy kar rahe hain aur kahin pe sham ka jo manzar hai na wo aap sab callers ne jo hai na is time mujhe lagta tha ki nahi shayad aisa nahi hota lekin mujhe aaj andaaza hua hai ki aap mein se bahut sare log jo hai wo actually jo hai na wo sham ko enjoy karte hain kyunki aap sab relate kar रहे हैं इस टाइम परिंदों के साथ सब मुझे कोई ना कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि इतना अच्छा लगता है ना सुन के कि जब आप लोग रिलेट करते हैं और आप लोग बताते हैं कि वाकई जो है ना इस टाइम इतना खूबसूरत मौसम है परिंदे हैं परिंदे चहचहा रहे हैं अभी जी ऑफ एयर हमारे साथ रजा चौधरी मौजूद थे और वो भी यही बता रहे थे कि उनके एरिया में क्योंकि बारिश हो रही है तो वो भी परिंदों को नोट कर रहे थे कि वो भी बारिश में जो है वो नहा रहे हैं और फिर ये अल्लाह की कुदरत है कि उनके पास तो जो आशियाने हैं वो दरख्त हैं घोंसले हैं और उन्होंने उसी में जाना है वहीं पर जाके खुश होना है हम लोगों ने तो अंदर चले जाना है बारिश तेज़ हो रही जी अंदर चले जाओ लेकिन परिंदों के लिए जो है वो देखें उनके लिए एक अलग निज़ाम है और उनके लिए जो है ना कई परिंदे कई कबूतर मैं देखती हूँ जो बारिश में जो है ना ऐसे सहम के बैठे होते हैं और फिर बारिश रुकने का वेट कर रहे होते हैं और फिर अपने आशियानों पर वापस जाते हैं तो ये अल्लाह की कुदरत है और इस टाइम जो है वो कई इलाकों में जो है बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि जब तक मैंने स्टूडियो से बाहर निकलना है ना यहाँ पर भी तेज़ बारिश शुरू हो जानी शायद

0: अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आपको भुलाने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब कांटेक्ट छोड़ देते हैं, और समटाइम्स आप उनको याद भी कर रहे होते हैं, समटाइम्स आप उनको मिस कर रहे होते हैं, आप रीच आउट करने की भी कोशिश करते हैं, आप कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि सामने वाला जो है ना वो बस अब साइड पे हो रहे हैं, लाइक अब वो आपको भुलाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप कितनी ही दफ़ा कोशिश कर लेंगे, मतलब कितनी बार आप कोशिश करेंगे कि जो सामने वाला इंसान है ना वो आपको भूल ना जाए और वो बस आपको याद रखे, या आप इन कॉन्टेक्ट रहें या ताल्लुक जो है वो बरकरार है। सो ताल्लुक बरकरार रखने के लिए आप कितनी बार कोशिश करते हैं, सो इसी पे आज बात करेंगे। 04211001001 पर कॉल कर सकते हैं आप लोग, और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/fm101lahore के पेज पे आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट एंड लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई आपको भुला रहा हो तो क्या आप भी भूल जाते हैं, या आप ताल्लुक बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, और वो कितनी बार कोशिश करते हैं।
1: प्यार दे फुले के बीच पाके ते खोर माही किथे रह गया।
0: और आज इसके अलावा शमीम अभी भी हमारे साथ मौजूद थी ऑफ द एयर, और उन्होंने भी जो है वो रिलेट किया शाम के साथ, और इसके साथ साथ वो भी शीशे के हवाले से बात कर रही थी कि जी अगर शीशा ना होता तो हम कैसे खुद को देख पाते, कैसे खुद को निखार पाते। तो मैंने वैसे सोचा कि जब शीशा नहीं था तो लोग कैसे खुद को देखते थे, मेरे ख्याल से लोग पानी में या बर्तनों के अंदर, जैसे जो स्टील के या कुछ इस तरह के चांदी के बर्तन, शायद उनमें अक्स देखते होंगे अपना, कुछ तो होता होगा ना, तब भी कुछ तो होता होगा।

ऑल राइट जी, मैंने बात की थी कि जब हम लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे कि आज किन की बर्थ एनिवर्सरी है। तो शबनम जी जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी स्टेज और फिल्म एक्ट्रेस थी, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 17 अगस्त 1946। एक्टर वहीद मुराद साहब ने जो है वो इनको इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, और लीड रोल जो है वो इनको ऑफ़र किया गया था फिल्म समंदर में 1968 में, और रिमेन एक्टिव रहीं, ये लॉलीवुड का हिस्सा रही 1960s में, 70s में, इवन 80s में भी। और इनको कई दफ़ा जो है वो निगार अवार्ड से नवाजा गया, कई दफ़ा, और तकरीबन कुछ मे बी ये जो है वो फॉर द एक्ट्रेस जो है वो 13 टाइम्स विन की, और 150 से ज़ायद जो है वो फिल्मों में नज़र आई, और लीडिंग पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी फिल्म इंडस्ट्री की। 28 साल इन्होंने जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दिए अपने, और बहुत बड़ा नाम है शबनम जी जो है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जो है वो आर्टिस्ट हैं, और शबनम जी की जो है वो आज बर्थ एनिवर्सरी है। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और शबनम जी के जितने भी फैंस हैं अगर वो सुन रहे हैं सो वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे जी। और आई जी, शबनम जी की आज जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है, और इनके कुछ अवार्ड्स भी हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इनको दिए गए, जिसमें 13 निगार अवार्ड्स हैं, लक्स लाइफस्टाइल अवार्ड है, अचीवमेंट अवार्ड है, और इसके अलावा जी सितारा इम्तियाज़ भी जो है वो 2004 में इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है।

0: ऑलराइट जी, लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं 0421-111-0011 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। आई नो कि आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, रेड लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। सो लेट्स सी जी लिस्ट, फर्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ, लेट्स सी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। आई एम रजा चौधरी
0: जी। रजा, कैसे हैं आप? फाइनली आपकी कॉल मिल गई, और देखिए आपकी पहली लाइव कॉल मिल गई।
1: हां, मैंने अभी मैंने क्या बात की यार, हैं फिलहाल चलिए रोटी खा, भूख लग गई।
0: अच्छा,
1: लेकिन मैं नहीं ट्राई एक दफा फिर, तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करना। आपने जो शबनम के बारे में पूछा ना, तो शबनम हमारी जो एक जबरदस्त एक्टर अदाकारी, इनका तल्लुक बांग्लादेश से था, तो इनके जो मियां और अपनी बोश है फिल्म चाहत में दोनों ने इकट्ठा काम किया है, वो सुपरहिट फिल्म रही इन दोनों मियां और बीवी की। तो आईने के बाद मैंने कर ली है, तो आपने पूछा को कुछ उल्ट राइट या लेफ्ट कर लेते हो। मेरे एक दोस्त था, वो साइकिल चलाता है लेफ्ट साइड पे।
0: अच्छा,
1: तो मैं यार तू लेफ्ट कैसे साइकिल चला लेता है? कहता मैं लेफ्ट साइड पे साइकिल पे बैठता हूँ। मैं कहता मम्मी ट्राई करनी है।
0: अच्छा,
1: कहना तू ना कर। देखो मैंने जब ट्राई की ना, तो फिर ट्राई रह गई, फिर दोबारा कानों को मैंने हाथ लगा दी कि मैंने ऐसे काम नहीं करना।
0: एक मुहावरा है ना, नाच
1: वो बस रगड़े रगड़ी गोडे कितने छिले गए सारे।
0: अच्छा,
1: तो वो तो कहते ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कुछ ऐसी चीजें होती है, ये मुहावरा ऐसे नहीं बना, जो काम आपको नहीं ना आता आपने वो नहीं करना।
0: ठीक है, वो वाला मुहावरा भी तो होता है ना, कमा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया,
1: अपनी चाल भी भूल गया। तो जो आप कहते हैं लेफ्ट और राइट, वो गुड शेड वो मैं कर लेता हूँ।
0: ठीक है, अच्छा आप कर लेते हैं मतलब।
1: और
0: आप मतलब आपकी कोई डेली रूटीन रही है, तो आपको इतना अजीब तो नहीं फील होता होगा?
1: नहीं, मुझे एक दफा ना ऐसे हुआ कि ना मुझे लड़कों को देखा ना, वो कभी राइट कभी लेफ्ट दोनों हैंड यूज करते थे।
0: अच्छा,
1: तो मेरे प्रॉब्लम था वो, मैं ना उल्टा बड़ा लिखता हूँ, जैसे ना कोई चीज है उसको उल्टा लिख देता हूँ मैं।
0: अच्छा,
1: तो ये मेरी राइटिंग बड़ी जबरदस्त है उल्टा लिखना।
0: ठीक है,
1: तो वो मैं यार ये तो आप लोग कैसे कर लेते हो? कहते ऐसे ऐसे। मैं अच्छा, ये मैंने अकेले नहीं करना है, अगर गलत होगा ना मुझसे गलत होगा ना, कोई बात नहीं है, किसी के सामने तो नहीं करता। मैं दो दफा लिखा, तीन दफा लिखा, लेकिन गलत हो गया। मुझे अच्छा रजा चौधरी आप करना ही है। फिर मैंने वो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हो गया। एक दफा ये हुआ जो आप आईने की बात कर रही है, मुझे किसी ने माइक दे दिया, कहता तू बोल के दिखा।
0: अच्छा,
1: तुम जो कहते हो ऐसी बातें करते हैं माइक के हटके रख कर, मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं ये नहीं होगा, कहता इसका तरीका ये है कि आप दुआ की तरह मुंह कर लो, करो बातें अब।
0: अच्छा,
1: तो पहला लफ्ज़ जो मैंने बोला ना वो मेरी जिंदगी का यादगार है, वो मेरे पास रिकॉर्ड है।
0: अच्छा,
1: उसके बाद रजा चौधरी ने जनाब वो मैंने लिखा, मैंने बोला ना, मैंने ना एक दिल से हाँ निकली, हाँ मुश्किल है।
0: अच्छा,
1: जब मैंने कहा ना हाँ मुश्किल है, ये नहीं होगा, तो फिर मैंने कहा यार ये सब बोलते क्यों नहीं बोलते। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त कमेंट्री की पंजाबी में और उर्दू में।
0: अच्छा ठीक है,
1: तो ये मेरा ना कोई कमाल नहीं था, इसमें कमाल ये था कि जब बंदे की आंखों में आंसू आ जाए ना, नाकामी के नहीं होते वो कामयाबी के होते हैं। उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो मैंने सोच लिया कि आज मैं कामयाब होके जाऊंगा यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ।
0: चले जी, अच्छी बात है
1: जी। तो भाई साथ में वफा की जिंदगी रही, बाकी तो आपसे होगी, फिर बाकी के लोग अभी खड़े हैं
0: जी, जी
1: छोटे लेके रजा चौधरी कब जाएंगे? तो अल्लाह
0: तीन माह
1: बाद कार मिले ये भी आपको बता दूँ।
0: ओके जी, ओके, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। ऑलराइट जी, रजा चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, और अभी मुझे इन्हीं की बातों से याद आया कि अहसन खान ने भी ऑफर जो है ना वो हमारे साथ शेयर किया कि उनके कोई जो दोस्त वगैरह थे उनमें से एक जो है वो राइट हैंड से भी बॉलिंग कर लेते थे और लेफ्ट से भी बॉलिंग कर लेते थे, तो ये बड़ा ख़तरनाक काम होता था कि सब गैस ही करते रहते थे कि अभी ये राइट हैंड से बॉल कराएगा या लेफ्ट हैंड से बॉल कराएगा। बट एनीवेज जी, आप लोग भी अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं भी वैसे करूँगी, और मैं नेक्स्ट शो में शेयर भी करूँगी कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं टूथब्रश जो है वो दाएँ हाथ से कर रही हूँ या बाएँ हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मुझे मतलब वही मैं बात कर रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें हम इतनी अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हमारी रूटीन का पार्ट बन जाती है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम मतलब चले खाना पीना लिखना ये तो चीज़ें ठीक है हमें बचपन से सिखाई गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बहुत अफरा तफरी में कर रहे होते हैं ना, तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम किस हाथ से जो है वो टूथब्रश कर रहे हैं। बट एनीवेज जी, अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जी 19 अगस्त से 23 अगस्त तक जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो है वो टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, तो वो टेस्ट जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का चलेगा, और पहला टेस्ट है, और फिर दूसरा टेस्ट है जी 27 अगस्त से 31 अगस्त तक, और फिर तीसरा जो टेस्ट है वो होगा 9 सितंबर से 13 सितंबर तक।

अच्छा वैसे आप सब जो है ना कहीं टूथब्रश और उस पे ही अटक गए हैं। मैंने अभी आप लोग से एक सवाल किया कि जब कोई आपको भुलाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब आपको फीलिंग हो जाती है ना कि कोई आपसे ताल्लुक़ जो है वो अब मुनक़ता करना चाह रहे हैं, ताल्लुक़ तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप उस ताल्लुक़ को निभाने के लिए क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, दो बार कोशिश करते हैं, या बस ठीक है अगर कोई ठीक है कोई साइड पर हो रहा है तो आप भी साइड पर हो जाते हैं, बस ठीक है ओके फाइन।

0: और अजय एक और कॉलर लेते हैं, लेट्स सी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है इतनी प्यारी सी आवाज में?
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। आज तो अखीर ही हो गया कॉल कर।
0: अखीर ही हो
1: यार। हाँ, मुझे ना आपसे ना मतलब ऑफ ईयर बात करनी थी। मैंने कहा यार आप मेरे से ऑफ ईयर ही बात कर ले, कोई मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे सबसे थोड़ी बात करनी होती है।
0: चलिए कोई बात नहीं, आप सब सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं।
1: अच्छा, मैं कॉल करने में बिजी हुई हुई थी, देख ली, मैंने एक मिनट भी सांस नहीं लिया।
0: चले जी, बहुत शुक्रिया जी।
1: हार्ट बीट तेज है और मुझे सांस चढ़ गया।
0: नहीं, आप इजी रिलैक्स हो, ठीक है, अब आपकी कॉल मिल गई है। बताएं क्या कहना चाहती हैं? जी जी, थोड़ा सा ऊंची बोलेगा बिस्मा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
1: मैं ना कह रही हूँ, अब आ रही हूँ?
0: जी जी, अब बेहतर थोड़ी।
1: अच्छा, मैं छत पे हूँ ना, मुझे फिर आजादी हो रहा हूँ
0: मे बी। जी जी, बताएं बताएं।
1: मैं ना जब आप बताना चाह रही हूँ कि जब ना आपका स्टार्टिंग में शो सुनो ना पूरा कंप्लीट, तो आप इतनी बातें कर जाती हो कि मुझे फिर वो भी बात पे बात करनी है, मुझे वो भी बात का जवाब दे रहे, मुझे वो भी समझ ही नहीं आती है क्या जुड़वा भी बात करो।
0: आप लिख लिया करो। अच्छा, लिखना नहीं पसंद?
1: जब ना वो होमवर्क होता था, वो पैसे देके मैं क्लास वालों से करवाती थी भाई।
0: ओए होए। अच्छा ठीक है।
1: मैं जब छत पे आई ना, तो तब ना ऐसे हवाएं चल रही थी, बट बारिश नहीं यहाँ पे खादड़ा में। और जो डिफेंस एरिया में बारिश हुई, अच्छा लगा मुझे सुन के।
0: जी जी,
1: डिफेंस एरिया मामू रहते हैं ना। अभी मैं जो देख रही हूँ ना सामने, अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी आवाज आपकी, और सामने मैं चांद देख रही हूँ।
0: अच्छा,
1: चांद होता है ना?
0: जी जी हाँ।
1: और जब ना आसमान पे तारे होते हैं ना, मैं वो काउंट करती हूँ, जब सबसे ज्यादा तारा चमक रहा होता है ना, उसे काउंट करती हूँ, 1 2 3,
0: ठीक है,
1: सबसे ज्यादा चमक रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका टॉपिक है ना, वो मेरा भी मतलब टॉपिक है, मीन के वो मेरा भी सवाल है कि भाई क्या कर रहे हैं हम कोशिश भी करते हैं, पर वो बंदा जो है ना, वो उसके बस उसके ऊपर कहते हैं जो भी नहीं डिंग रही, क्या उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर बंदा ऐसा क्या करे कि उसको फिर दोबारा हम ट्रैक से ले आए, वो दूर ना जाए,
0: तो अगर मैं इसका हल ये बताऊं कि आप एक से दो बार कोशिश करें और उसके बाद आप छोड़ दें। मैंने कहा मैं अगर इसका हल बताऊं तो मैं तो ये कहूंगी कि एक से दो बार कोशिश करें और उसके बाद छोड़ दें। नहीं, ये देखिए ना, कुछ चीजों में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो देखनी होती है ना।
1: वैसे मैं समझ रही थी शायद आपसे कुछ ऐसा ही जवाब चाहिए कि बस वो आ जाए।
0: नहीं, मैं मुझे लगता है मुझे इस पे डेडिकेटेड शो करना पड़ेगा। मैं रिसर्च करके आऊंगी भाई।
1: मेरा भी यही ख्याल था, बट मैंने सोचा कि शायद आपको ये जवाब ना सुनना हो ना, कभी कभी मूड होता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी आपने उम्मीद बांधी होती है ना कि मतलब कोई सोल्यूशन मिलेगा। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू बिस्मा। आप मौसम इंजॉय करें, ठीक है, और साथ में ट्रैक्स भी इंजॉय करें, ठीक है। अभी हमें बारिश का ट्रैक प्ले करने लगे हैं जी। रिक्वेस्ट आई थी शमीम आप भी की तरफ से। जी जी, कभी कभी आप सनराइज भी देखा करें, वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके जी, ओके, मैं कोशिश करूंगी जी, कोशिश करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, जो सनसेट को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो ज़रा सनराइज़ भी देखा करें, सनराइज़ भी खूबसूरत होता है। ऑलराइट जी, बारिश पे एक ट्रैक प्ले करने जा रहे हैं टू ऑल दोज जो कि बारिश अभी इंजॉय कर रहे हैं और जो साथ साथ मौसम का हाल अहवाल हमें बता रहे हैं, तो ये ट्रैक आप लोगों के लिए और ख़ास कर शमीम आपके लिए अगर आप सुन रही हैं तो।

कॉनर जी, गाना कहीं ना कहीं मेरे टॉपिक से रिलेट हो गया और मैंने आप लोगों से पूछा कि अगर कोई आपको भुला देना चाहता है, कोई अगर आपको भूल जाना चाहता है, तो आप किस हद तक कोशिश करते हैं उस ताल्लुक़ को निभाने की या उस ताल्लुक़ को बरकरार रखने की। तो अभी बिस्मा मैं थोड़ी सी ना इस पर रिसर्च करके बताऊँगी कि किस तरह से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश ज़रूर करें, एक दफ़ा करें, दो बार करें, तीन दफ़ा करें, लेकिन जब आपको लगे ना कि नहीं अब जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो रही है, तो वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना, थोड़ा सा पीछे होना बेहतर होता है। और यकीन माने कुछ चीज़ों को ना टाइम देना चाहिए, कुछ चीज़ों को स्पेस देनी चाहिए, कभी ना कभी जो है ना एहसास हो जाता है।

0: करते हो।
1: अच्छा जी, रजा चौधरी कहते हैं कि मैं आपके आज के टॉपिक पे ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे कोई ताल्लुक तोड़ता है या तोड़ना चाहता है, मैं ताल्लुक बचाने के लिए आखिर तक जाता हूँ। एक दफ़ा का इन्होंने एक वाकया अपने अजीज़ का शेयर किया कि मेरा एक अजीज़ था, वो मुझसे नाराज़ हो गया। मैं इसके दरवाजे पर गया तो इसने मुझे देख कर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मैं दरवाजे को खटखटाता रहा, वहाँ खड़ा रहा, लेकिन जब तक दरवाज़ा नहीं खुला मैं वहाँ से नहीं गया। मैं वो जो दूरियां थी, वो जो नाराज़गी थी, वो ख़त्म करके ही वापस आया। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी तरफ से पूरी, जिसे कहते हैं ना, पूरी हद तक कोशिश की कि आप वो नाराज़गी, वो दूरियां जो हैं वो ख़त्म करके आएँ। और कुछ लोग वाकई आपकी ज़िंदगी में इतने इतने इतने अच्छे होते हैं ना कि आपको समटाइम्स ब्लेस्ड फील हो रहा होता है कि वो हर हद तक जाकर जो है ना, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि बस किसी तरह से ये नाराज़गी या ये इख्तलाफात, ये दूरियाँ जो है ना, वो ठीक हो जाए। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोग अभी इस बारे में सोच रहे होंगे, अपना अपना जवाब सोच रहे होंगे, बट मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ एंड करनी है, कोई ताल्लुक एंड करना है, या आप, अब ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी का अपना एक फ़ेज़ होता है, ठीक है, हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा होता है और समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि आप स्टक हो गए हैं या समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, ज़िंदगी के फेजेस आते हैं, नए लोग एंटर होते हैं ज़िंदगी में, पुराने चले जाते हैं, पुराने कहीं ना कहीं एक जगह पे जो है ना, वो स्टक हो जाते हैं। सो ऐसे में मैं कहती हूँ कि अगर आपने एक ताल्लुक को ख़त्म करना ही है तो आप हमेशा हमेशा हमेशा अच्छे नोट पे ख़त्म करें, गुड नोट पे ख़त्म करें, क्योंकि ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी सी है और ज़िंदगी में घूम फिर के जो है ना, यकीन माने, इतनी कोई दुनिया गोल है ना, जिसे कहते हैं कि मतलब आपको कहीं ना कहीं फिर आपकी मुलाकात हो जाती है। तो जब आपने अच्छे नोट्स पे चीज़ें एंड की होती है ना, तो आपको कभी भी डर नहीं होता कि सामने से कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जिसे मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, या आपको जो है वो फिर से बात करनी पड़ जाएगी तो कितना मुश्किल होगा, या इंट्रैक्शन हो जाएगा अचानक से तो आप मुंह छुपाते फिरेंगे। तो ऐसे में अच्छे नोट पे जब भी आप चीज़ों को एंड करते हैं, क्लैरिफिकेशन के साथ एंड करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं अपने इंटेंशंस को, तो ऐसे में जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाती है, सुकून मिलता है और ज़हनी सुकून आपके साथ होता है।

0: 1111 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं. लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है और वंस अगेन मैंने सोचा कि मैंने बहुत तेजी से शायद नंबर बता दिया. टू ऑल द न्यू लिसनर्स जी 0422111001. ऑलराइट जी, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है. लेट्स सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ. लेट्स सी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट जी, कॉल ड्रॉप हो गई है 0422111001 पर. आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं और हम बात करें कि अगर कोई भुला देना चाहता है आपको तो आप कितनी की कोशिश करते हैं उस ताल्लुक़ को निभाने की या उस ताल्लुक़ को बरकरार रखने की आप कितनी कोशिश करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से बात करें?
1: नाम तो सुना होगा, मुझे रमजान अनवर गुजर कहते हैं और मैं मॉडल टाउन लाहौर से बोल रहा हूँ. राहत अंदोरी साहब के शेर से आगाज करता हूँ. मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, मेरे अपने मुझे मिट्टी में मिलाने आए, अब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए. बहुत सी दुआओं के साथ आवाज़े पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान हिट FM 101 की अजीम आवाज, मैडम हमना खां के सुनने वाले अजीम लिसनर को, आउट क्लास समातों को रमजान गुजर आदाब तस्लीमात.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: गुड इवनिंग 101 कहता है फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग, वन एंड ओनली बेस्ट आरजे मैडम हमना खां के संग मिजाज ग्रामी मैम. ज्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, सबको पता है रमजान गुजर जिस शो में जाता है कुछ फहमी है ये मेरी, वो शो हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, वो दबंग शो हो जाता है और उसमें मेरी कॉल बुलाने भी मुश्किल और नामुमकिन हो जाती है. लेकिन मैं ट्राई अगेन एंड अगेन करते करते बिल आखिर कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ.
0: ठीक है जी, आपकी कोशिश कामयाब होगी. क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कहना ये चाहूंगा कि लास्ट शो आपने फिर नहीं किया.
0: जी मैंने आजादी ट्रांसमिशन की थी, आपने सुनी वो?
1: आप एक शो आती है, एक शो नहीं आती, शादी से पहले ऐसी हालत नहीं थी. बाकी ठीक है, आपकी मसरूफियत है, आपकी खूबसूरत बजम का हम इंतजार करते हैं और करते रहेंगे.
0: ये मेरी शादी पुरानी होगी, इसको रिलेट ना करें मेरे शूज के साथ. ठीक है.
1: नहीं नहीं पहले आप सर्दी में करती थी ना जो
0: नहीं नहीं मैं असल में कोई मेरे ऑफिस की मीटिंग वगैरह हो ना तो उसकी वजह से मेरे से होता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं.
1: के वाले तो ये कहूंगा कि जिससे प्यार हो जाए, जिससे चाहत हो जाए रमजान अनवर गुजर को, वो कोई अनमोल होता है, हीरा या हीरी जो भी कह ले, जमाना कदीम से लेके आज तक. तो मेरी आदत होती है कि फिर उसका उसके साथ अपनी पर्सनल सारी गुफ्तगू करूं और एक वक्त आता है वो मुझसे पनाह मांगता है या मांगती है, कहती है दफा जो और रैट हो जो, आई हेट यू रमजान गुजर. जब तक ये दो आवाजें मैं ना ना सुनू ना था, मैं हकीकत कह रहा हूँ और आज तक साक्षी बोल रहा है और आगे भी साक्षी बोल रहा है, मुझे सबर नहीं आता, मैं उसकी जान नहीं छोड़ता. जब वो कहता ना मेरे मुर्गो ले जा या मुझे छोड़ जाओ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, तो फिर मैं मुझे मेरे दिल को सबर आ जाता है, सुकून आ जाता है और फिर मैं कहता जा मैंने भी तुझको आजाद किया.
0: ठीक है जी, ठीक है. तो अल्लाह
1: सलामत रखे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस. नंबर वन टॉप क्लास शो है आपकी, खूबसूरत भजन, हसीन भजन और यकीन है दूसरे भी इंतजार कर रहे होंगे 101 की इंतजामिया को. मेरा सलूट, कामयाब शो पेश करने पर. अल्लाह हाफिज पाकिस्तान फैंदाबाद.
0: ओके जी, ओके जी. रमजान अनवर गुजर हमारे साथ मौजूद थे और अभी जी कमेंट आया है कि मैडम नूरजहां का गाना प्ले कर दे, तो मैं ऑलरेडी मैडम का एक गाना और एक कवर भी प्ले कर चुकी हूँ. अभी जी साहिर अली बग्घा की एक रिक्वेस्ट आई थी, सो वो पूरी करते हैं.

0: 101.1 पर लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ face.com/fm101lahore के पेज पे आप दे जाना है जी पोस्ट आप डिटेल लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं. लेट्स सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से बात कर रहे हैं जी.
1: अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहा हूँ क्वेटा से
0: जी. अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं आप. क्वेटा का मौसम कैसा है.
1: क्वेटा का मौसम ये 13 अगस्त से लेकर अभी तक फिर दोबारा गर्मी शुरू हो गई.
0: गर्मी शुरू हो गई है. अच्छा बारिशें हो रही हैं.
1: बारिशें मेरा कुछ भी नहीं है.
0: नहीं हो रही है. अच्छा ठीक है जी.
1: ये 3 महीनों में जब बारिश हुआ सिर्फ इतना पानी बारिश हुआ है जैसे मैं नहीं है जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं फिर पानी हम लोग फेंकते हैं फिर झाड़ू लगाते हैं इतना बारिश हुआ है जमीन के ऊपर.
0: अच्छा
1: बिल्कुल. अभी टॉपिक भी जबरदस्त है. अभी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कुछ लोग अगर मुझे इग्नोर करते दरगुजर करते तो मैं देख लेता हूँ उसके जब से मैंने उसी से जितना ज्यादा ताल्लुकात रखा था वो मैं सोच लेता हूँ अगर मैंने उसके साथ ताल्लुकात वगैरह अच्छा रहा हो तो मैं उसको मनवाऊंगा. अगर ताल्लुकात वो जो नहीं अक्सर जब किसी के साथ जब ताल्लुक लगाता है या कोई आपसे ताल्लुक दूरी इख्तियार कर लेते फिर वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है. तो फिर वो मैं सोचता हूँ कि मुझ में इसने बंदे ने जब मेरे साथ ताल्लुक रहा था मुस्तकबिल में या दौर में अच्छा रहा या खराब रहा. अगर अच्छा रहा हो तो फिर हम दोबारा उसको मनाएगा. अच्छा नहीं रहा बाय बाय.
0: ठीक है ठीक है. तो मतलब अगर अच्छा ताल्लुक रहा है तो आप भी कोशिश करते हैं कि वो ताल्लुक बचा रहे. ठीक है सलामत रहे वो ताल्लुक.
1: बिल्कुल जाहिर से बड़ी जब इंसान जब आपके साथ कोई ताल्लुक बनाए जब वो आपसे दूरी इख्तियार कर लेते तो फिर जाहिर से बात फिर आप सोचने पे मजबूर होएगा.
0: बिल्कुल.
1: तो जब आप सोचने पे यही सोचेगा कि मैंने इस बंदे के साथ क्या एक्टिविटी किया मैंने उसके साथ कहाँ पे खाया पिया कहाँ पे हम लोग गए थे इसने मेरे साथ ये है ये मदद किया या मैंने उसके साथ ये किया था इस इंसान जो नहीं मैचिंग करता है. फिर जब मैं एक जब उसको नाकामी और कामयाबी सर रख करेगा कि अगर इसने आपके साथ ज्यादा अच्छा ही किया हुआ है तो फिर उसको मनाऊंगा मैं. अगर इसने मेरे साथ कोई अच्छा ही नहीं किया फिर बाय बाय.
0: लेकिन देखिए अगर इसने आपके साथ कुछ ज्यादा अच्छाई नहीं भी की हुई तो अपना थोड़ा सा वो कहते हैं ना जर्फ बड़ा रख के फिर भी आप कोशिश किया करें. ठीक है.
1: नहीं तो फिर वो इंसान को इसने तो कोई नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचाया है. सोचना चाहिए.
0: हाँ सोचना चाहिए. बिल्कुल ठीक है जी. बिल्कुल ठीक है.
1: ठीक है. और आजकल के दौर में लोग ज्यादातर किसी के साथ ताल्लुक भी नहीं बना रहे. हर इंसान अपने आप में मुतलब डिप्रेशन के शिकार है.
0: ये बात तो है. ये बात तो है. सब अपने अपने अपने मगन है और अपने आप को देख रहे हैं.
1: बिल्कुल ठीक है.
0: ठीक है जी. ऑलराइट जी. अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट जी. अल्हम्दुलिल्लाह वाला खेल हमारे साथ मौजूद थे. कहते हैं कि जिसके साथ आपको बहुत अच्छा ताल्लुक रहा हो ना और जिसके साथ आपकी मेमोरीज भी हो खाया पिया भी हो यकीन माने ऐसे ताल्लुकात के टूटने का वाकई बहुत ज़्यादा दुख होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. लेकिन लेकिन लेकिन सच बताऊं तो फील भी ज़्यादा वही वाले ताल्लुकात होते हैं जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है. दूसरे वाले तो खैर हम थोड़ा सा वो कर जाते हैं ना. चलो कोई नहीं.

0: right, yeah, let's see next caller kaun hote hain hamare saath. 04-2111-0101 par. Hello, assalam alaikum.
1: Ji walaikum assalam, kya haal hai ji, aap theek thaak hai ji?
0: Alhamdulillah, main bilkul theek thaak. Kaun kahan se baat kar rahe hain?
1: Ji Mohammad Shahzad Shahabad se baat kar raha hoon.
0: Ji Shahzad sahab, kaise hain aap?
1: हाँ, आज की दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छा शो हो रहा है जी.
0: बहुत शुक्रिया.
1: हाँ जी, तो जो आप बात कर रहे हैं, देखे ये हमें छोड़ना नहीं चाहिए किसी से. अपना अच्छा और आप अपनी जो अपना जो ना अपनी खुद सिफत बनानी चाहिए, तालिक छोड़ना नहीं चाहिए.
0: ठीक है, ठीक है.
1: और कोशिश करनी चाहिए ये छूटे ना.
0: ठीक
1: है, देखेंगे सही है तो फिर सही है, जो ज्यादा बिगड़ जाए काम फिर छोड़ देना.
0: फिर आप भी भूल जाए, है ना? फिर आप भी भूल जाए,
1: फिर वो नुकसान पहुंचाएगा ज्यादा.
0: ठीक है, ठीक है जी.
1: तो माशाल्लाह जी, आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए.
0: बहुत शुक्रिया.
1: जितने भाई बहन आते सबको सलाम. मेरा उस्ताद जीजा भी शायद आए, उसको भी मेरा.
0: ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट जी, कहते हैं कि जी आप पहले कोशिश करें, फिर अगर कोई फिर अगर हो ना तो फिर आप भी भूल जाएं. और बाकी बिल्कुल बात ठीक है जी, फिर अगर हो तो फिर तुसी भी भूल जाओ. अपने जहन को, अपने आप को जो है ना वो आप आसानी दें, सुकून करें. ठीक है, आपने कोशिश कर ली, आपने अपनी तरह से एफर्ट की और अच्छे दिल से एफर्ट की, नेक दिली से एफर्ट की और बिल्कुल इसी सोच के साथ एफर्ट की कि नहीं, ताल्लुक जो है वो बरकरार रखना है. बट अगर उसके बाद भी नहीं रहता तो ठीक है, आप भी थोड़ी स्पेस दें, थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस क्रिएट करें और सुकून करें. ठीक है,

All right, it's 7:54 p.m. on the dial. और अभी जो आपने आवाज़ सुनी है वो कोई ऐसी आवाज नहीं है जिसको मैं, आप या अब की जो नौजवान नस्ल है, जो जेन ज़ी है, पहचानते ना हूँ। ये आवाज़ है जी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। और इनका जिक्र मैं क्यों करना चाहती हूँ, कल इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, 16th August 1997। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने शो में, चाहे वो एक दिन बाद है, नुसरत साहब का जिक्र ना करूँ, शहनशाह कवाली।

क्या बात है जी, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज ऐसी है, मतलब अगर मैं ये देखूं कि 16 अगस्त 1997 तो मेरे पैदा होने से पहले जो है नुसरत फतेह अली खान साहब इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे, लेकिन मेरे लिए ऐसे ही है इनकी आवाज कि बस मैं क्या बताऊं। और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन तक ये आवाज जो है वो सदा ऐसी रहेगी, एवरग्रीन।

ऑलराइट 757 पीएम ऑन द डायल और आप खूबसूरत से एवरग्रीन आवाज़ सुन रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, जिनकी डेथ एनिवर्सरी थी कल। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जो कवाली के शहनशाह कवाली नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की मैं बात कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि शो का अख्ताम जो है उन्हीं की आवाज़ के साथ हो, तो इन्जॉय कीजिएगा। और मुझे पता है कि हम सब जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ के साथ, उन सुरों के साथ और जो लिरिक्स होते हैं उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। सो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपनी आज हमना खान को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट मंडे 6 to 8। अल्लाह हाफिज़।

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: only. Okay?
1: Okay.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
3: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे. सोने पैन भ्राओ ते मेरे बुजुर्गो, दवाखाना सुलेमान वालों तुहाडी मेजबान साइमा हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे लेके हाजिर है. सलाम कबूल करो. सोने पैन भ्राओ, ए प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि इस प्रोग्राम विच साडे मुल्क दे खास ते मशहूर तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब तशरीफ लियांदे ने, जिन्हां नूं कई बारी गोल्ड मेडल भी मिलिया है. मेरे बहुत ही सोहने भैन भराओ, तुसी फिकर ना करो, बस थोड़ा जहा इंतजार करो ते लिखो साडा पता ते फोन नंबर्स. उस तो बाद मैं तुहाडी मुलाकात सुलेमान साहब नाल करवावांगी. ते नोट करो, सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर. फोन नंबर 042-377-2760, यानी 042-377-2710. मोबाइल नंबर है 03004142608, यानी 03004142608. ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com. सोने भैन भरा, हुण मिलने आ जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नू. सुलेमान साहब जी आया नू, बल्कि जी भर के जी आया नू.
4: सहमा जी, जी भर के बहुत बहुत शुक्रिया.
3: सुलेमान साहब, तुहाडे कोलों कौन जीत सकदा, अखीर तजर्बेकार हकीम हो ना. सुलेमान साहब, मेरा वास चले तो मैं एक ही बारी प्रोग्राम विच सारियां ईमेल्स पढ़ जावां, पर तुसी प्रोग्राम दा वक्त ही घट रखिया है. अजे गल्लां शुरू ही हुंदियां ने ते प्रोग्राम दा वेला मुक जांदा.
4: सहमा जी, तुहाडे लई ते इक हफ्ते दा प्रोग्राम भी घट रहेगा.
3: हाय अल्लाह, हकीम साहब की मैं इन्ना बोल लिया. वैसे हकीम साहब, जे मैं ना बोलां
4: जी
3: ते तुसी आप भी उदास हो जाओगे. सुलेमान साहब, क्यों ना हुण ईमेल्स ते SMS पढ़ लिए.
4: जी जरूर.
3: सुलेमान साहब, ईमेल फैसल इमरान साहब दिए. सुलेमान साहब, इन्हां नूं शुगर दी तकलीफ है, पर एसाबी कमजोरी दी वजह नाल ज्यादा परेशान ने. कहंदे ने कि शुगर दे सबब इन्नी कमजोरी हो गई है कि कुछ भी चंगा नहीं लगदा.
4: अच्छा.
3: बस ज़हन ते बोझ ही रहंदा है, क्योंकि असीं सुणिया है कि शुगर दी कमजोरी नहीं जांदी. सुलेमान साहब, तुसीं इस बारे की कहंदे हो?
4: फैसल भाई, यहां ते तुसीं सुनियां सुनाईयां गल्लां नूं मन लवो या फिर मेरी गल ते यकीन करो. ते मैं इस बारे कहना वा, एसाबी कमजोरी शुगर नाल होवे या ब्लड प्रेशर नाल, हर किस्म की असाबी कमजोरी दूर हो सकती है. फैसल भाई, तुसी किसे दिन मेरे को तशरीफ लियाओ, मैं तुहानू उन्हां मरीजां दे बारे दसांगा जिन्हां नू शुगर दे सबब असाबी कमजोरी सी, पर इलाज तो बाद सोहणे रब ने उन्हां दी कमजोरी दूर कर दित्ती. मेरे भाई, तुसी एक बारी इलाज करा के वेखो, सोहणे रब की मेहरबानी नाल तुहाडे जिस्म विच नवीं ताकत आ जाएगी ते तुसी शुगर दे बावजूद खुशियां भरी जिंदगी गुजार सकोगे इनशाला, क्योंकि इहदा जड़ी बूटियां विच पक्का इलाज मौजूद है.
3: सुलेमान साहब, मेरा ख्याल है कि सब तो भैड़ी बीमारी मोटापा.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: जे तू लब दा वफा फिर दानी लबनी, रुक जाए सजा दा सजनी जब तू।

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को शहरियों को आसान, मौसर और जदीद डिजिटल खिदमात फराहम करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर में तआवुन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान ने आज जेनेवा में अक़्वामे मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़े असलहा कॉन्फ्रेंस की सदारत संभाल ली है। और नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन्स के दरमियान कल मुल्तान में खेला जाएगा।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान,
4: सुनते रहिए FM 101.1।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

चेंज नहीं हो रही, आप ये कह सकते हैं लाइफ चेंज नहीं हो रही, लाइफ जो है एक जैसी है। और लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते हो तो यार पिछले सालों में इतना कुछ बदल गया होता है, आप भी बदल गए होते हो, आपके इर्द गिर्द के लोग भी बदल गए होते हैं, जिंदगी भी आगे निकल चुकी होती है और बहुत कुछ लाइफ में बदल चुका होता है, लेकिन हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे यार लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रही है, लाइफ एक ही जैसी है, लाइफ रुकी हुई लग रही है आपको और कुछ नया जिंदगी में नहीं हो रहा है। इसलिए तो कहता हूँ कि वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि हमें किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती है, और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत कुछ बदल चुका होता है, लेकिन क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है और हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हमें कुछ समझ नहीं आती, हमें कुछ पता नहीं चलता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। एनीवेज, ये प्रोग्राम स्टार्ट में आपको बता दो किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है हमेशा की तरह 0511111011, इसके अलावा दूसरा नंबर है 0519202540। इसके अलावा जी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करोगे एसएमएस मैसेज के थ्रू। अभी से मोबाइल फोन की एसएमएस की ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101 स्पेस तो मैसेज नाम शहर के नाम लेकर 4471, फिर अपने तमाम टेक्स्ट मैसेज आप मुझे सेंड करोगे। इसके अलावा जी फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पेज ज्वाइन करो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट आएगी कि 12 to 2 AM आपको मेरा साथ रहेगा FM 101 इंटरनेशनल में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और खास तौर पे हमारे वो दोस्तों के पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनीवेज, प्रोग्राम में क्या होगा एक आपसे सवाल करूंगा हमेशा की तरह, और साथ उसके बहुत सारी बातें जो है प्रोग्राम में आपके साथ चलती रहेंगी। और इसके अलावा जैसे मैं कहता हूँ यार, आप कोई भी बात शेयर कर सकते हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कुछ खुश हो, एक्साइटेड हो, मतलब कंफ्यूज हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सरप्राइज मिला है, कुछ समझ नहीं आ रही है, एनीथिंग कुछ भी आप लिख के भेज सकते हो 4471 पर, साथ फेसबुक पर हम उसके ऊपर प्रोग्राम में बात कर सकते हैं, हो सकता है हमारी वजह से आपका मसला जो है वो सॉल्व आउट हो जाए या आपकी खुशी जो है वो हमारे साथ शेयर हो जाए। तो अभी प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ट्रैक में प्ले करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है अली जफर और अली हैदर की आवाज में, जालिम नजरों से। अच्छा, कुछ लोगों की नजरें जो है वो वाकई बड़ी जालिम होती हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के आप बात नहीं कर सकते हैं। और नजरें भी तो देखे ना, नजरों के थ्रू आप बहुत सारी बातें भी कर जाते हो। एनीवेज, ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा, और जैसे मैं कहता हूँ अगर आपको दिल करे चाय पीने को, ग्रीन टी पीने को, कॉफी पीने को, ट्रैक लगा हुआ है जल्दी से बना के लाइए, और एक कड़क चाय का कप जो है वो मेरे लिए भी होना चाहिए। एनीवेज एंजॉय कीजिएगा ट्रैक को, मेरा नाम हसैन रजा, आपको मेरा साथ ठीक रात के 2 बजे तक, सो कीप लिसनिंग, हम वापस आते हैं ट्रैक के बाद।

ओके डॉक्टर लेसर साहब, वेलकम बैक कहते हैं आप सुन रहे थे जालिम नजरों से एफएम वर्मा इंटरनेशनल में। एनीवे जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में आपसे सवाल क्या करने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम बहुत सारी बातें जो है वो साथ साथ करते रहेंगे ताकि आपका फीडबैक जो मेरे पास है उसमें आपको पता हो कि क्या बात करनी है। आज के प्रोग्राम में आपने मुझे बताना है क्या आपके दिल में कोई ऐसा डर है जिसे आप खत्म करना चाहते हो, अगर है तो वो डर क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपने मुझे बताना है कि क्या आपके दिल में कोई ऐसा डर है जिसे आप खत्म करना चाहते हो, अगर है तो क्या डर है वो। सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शहर के नाम लिखकर 4417 फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर 1240 के बाद आपकी लाइव कॉल जो है मैं प्रोग्राम में साथ साथ शामिल करूंगा। कैश जी, अभी रिसेंटली जो है वो 79 इंडिपेंडेंस डे जो है वो गुजरा है और बहुत सारी सेलिब्रेशंस देखने को मिली। अब मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ होता हूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी रोड्स ही फुल थी और लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, काफ़ी जगह फायरवर्क्स जो है वो देखने को मिली और लोग जो है वो सारी सारी रात जो है रोड के ऊपर थे और साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले, फिर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ भी देखने को मिली हमेशा की तरह कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे और वो इंडियन सॉन्ग्स लगा कर वो गाड़ी में इंजॉय कर रहे थे। सो खैर, ये तो आपको हर साल ही देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस बार लोगों ने बड़े डिफरेंट अंदाज में कहना मैं सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे जो है। आपको बहुत सारी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखने को मिली, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप तो देखो सोशल मीडिया का दौर है ना, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह अपना प्यार जो है अपने मुल्क से उसके बारे में बता रहे हैं लोगों को और दिखा रहे हैं। सो ये है कि अच्छा इंडिपेंडेंस डे की जरा बड़ी खुशी हुई, सारों ने बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। टीवी के ऊपर बहुत सारे शोज थे, हमारे रेडियो पाकिस्तान एफएम और उनके ऊपर बहुत सारे शोज हुए हैं, वो आप सुनते रहे। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ठीक है इंडिपेंडेंस डे तो चलो आप सेलिब्रेट करते हो लेकिन साथ साथ ये भी एक सवाल अपने आप से किया करो, यार मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। ठीक है, मेरा रोल पाकिस्तान के लिए क्या है। हम दूसरों को क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं, दूसरों के बारे में कहते रहते हैं, यार इसने ऐसा कर दिया, इसने अच्छा काम कर दिया, बुरा काम कर दिया, जो कुछ भी, और सोशल मीडिया पे हम कमेंट्स जो हैं वो भरमार उसकी करते हैं। लेकिन खुद से सोचा करें यार कि हमारा क्या रोल है। ठीक है, हमने क्या, चलो एक चीज़, कोई एक बात हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, कोई पॉजिटिव काम जो है। लेकिन हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं, हम क्रिटिसाइज करने में नंबर वन होते हैं और दूसरों पे उंगलियां उठाते रहते हैं लेकिन खुद के बारे में नहीं हम सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, या हमारी सोच क्या है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश की है हमने, या कुछ किया है, कुछ भी, एनीथिंग। सो आजकल तो देखो जिस तरह अभी मैंने कहा था, फ़ौरन फेसबुक के पोस्ट आती है, इसने ऐसे ऐसे ऐसे किया, पिक्चर भी आ जाती है, साथ टिकटॉक के ऊपर वीडियोस भी आती हैं, फ़ौरन पता चल जाता है। सो खुद से सोचा करें बैठ के, बजाय इसके कि हम सिर्फ देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग तो देखें, आजकल मैं हमेशा कहता हूँ कंपटीशन का दौर है और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनका नाम जो है वो बने, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो करते हैं लेकिन साथ वो खुद को भी प्रमोट कर रहे होते हैं ना अपने मुल्क के साथ साथ जो है। तो ज़माना बड़ा नाजुक चल रहा है, ज़माना बहुत तेज़ चल रहा है, सो लोग बस चाहते हैं कि वो आगे से आगे बढ़ते जाएं और लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा दिन जो है वो घर पे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, एफर्ट भी नहीं करते और बस वो कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर बस वो कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। ऐसा ना करें, अपना वक्त जो है वो ज़ाया ना करें और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव लाइफ में लाजमी करें और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करें।

एनीवेज मैंने पूछा ये कि आज के प्रोग्राम में कि क्या आपके दिल में कोई डर है जिसे आप खत्म करना चाहते हो, अगर कोई डर है तो वो क्या डर है, वो मुझे आज के प्रोग्राम में आप बताओगे।

अच्छा अभी मैंने मैसेजेस सारे मैंने ओपन किए तो मुझे सबसे पहला मैसेज जो है वो नज़र आया और उसमें कुछ लिसनर से पूछा हुआ है कि आपका स्टेटस देखा था, आपने जो स्टेटस के ऊपर बात की, सिर्फ स्टेटस के ऊपर बात नहीं की, मेरे कुछ प्रोग्राम रह गए हैं, मैं रेडियो जो है छोड़ रहा हूँ और उसके हवाले से आपने पूछा है कि क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है. रीज़न देखो रीज़न एज सच सिर्फ ये है कि आई थिंक कि अब और लोगों को आना चाहिए. मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जो है यहाँ पर स्पेंड कर ली हैं और मेरे ख्याल से इट्स मोर देन इनफ. और मैं जो कुछ कर सकता था, मैं जो अपनी एनर्जी पुट इन कर सकता था और जो एफर्ट्स कर सकता था, जो मेरा पैशन था, जिस तरह जुनून के साथ मैं प्रोग्राम करता था और अभी जो मेरे प्रोग्राम रह गए मैं कर रहा हूँ और जितना पंचुअलिटी के साथ मैं सब कुछ करता रहा हूँ, आई थिंक कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ. और हर इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज जो है वो चाहिए होती है और ज़िंदगी में चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, साथ साथ लाइफ है. और आई थिंक कि मैंने अपना रोल प्ले किया और कोशिश की कि मैं अपना रोल जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो प्ले कर सकूँ. मेरा हमेशा से एक मोटिव रहा है जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था कि मैंने हमेशा एनर्जेटिक प्रोग्राम करने हैं, अपबीट ट्रैक्स जो है प्ले करने हैं. अगर किसी का मूड अच्छा नहीं है, अगर मेरी वजह से उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है तो मेरे ख्याल से मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. सो मुझे हमेशा अच्छा लगा कि जो हमारे लिसनर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते रहे ओवर द ईयर्स और कॉन्टैक्ट करते रहे और सारा फीडबैक जो है वो देते रहे. सो ऑब्वियसली जो देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक आरजे जो है वो एक लिसनर्स की वजह से बनता है, ठीक है. और लिसनर्स जो सुन रहे होते हैं, अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, तो वो हमारी मोटिवेशन होती है, ठीक है. लोग कहते हैं कि यार अब मैं अपने दोस्तों के बारे में आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्त कहते थे कि यार रेडियो कैसे कैसे कर लेता है यार, इतनी मोटिवेशन तुझे कहाँ से मिलती है. तो और ऊपर से हम तो उस टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं जब से पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है वो हमारा वही चैनल था जो पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है प्ले किया करता था और बाकी प्राइवेट चैनल्स के ऊपर बॉलीवुड म्यूज़िक होता था. अब तो खैर वो ओवरऑल हर जगह पाकिस्तानी म्यूज़िक होता है तो इतना इजी नहीं होता है एक इस तरह प्रोग्राम करना, लेकिन स्टिल हम करते थे. अब तो खैर बाकी चैनल्स वालों को भी पता चल गया कि लिमिटेड लाइब्रेरी के साथ प्रोग्राम कैसे किया जाता है. और दूसरी चीज़ मैंने हमेशा से ये बात जब मैं रेडियो में आया था तो मैंने ये बात सोची थी कि एटलीस्ट जो है मैं कभी सैड सॉन्ग्स नहीं प्ले करूँगा या स्लो सॉन्ग्स नहीं प्ले करूँगा. और एक बड़े लंबे अरसे तक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था. अब पिछले एक दो सालों में कुछ मैं सैड सॉन्ग्स लगा देता हूँ बीच में. उसकी रीज़न है कि हमारा पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है वो बहुत कम बना है, ठीक है, पिछले 5 साल के अंदर जो है. और वही ट्रैक्स प्ले कर करके अब भी ट्रैक्स जो है वो ऑब्वियसली लिसनर्स भी बोर हो जाते हैं. तो लेकिन खैर बात ये है कि हमेशा कोशिश की है कि कुछ अच्छा करूं. मेरे प्रोग्राम कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा मैंने किसी टॉपिक या सवाल के अलावा मैंने प्रोग्राम किया हो, ठीक है. लाखों टॉपिक्स जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, गेम शोज़ पता नहीं मेरा दिल कभी नहीं माना कि गेम शोज़ करूँ. और हाँ कभी एक आध बार किया होगा लेकिन दिल कभी नहीं माना. तो हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगा इस्लामाबाद रावलपिंडी की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे सुनते रहे हैं, पार्टिसिपेट करते रहे हैं. अभी भी पिछले जब से मैंने स्टेटस दिया मुझे बहुत सारे मैसेज जो हैं वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आए हैं. तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब आप सब जो है इस तरह अपना फीडबैक देते हो. इवन के हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे लिसनर्स हैं, कॉलर्स हैं, मैसेज करने वाले हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, किसी भी मुल्क से हों, वो पार्टिसिपेट करके बताते रहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वहाँ पर सुनी जा रही है. तो खैर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आई थिंक कि मैंने हमेशा ये बात कही थी कि मैं जब समझूंगा कि हाँ मुझे ये सीट जो है छोड़नी चाहिए. जब मंडे नाइट का प्रोग्राम जो है 2011 में मुझे मिला था तो भी तकरीबन 15 साल हो गए हैं ये मंडे नाइट का मैं प्रोग्राम, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है, ये स्लॉट जो है, ये 15 साल से मेरे पास है. वैसे तो और भी स्लॉट्स थी, 10 से 12 की भी थी और बाकी भी थी, लेकिन इस स्पेसिफिक स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये 15 साल से मेरे पास है. और मैं चाहता हूँ कि जिसके पास भी ये स्लॉट जाए
वो मतलब कि एक यंगस्टर हो अच्छे तरीके से एफ एम 101 इंटरनेशनल के प्रोग्राम कर सके, क्योंकि जब हमें 101 इंटरनेशनल मिला था उस टाइम बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और जिसको एफ एम 101 इंटरनेशनल मिलता था तो उसके लिए बड़े फ़ख्र की बात होती थी कि यार उसको एफ एम 101 इंटरनेशनल में प्रोग्राम मिला है, क्योंकि ये स्लॉट ऐसी होती है कि ये पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ सुनी जा रही होती है, तो आपको एक मतलब कि आपको एक डिफरेंट अंदाज होना चाहिए, आपका आप में कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए कि आपको ये प्रोग्राम जो है दिया जाए। सो ऐसे जो और कोई बात नहीं है, वही शेख साहब हैं, मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा है, उनकी वजह से मैं एफ एम 101 में हूँ, और मेरा उनसे अभी भी कभी कभी बातचीत होती है। मैडम सदर फरानी हैं, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा बड़ा प्यार दिया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल इन दोनों का कि हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया है हर चीज़ में।

सो खैर जी, कुछ भी इस दुनिया में आसान नहीं होता है. आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत कुछ फॉरगो करना पड़ता है. और लेकिन लाइफ जो है चलती रहती है और शो जो है चलता रहता है. वो अक्सर मैं कहता हूँ ना, शो मस्ट गो ऑन, शो चलता रहता है, लेकिन किरदार जो है वो बदल जाते हैं. तो खैर जी, आई होप सो आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो आंसर मिल गया होगा. तो ये बात है, और कोई भी बात नहीं है, ट्रस्ट मी. अच्छा जुनैरा हमारे साथ लाहौर से पार्टिसिपेट कर रही हैं. आपने कहा मुझे सबसे ज़्यादा फेलियर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी का डर लगा रहता है, और मैं अपनी लाइफ में उन लोगों को दोबारा नहीं चाहती जो पहले मुझे हर्ट कर चुके हैं. मैं बस सुकून और स्टेबिलिटी और एक बेटर फ्यूचर चाहती हूँ. देखो जुनैरा, बात पता क्या है कि फ्यूचर के हवाले से इनसिक्योरिटी तो हर एक को रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर के हवाले से कंसर्न होना चाहिए और फिक्र होनी चाहिए आपको कि यार आपका फ्यूचर जो है वो क्या होगा. लेकिन आपको आपको कुछ लाइंस जो हैं जो आपकी फेवरेट हों, या आप कह लो कि जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो उसको फॉलो करना चाहिए और दिल लगा के उसके पीछे जो है लग जाना चाहिए कि मैंने ये करना ही करना है. और आप फिर देखोगे एक टाइम आएगा जब आप खुद एफर्ट करते हो तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारी आपकी ये आपकी लेफ्ट राइट पावर्स जो होती है ना वो साथ और वेव्स जो हैं वो मिल जाती हैं और आपके बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं. और जहाँ तक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की बात है, देखो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. होना चाहिए, जितना फाइनेंशियल फ्रीडम होगा उतना आप लाइफ में इजी रह सकोगे, लेकिन उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है. आजकल के लोग जो हैं वो एक काम नहीं करते, चार चार काम एक साथ कर रहे होते हैं और सोते कम हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो हासिल कर सकें. एक एक एक चीज़ होती है कि 24 घंटे जो है काम करना, एक चीज़ होती है कि स्मार्ट वर्क करना. ठीक है, जितना आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो तो उतना ही आपके लिए अच्छा है. आजकल लोग जो है स्मार्ट वर्क करते हैं, और लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए भी मतलब कि आप को सोचना चाहिए कि आप जो है वो क्या कर सकते हो और क्या आपको करना चाहिए.

तो एनीवेज ये ऐसा डर है जो कि होना चाहिए आपके दिल में, ये डर अगर होगा तो फिर आप कुछ कर सकोगे। जो लोग कहते हैं ना कि यार कोई बात नहीं आएगा तो देखा जाएगा, सो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन वो लोग जब वक्त आता है ना तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हमने लाइफ में करना क्या है। सो अच्छा फिक्र होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि आपको सोचना चाहिए इस बारे में। और खैर थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा हमारे साथ राहुल पिंडी से मैसेज है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, वकास ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, लड़की हो या लड़का हो मैं डर जाता हूँ, है डर जाता हूँ, डरते इसलिए तो कॉन्फिडेंस की कमी है ना जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग देखो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, जब किसी से मिल रहे हो ना बात कर रहे हो तो वो आप कभी नोटिस किया करो इधर उधर देख के बात कर रहे होते हैं, वो कभी भी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। कॉन्फिडेंस वो होता है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करो अगले से, और रिस्पेक्ट के साथ ये और बात करनी चाहिए यार, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए बात करने का। देखो आजकल का दौर कम्युनिकेशन का दौर है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप आजकल के दौर में नहीं चल सकते हो, फिर बहुत पीछे रह जाओगे। और दो ही चीज़ें हमेशा मैं कहता हूँ, एक कॉन्फिडेंस, एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपके पास आजकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

All right, dear listeners, आप वेलकम है कहते हैं FM 101 इंटरनेशनल में. मेरा नाम हसन रजा है और जिस लिसनर से अभी भी ट्यून इन किया आप सबको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. अच्छा जी, आप मुझे बता रहे हो कि क्या आपके दिल में कोई ऐसा डर है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो. मैं सिर्फ डर की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे डर की बात कर रहा हूँ जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो अपने में से. सो वो डर मुझे बताएं. और अच्छा, अभी पिछले दिनों मैं शुएब अख्तर का इंटरव्यू जो है वो देख रहा था और एक प्रोग्राम में गेस्ट आए हुए थे और मैं उनकी बातें सुन के एक बात सोच रहा था कि जब इंसान ने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होता है ना, तो फिर उसके अंदर एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस होता है. तो मैं जो कॉन्फिडेंस शुएब अख्तर में देख रहा था वो काफ़ी अलग था. और वो विद द टाइम आपको आ जाता है और उस टाइम आता है कि जब आपको खुद पता होता है कि मैंने कोई गलत काम लाइफ में नहीं किया, मैं बड़ा सीधा रहा हूँ, मैं परफॉर्म करता रहा हूँ और मैंने अपना नाम बनाया है सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में. और देखो, लाइफ में वो लोग उन लोगों को बोलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं शोएब अख्तर की एग्जांपल दे रहा हूँ, जिन्होंने कुछ किया हो, ठीक है. और जो लोग जो है सिर्फ बातें करते हैं और काम नहीं करते और फजूलियात में लगे रहते हैं, मेरे ख्याल से उनको कहीं पे बोलने का मौका देना भी नहीं चाहिए. सो कॉन्फिडेंस आप में उसी टाइम आता है जब आपने कुछ किया होता है. सो मुझे उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे. देखो, ज़िंदगी के इस हिस्से में एक तो उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है और दूसरा उन्हें पता है कि बोलना कैसे है. और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये मैं नहीं कह रहा, शोएब अख्तर भी कह रहे थे ये बात, मैं भी ये बात कहता हूँ कि जब आप एक स्टार होते हो ना, तो आपको अपने साथ ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपको बताएं कि आपने लाइफ को आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है. और सबसे पहली बात उसमें क्या आती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, कि आपको बोलना आना चाहिए. जब आप बोलो, एक स्टार जो है ना कम्प्लीट स्टार होता है, तो उसका ड्रेसिंग सेंस जो है, बोलने का अंदाज जो है, चलने का अंदाज, वो फिर एक सुपरस्टार प्रॉपर होता है, ठीक है. जैसे अब शोएब अख्तर हैं, शाहिद खान आफरीदी हैं, ठीक है. सो एक डिफरेंट ही लेवल है. तो मैं उनकी बहुत सारी बातों से इसलिए एग्री करता हूँ

अच्छा जी, हमारे साथ राना अब्दुल रहमान साहब पार्टिसिपेट करें। आपने कहा प्लीज भाई कि आप डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बता सकते हैं और इस कोर्स के बाद अर्निंग कितने टाइम में स्टार्ट हो सकती है। यार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या यार, ये तो आजकल के जो जनरेशन है उसको डिजिटल मार्केटिंग का पता होना चाहिए। आप देखो डिजिटल मार्केटिंग में क्या, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो कोई स्पेसिफिक आप मुझे बताओगे तो उसके वाले से मैं बात कर सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में आप किस चीज़ के हवाले से बात कर रहे हो। हाँ, अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हो मैं ज़रूर कहूँगा अगर आप इसको सीखना है तो ज़रूर सीखो, क्योंकि आजकल के दौर में सारा काम ही डिजिटल मार्केटिंग का है, और जिसको आती है तो वो बहुत बहुत सारे तरीक़ों से अर्निंग जो है वो कर सकता है। तो अच्छा, फातिमा सईद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं कराची से, और अच्छा इसके अलावा सारा का मैसेज आपने कहा मुझे पेरेंट्स को खोने से डर लगता है और अल्लाह पाक उनको हिफ्ज़ो अमान रखे, आमीन। उनकी छोटी छोटी बात पर बात परेशान कर देती हैं। ठीक हो गया, सही हो गया है, लेकिन वही बात है, मैंने पूछा है ना कि आपके दिल में ऐसा डर है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो, तो इस डर को आप ख़त्म कैसे करोगी। अच्छा जुनैरा खान है, आप देखें व्हाट कैन आई डू इफ़ आई एम एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ माय पास्ट एंड स्टिल अफेक्ट्स मी अ लॉट। देखिए हर इंसान का पास्ट होता है, ठीक है, किसी का अच्छा होता है किसी का अच्छा नहीं होता, और जिनका अच्छा होता है नहीं अच्छा होता, आपका पास्ट हमेशा आपको कुछ सिखा के जाता है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस जो है लोगों के साथ लाइफ में कुछ भी, वो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग तो हुई होती है ना आपकी, उससे कुछ ना कुछ अल्लाह मियाँ ने आपको उसे एक्सपीरियंस से सिखाया होता है। तो देखो पास्ट को अगर आपको उसे डर लगता है तो एक चीज़ बड़ी सिंपल है, अपने आप को लाइफ में इतना बिजी रखो कि आपको पास्ट जो है ना वो आपको अफेक्ट ना करे, ठीक है। जिस तरह मैं हर एक से कहता हूँ यार एक्सरसाइज किया करो, एक्सरसाइज एक ऐसी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी है कि जो आपको लाइफ में भी पॉजिटिव रखता है। और मैं अगर अपने पास के बारे में बात करूँ, बहुत बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मेरे अपने लाखों शोज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स वाई जी करके मैंने शेयर की हुई हैं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, सो या दूसरों की लाइफ से रिलेटेड है। सो पास से डरना नहीं चाहिए, पास में जो हो गया सो हो गया, देखो टाइम गुजर गया, टाइम कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप उसको बेहतर बना सकते हो, उसको ओवरकम इस तरह कर सकते हो, अपने आप को लाइफ में इतना बिजी कर लो कि आपको पास्ट के बारे में ख्याल ही ना आए। हाँ कभी कभी इंसान बैठता है, कुछ अच्छी आपकी मेमोरीज होती हैं, आपका अच्छा टाइम गुजरा होता है, वो आपको याद आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और कभी कभी चाहे आप जितने भी बिजी हो कोई ना कोई शख्स आपको जेन में क्लिक कर जाता है, आप तो फेसबुक वगैरह पे किसी की पिक्चर आ जाती है वीडियो आ जाती है तो एकदम से आपको माइंड में आता है कि अरे इसने कभी ना कभी मुझे हर्ट किया था, अब बुरा एक्सपीरियंस क्यों होता है, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में, बस जस्ट ख्याल आया दैट्स इट, चला गया।

और रेजुलेशन साहब, वेलकम बैक एट एफएम 101 इंटरनेशनल में। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप साथ साथ अपनी लाइव कॉल्स को प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, 0511111 एंड 0519202540 पे आप डायल कर रहे हो। और साहब आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर, साथ है www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर।

0: अच्छा मुझे अभी थोड़ी देर पहले वकास ने मैसेज किया रावलपिंडी से, आपने कहा मैं ऐसा क्या करूं जो मैं अमीर हो जाऊं, क्योंकि आपके अबू जो हैं वो आपको जो है वो बहुत कुछ कहते हैं इस बारे में कि कुछ जो है वो पैसे ऐसे कमाया करो यार अमीर होने। देखो ये तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो बस कुछ ना कुछ करके बस अमीर हो जाए रातों रात जो है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है मतलब मैं आपको कैसे दे सकता हूँ यार, ये आपको एफर्ट करनी चाहिए, कोई ना कोई काम आपको करना चाहिए। देखो आजकल स्किल्स का दौर है, आप में कोई ऐसा स्किल होना चाहिए जो कि आपको आगे लेके जाए ज़िंदगी में और जिसकी वजह से आप जो है वो अर्निंग करें। और स्मार्ट वर्क की मैंने आपसे बात की है और साथ मैंने आपसे कहा 3-4 काम जो है वो आपको करने चाहिए जो पैसिव इनकम जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं से जनरेट होती रहे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आपको ज़िंदगी में मिले और साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लाजमी करनी चाहिए। बाकी और कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट जो बाकी जो शॉर्टकट्स हैं वो फिर आपको पता है कि वो गलत कामों से आते हैं, गलत काम करने नहीं है, ठीक है। और सो बेहतर है कि एफर्ट करें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें। जब आप कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको उसका रिटर्न जो है कुछ ना कुछ मिलता है। राना अब्दुल रहमान हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, आप देखिए मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। हमारे सर तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग का ही फ्यूचर है। यार आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ प्रोग्रामिंग का ही फ्यूचर है, बहुत कुछ है डिजिटल मार्केटिंग। आप जस्ट चैट जीपीटी पे लिखो ना जाकर, ठीक है, कि जस्ट मुझे एक्सप्लेन कर दे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि अब मैं अभी प्रोग्रामिंग इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको उसके जवाब में रिस्पॉन्स में देगा। तो आप उसको देखो और देखो कि दुनिया जो है वो क्या क्या कर रही है। अच्छा जी, साथ साथ आपकी कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और साथ साथ आपके मैसेज जो हैं हम शामिल करते रहेंगे। तो देखते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में फर्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक हो
0: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे
1: सर? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ सर, राजी से कंडे से बोधी जट सर।
0: क्या कौन बात कर रहे हैं?
1: बोधी जट सर।
0: अच्छा जट भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। रेडियो की आवाज बंद करते, मुझे वापस आ रही है, सुनाई दे रही है।
1: अच्छा सर, एक सेकंड। हाँ जी सर, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आपका शो सुन रहे हैं सर। माशाल्लाह बहुत सोनी आवाज और बहुत अच्छा प्रोग्राम, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे सर।
0: अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। मुझे पहले ये बताएं कि कहना क्या चाहते हैं
1: सर? ये कहना चाहे कि सर डर सर ही रहता दिल दे सर, किसी नाल गलत ना हो सर, बस और कुछ भी नहीं सर। तमाम सुनना रहे साडा सलाम सर, ते तुसी सर जिंदाबाद जे माशाल्लाह रौनकां लाईयां, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, तुहाडे वास्ते बहुत दुआवां सर, सलामती दीआं। ते सर इक सवाल सानू सुनाना आपदा प्रवीण दा सर, असीं डेरे ते बैठे आ सर, असीं रावी दे उस पार ही सर तुहानू सुन रही आवाम दे रहे आ जी।
0: अच्छा चले, मैंने अभी 20 साल में कभी सॉन्ग मैंने किसी की फरमाइश प्ले नहीं की, ठीक है, तो अभी भी नहीं करूंगा। थैंक यू
1: सर। घर में कोई बात नहीं सर, आप सॉन्ग वैसे ही अच्छे लगा रहे हो जबरदस्त सर, मेरी अनिला आपकी को सलूट सर।
0: ड्रॉप मैंने मतलब पहले आपको कहा हुआ कि यार किसी को सलाम दुआ ये नहीं करनी, ठीक है, जस्ट एक ओवरऑल सलाम होता है, बस दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से?
2: कामरान
0: फ्रॉम रावलपिंडी। क्या हाल है आपके?
2: याद आया तो अड़े पिछले शो विच कॉल की थी, याद आ गया? नहीं
0: याद, बिल्कुल याद आ गया।
2: कामरान बोल रहे यार, रहे कि मैंने केस गल था के मैं ना बकरियां रखी हैं।
0: अच्छा
2: हेलो
0: जी जी, बोले बोले।
2: बकरियां रखी हैं ते वो मामला दे कि बकरियां मेरे को 3-4 एक ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ।
0: ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲਈ?
2: ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲਈ ਤਾਲਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਡਰ ਦਿਲ ਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਸ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
0: ਅੱਛਾ
2: ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਕਰਾ ਕਿ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ
2: ਰੋਡ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
0: دور ہے آج کل اور جس طرح آپ کو بکرا مل گیا اسی طرح آپ دیکھے نا بہت ساری میں بے تحاشا ویڈیوز دیکھ رہا ہوں فیس بک وغیرہ پہ ریلز وغیرہ لوگ مطلب غلط کام تو کرتے ہیں لیکن وہ سی سی ٹی وی میں آ جاتا ہے اور بچ نہیں سکتے آج کل آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
3: میں بسمہ بات کر رہی لاہور سے۔
0: جی بسمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
3: جی میں ٹھیک ہوں۔
0: کیا کہنا چاہیں گی؟
3: میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب نا میں جیسے کہ ہوتا ہے نا کوئی بات بتانی ہوتی ہے کوئی اظہار کرنا ہے یا محبت کا تو اس معاملے میں بہت انٹروورٹ ہوں تو میں اس ڈر کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ختم ہوگا۔ مینس کہ کوئی بات ہوتی ہے جیسے گھر والوں سے کوئی پرابلم ہو تو میں ان کو نہیں بتا سکتی جیسے مما کو پاپا کو تو میں اپنے فرینڈ کو بتا دیتی ہوں ایزیلی اور ان کو بتاتے ہوئے مجھے پتا نہیں کیا ہوتا ہے کون سا ڈر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ نہیں مجھے اپنی گھر کی کوئی بات ہے تو مجھے اپنی مما یا پاپا کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو میں اپنی فرینڈ یعنی دوست کو بتاتی ہوں اس کو ایزیلی بتا دیتی ہوں وہ اچھی لڑکی ہے تو اس کو میں بتا دیتی ہوں اور پر ان کو نہیں بتانے ہوتا پتا نہیں یہ چیز سے مجھے باہر نکلنا ہے
0: نہیں تو
3: کوئی طریقہ بس
0: آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے مطلب اگر پیرنٹس سے اگر آپ ڈسکس کرو گی تو کیا ہوگا؟
3: مجھے یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ان کو میری سمجھ نہ آئے یا یہ مجھے نیگیٹو سمجھیں یا غلط سمجھیں گے یا یہ میری ہی غلطی نکالیں گے یا پھر اس کے بعد جب میں ان کو یہ بتا دوں گی تو یہ مجھے اسی پوائنٹ آف ویو سے شاید دیکھیں گے نوٹ کرنا شروع کر دیں گے شاید مجھے یہ ڈر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جیسے محبت کے معاملے میں بھی میں انٹروورٹ رہتی ہوں کہ نہیں میں بتاتی میں نے آج تک نہیں بتایا تو مجھے یہ بالکل شاید یہ پسند نہیں ہے کہ شاید مطلب مجھے اپنے فیورٹ یا پسندیدہ شخص سے اپنی انسلٹ کروانا پسند نہیں ہے تو میں نہیں بتاتی تو یہ چیز ہے جو مجھے اچھا لگے اسے تو میں اتنا ہی دور رہتی ہوں اور اس کو میں کہتی ہوں کہ فیل نہ ہو کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ شاید ہو رہا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے یا یہ مجھے پسند ہے تو مجھے یہ ڈر رہتی ہے اور میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ آگے فیوچر میں بھی کچھ اچھا ہوگا پرفارم مجھ سے میں اس ڈر سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔
0: اوکے چلے
3: اس کا مجھے پوچھنا تھا آپ سے اور دوسری مجھے ایک بات کرنی تھی کہ میری سیکنڈ ٹائم بات ہو رہی ہے آپ سے تو میں نے سنا کہ آپ جیسے چھوڑ رہے ہو اپنا یہ جو ہے تو نا میں نے سوچا کہ دوبارہ کال کروں کیونکہ آپ تھوڑا غصے والے ہو تو میرا نہیں دل کرتا کال کرنے کو سنتی ہوں میں پر کال نہیں کرتی۔ اس دن آپ نے بولا تھا کہ جو سنتے ہیں وہ ایک بار آ کے بتائے تو صحیح کہ ہم سنتے ہیں آپ کو تو پھر آپ کے کہنے پہ کال کی تھی۔ تو مطلب آپ ٹاپک کے علاوہ ہٹ کے کوئی بات بھی نہیں کرتے نہ کرتے ہو نہ سنتے ہو ایک ہی اسٹائل ہے آپ کا تو آپ مطلب میں نے اسی سال آپ کو سننا شروع کیا اور یہی جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ مجھے بڑا منفرد لگا اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ مجھے آپ کو سننا ہے آپ थोड़े अलग हो, डिफरेंट हो सकते ना, तो अच्छे लगे मुझे। और मैंने ये कहना था ये मीन्स कि अगर आप छोड़ रहे हो ना ये अपनी जॉब, तो आप ऐसा करना कि जैसे कि आप आते हो, आपका एक अपना एक स्टाइल है, एक अपनी पर्सनैलिटी है, तो आप लोगों को मौका देना कि वो आए और वो जो वो बात करना चाहते हैं, जैसे आपके आखिरी शोज हो, लास्ट जो सेकेंड लास्ट है जो भी, तो आप लोगों को कहना हाँ जो आप बात करना चाहते हैं वो करो, आज टॉपिक नहीं रखा या टॉपिक से हट के भी आपके दिल में जो है आप बताएं मुझे, तो इस तरह का भी कुछ शो करना। और थोड़ा सा डिफरेंट सॉन्ग जैसे किसी की फरमाइश है उस पर आप चलो लगा देना, सब आप तो छोड़ रहे हो इस वजह से बता रही हूँ। दूसरा जो हमें डर होता है कि नहीं भाई इनको कॉल नहीं करनी, ये अभी डांट देंगे सबके सामने, या सबके सामने नहीं तो हम जाएंगे बाद में डांटेंगे कि ये बंदी ऐसी थी या ऐसा, तो मैं इस वजह से कॉल ही नहीं करती आपके शो में। मैं कहती क्यों भाई, तो एक आपका मुझे नाम अच्छा लगता है हसनैन, और दूसरा उसी मैंने सिर्फ आपका नाम मुझे पता था, मैंने आपका फेस नहीं देखा, मीन्स कि आपको नहीं देखा था आप कैसे हो। उसके बाद मैंने सर्च किया फेसबुक पे, तो मैंने देखा कि माशाल्लाह से आपकी तो ऐसी बाइसेप्स ट्राइसेप्स और इस तरह आपकी चेस्ट, और आप तो काफी अपने फिगर अपना बनाया हुआ जैसे जिम बॉय होता है, तो मैंने देखा हुआ नहीं था, तो उस वजह से मैं कैसे बस नाम ही आपको प्यारा लगता है। तो आप मैंने देखा तो मैंने कहा जब मैं कभी कॉल करूंगी आपसे बात होगी तो मैं बताऊंगी जरूर कि आप मुझे वैसे भी अच्छे लगे थे, देखने में भी अच्छे लगे थे, बस ये कहना था।
0: चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा जी बिस्मा जी, हमारे साथ व्हाट्सएप में बड़ी छोटी सी बात करूंगा कि बेसिकली जो जिन्होंने अभी कुछ टाइम से मुझे सुनना शुरू किया, बेसिकली मुझे हमेशा अच्छा लगता है जो कॉलर्स कॉल करने आते हैं ना, मैं हमेशा से मैंने फॉर्मेट ये रखा है कि पहले आप जो मैंने सवाल रखे ना उसके हवाले से बात करें, उसके बाद आप कोई अपनी बात करना चाहते हैं ना तो वो आप करें, लेकिन अगर आप जो मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे प्रोग्राम में और अपनी बात करना शुरू कर देंगे, वो फिर मेरे प्रोग्राम के फॉर्मेट में आप कह लें कि फिक्स नहीं होता, तो वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो अच्छी बात वो होती है, देखें मैंने बहुत सारे, मैं खुद भी एक लिसनर रह चुका हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुना है, आप लोग उनके प्रोग्राम में कॉल करते हैं ना, अगर आपने जस्ट इधर उधर की बात की वो अभी बोलना शुरू करते हैं वो कॉल ड्रॉप कर देते हैं और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो अगली कॉल पे चले जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है मैं तो फिर भी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं कहता हूँ यार जो मैंने, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ आप उसके बारे में पहले बात कर लो, हाँ उसके सेकंड बात आप कोई भी अगर करना चाह रहे हो कोई रीजनेबल बात है आप ज़रूर प्रोग्राम में शेयर कर सकते हो, मैंने कभी भी नहीं रोका उसके बारे में, तो ये बात है। और जहाँ तक सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट की बात है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती है ना, ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप मैं सो जाता हूँ प्रोग्राम करके। ठीक है वो कहीं एक टाइम था जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया उसके बारे में, तो ये बात है। और जहाँ तक सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट की बात है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती है ना, ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप

0: होते हैं ना, तो अगर कोई कहे कि यार बस सिर्फ इतने रोने वाले गाने लगाओ, इतने रोने वाले के सुन के बंदा जो है अगर नहीं भी रोना चाहता ना वो रोना शुरू कर दे, ये मैं नहीं कर सकता। तो आई थिंक के लोग वीडियो इसलिए सुनते हैं कि वो अपना मूड जो है वो अच्छा कर सकें और उनको एक एंटरटेनमेंट के आप कह लो वे में उनकी लर्निंग भी हो सके और वो साथ साथ इंजॉय कर सके शो को, बजाय इसके कि वो बिल्कुल ही उनका टेम्पो इतना डाउन हो जाए कि उनको कुछ भी समझ जाए। एनीवेज़ ये कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है, 0511111111 एंड 0519202540। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया फ्रॉम रावलपिंडी। जी सादिया, क्या कहना चाहोगी आप? चोर डाकुओं से डर लगता है
1: जी, चोर डाके और दूसरा मेरे जंगली जानवरों से।
0: अच्छा, लेकिन चले ये डर तो आपको लगता है, लेकिन इसको खत्म कैसे कर सकती हो आप?
1: इसको खत्म बस वो मतलब कि सपोर्ट होनी चाहिए ना बस।
0: क्या क्या सपोर्ट होनी चाहिए?
1: सिक्योरिटी।
0: अच्छा, सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने रखी हुई है सिक्योरिटी?
1: मैं सिक्योरिटी बस वो ये है कि एक तो होता है ना कि इंसान होता है ना सिक्योरिटी, दूसरा इंसान के पास कुछ चीज वो ऐसी हो ना जिससे ना इंसान अपनी मतलब वो तो वो फिर बस उसी के वो कहती हूँ कि वो होनी चाहिए पास करने के।
0: अच्छा
1: जी,
0: ठीक है।
1: हाँ, एक तो जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा डर लगता है, दूसरा ये चोर डाकू से। तो आजकल इतनी हो गया ना स्क्रीन करें, और मेरे ऊपर तो दो तीन दफा मेरे साथ तो ऐसा हादसा भी हुआ है।
0: ओके,
1: हाँ जी। तो मेरा अक्सर ऐसे होता है, मैं मतलब बस सकती हूँ ना तो मैं बस सकती जगह, मतलब मैं जब ज्वाइनिंग में थी ना अभी फिलहाल में जो है ना वहाँ से ऑफ मैंने किया हुआ ना जहाँ पे, वहाँ पे भी मैंने जो है ना हालांकि देखी वहाँ पे मतलब सारे हम स्टाफ ही थे, तो वहाँ से मेरी चीजें गायब हो जाती थी, मतलब वहाँ पे बंदा क्या कहे किसी को।
0: ठीक है,
1: हाँ जी। तो मैं बस इस मामले में ना मैं कहती हूँ कि बस जो है ना चोर डाकू तो मेरी इतनी आदत ऐसी कि मैं किसी चीज को नहीं देखती मतलब कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि शायद दूसरा भी ऐसा ही है, मगर मेरी मेरी चीजें अक्सर गायब हो जाती है, अक्सर
0: मोबाइल में से बैलेंस भी गायब हो जाता है। इट मीन्स कि आपने अपने मोबाइल फोन के ऊपर कोड नहीं लगाया हुआ जिसकी वजह से आपके दोस्त वगैरह जो है वो आपके मोबाइल का बैलेंस जो है वो खत्म कर देते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से?
2: हसनैन भाई, मोइन जट बात कर रहा हूँ, कोटलिया आजाद कश्मीर से।
0: जी मोइन, कैसे हो? ठीक ठाक हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, पहले तो मैं टॉपिक के ऊपर बात करूंगा फिर अदर बात करूंगा।
0: हाँ
2: हाँ, टॉपिक के वाले चीज़ ना, जब तो हसनैन भाई बहुत से डर लगता है यार।
0: अच्छा,
2: दरअसल ना ये नहीं है कि अभी तो मेरी छोटी एज है, मेरे दोस्त कुछ जो है ना ऐसे हादसात का शिकार हुए तो बहुत हो गए, तो मानी भाई जी भी याद आती है। तो फिर ना मुझे कभी कभी ना मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास ना बहुत सारी, सुनते सुनते तो मैं डर जाता हूँ, अपने आप का मैं हिसाब करता हूँ यार मैंने अभी तक क्या किया है। तो फिर मैं कहता हूँ कि अभी मेरी जिंदगी कहाँ हो यार, लोग तो 60-60 साल के वो अभी तो जी रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं, मैं देखता हूँ आगे पीछे, लेकिन फिर मुझे ये भी डर होता है यार मेरी एज के भी तो बहुत हो गए।
0: लेकिन इसको इस डर को खत्म कैसे कर सकते हो?
2: इस डर को मैं फिर खत्म ऐसे करता हूँ ना, फिर छोड़ देता हूँ, तवक्कल तो अल्लाह। मैं कहता हूँ कि जो होना है देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से किसी का दिल ना दुखाऊं और अच्छा अमल करता रहूं, तो बाकी ये तो मैं सोचता हूँ। दूसरी बात जब मैं बड़ी एज वालों को देखता हूँ ना कितने खुश हैं, तो फिर मुझे हौसला मिलता है कि यार इतने बड़े हैं तो ये खुश हैं, इनके हालांकि पॉसिबिलिटी इनकी ज्यादा करीब है, क्योंकि एज के साथ भी होता है ना एक मैटर, तो

0: ज्यादा चांस हो जाते हैं बनने के बनने के तो
1: okay.
0: हालांकि किसी वक्त भी आ सकती है लेकिन वैसे एक रीजन ठीक है बात कर रहा हूँ
1: ठीक हो गया तो, सही हो गया तो, दूसरी बात
0: थोड़ा हौसला मिलता है
1: ठीक है दूसरी बात
0: तो दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ भाई के देखिए मैं आपको 2012 से सुन रहा हूँ कभी सुन रहा था मतलब बीच बीच में छोड़ा भी है लेकिन सुन रहा हूँ कंटिन्यू 2012 से तो स्माइल स्टाइल का तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं यही आपका जो है शो सुनता रहा हूँ तो इस चीज का भी डर है कि अच्छे आरजेस जो है वो छोड़ गए या बहुत हो गए या कुछ तो ये चीज जो है ये भी मेरे लिए डर से कम नहीं है आप अगर छोड़ जाएंगे तो दिल में और डर बैठ जाएगा आप हौसला देते हैं और सबसे प्यारी बात आप आरजेस की लगती थी मुझे जो पुराने जितने कंबाइन शो होता था ना इतना शुगल मेला लगाते थे आप इतना कि मैं क्या बताऊँ छह छह घंटे आप कंबाइन शो आप करते थे ईद पे स्पेसिफिक जो डे होते थे परवेज चेक के साथ आप मानी भाई बाकी सारे नासर साहब भी आते थे आसिम रिशान आदिल सारे जितने भी थे बहुत मजा आता था तो वो बहारें हमें कब मिलेंगे आप फिर प्रॉमिस करें ना कि जब कोई ऐसा इवेंट होगा तो आप आएंगे
1: हाँ कोई स्पेशल कोई शोज होंगे तो जरूर
0: तो सर वेव चेक सबको भी लाया करें कंबाइन शो में क्योंकि उनकी बातें भी जो है ना बहुत याद आती हैं मैं बयान नहीं करता था सर एक और होते थे जुखरुफ खान साहब वो भी कंबाइन शो में आते होते थे तो मैं आपको क्या बताऊँ ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है चलो और कॉलर भी लाइन में लगे हुए हैं लेकिन इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा
1: चलो ठीक हो गया थैंक यू
0: बहुत दुख हो रहा है ये बातें करके मैं फील कर रहा हूँ आप भी फील कर सकते हैं
1: चलो चलो थैंक यू मुई अल्लाह हाफिज ऑलराइट जी खैर जिन मेमोरीज की आप बात कर रहे हो ऑब्वियसली देखो अभी बहुत सारे हमारे प्रेजेंटर्स ऐसे हैं जो अपनी अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बिजी हैं और हर कोई अपना अपना जो है वो काम कर रहा है तो वही बात है ना वक्त एक जैसा नहीं रहता वक्त जो है वो इंसान की प्रायोरिटीज़ जो है वो ज़िंदगी के साथ साथ जो है वो बदलती रहती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कांस्टेंट आपके साथ चलती रहती हैं तो लेकिन इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ नया लाजमी करना चाहिए बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए भी और वो आपके मतलब पर्सनली आपके लिए बहुत अच्छा है एनीवे जी कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम जी इरफान कैसे हो आप ठीक ठाक हो
2: अल्लाह का शुक्र है बस आपकी आवाज़ सुन के और अच्छा हो गया
1: चलो गुड हो गया क्या कहना चाहोगे
2: आपसे सबसे पहले तो बात करूंगा कि नैन भाई आप शर्मिंदगी वाली बात है कि मुझे बिजली से डर लगता है सबसे ज्यादा
1: बिजली से अच्छा
2: मैं बिजली को कभी हाथ नहीं लगाता अगर मैंने मोबाइल फोन या कुछ भी करना हो ना मैं किसी दूसरे को कहता हूँ मैं मोबाइल बिजली को हाथ नहीं लगाता
1: अच्छा
2: मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ था ना पंखे को मैंने हाथ लगाया वो पंखे जो है ना मुझे पकड़ लिया उसने मुझे इतना जोर से फेंका ना बहन भाई मैं यकीन करे तकरीबन 12 साल हो गए उसके बाद मैंने बिजली को हाथ नहीं लगाया
1: अच्छा तो मतलब कि इस डर को आप खत्म इस तरह करते हो कि आप दूसरों से कहते हो कि ये काम कर दो
2: हाँ बिल्कुल मैं ना छोटे बच्चे है ना मेरे भतीजे उनको मैं ना मतलब एक हफ्ते का 100 रुपया दे देता हूँ तो ऐसे ना मतलब वो क्या कहते हैं मजदूरी वैसे भी आंखें लगते हैं लेकिन पैसे देता हूँ ना तो फिर वो ज्यादा खुश होके मतलब बात मान लेते हैं तो एक मुझे ये डर लगता है तो दूसरा मुझे यार ये डर लगता है कि पहले माँ बाप से या भाभी है भाभी के बाद जब मतलब भतीजों की वाइफ आएंगी फिर मेरा क्या होगा मतलब ना एक अपने आप को चेंज करने से डर लगता है कि मतलब आप तो रेडियो सुनता हूँ एंजॉय करता हूँ सोता हूँ बाद में क्या होगा
1: चलो बाद की बात में देखी जाएगी अभी एंजॉय करो बाद की बातें सोच के अभी से अपने प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हो
2: यार कभी कभी जब सोचता हूँ ना मैं कहता हूँ कि अगर माँ के बाद भाभी अच्छी मिल गया ना तो हो सकता है बहुएं भी अच्छी मिल जाए तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि यार बंदा एक जैसा नहीं होता यार उन्होंने कहना है कि ये जो इनका चाचा है ना इसको कहीं फेंक दो ये रेडियो नहीं बंद करता दिन रात
1: अच्छा
2: तो यार बस अल्लाह पे छोड़ देता हूँ इंशाल्लाह पहले अच्छा है तो बाद में भी अच्छा ही होगा
1: खैर होगा ठीक हो गया चलें इरफान थैंक यू अल्लाह हाफिज इरफान हमारे साथ थे और कॉल्स हम आपकी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। इरम बात कर रही है लाहौर से, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या कहना चाहेंगी?
3: सर डर की बात कर रहे हैं आप।
1: जी जी,
3: अल्लाह का शुक्र जैसे कि माज भी नाती कह रही है, ये तो अल्लाह किसी को जुदाई ना दे, तो ये तो एक दिन होना है, मुझे भी यही डर रहता है, अब दुआ होती है कि अल्लाह माँ बाप से पहले ले लेना, लेकिन ये तो अब अल्लाह को पता किससे पहले जाना किसने नहीं जाना। तो उसके अलावा सर और अल्लाह कोई डर नहीं, एक डर है जिसका सलूशन भी आप लोग के पास, तो डर आप लोग निकाल सकते हैं।
1: क्या
3: तो ये डर है कि आप लोग सर उसका सलूशन निकाल सकते हैं?
1: नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या
3: वो? सर ये है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सब प्रेजेंटर को, आर्जेंस को, और एक हमारी प्यारी दोस्त है अनिला, जैसे आप लगता है कि दिल से रिश्ता हो गया आप लोगों से, रूह का। तो हमेशा भी ये डर रहता है कि अब जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम रेडियो सुन लेते हैं, तो अगर ये ना हुआ तो हमारा क्या
1: होगा? अच्छा ठीक हो गया
3: सर, सलामत रहे हमेशा, अल्लाह आप लोग को आबाद रखे, अनिल आप को आबाद रखे, कोई गम ना दे, खुश रखे।
1: चले थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
3: तो हंसाते रहते, अल्लाह उसे भी हंसता मुस्कुराता रहते।
1: अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, मैं भाई कैसे हैं?
1: जी मैं ठीक ठाक, कौन कहाँ से?
4: अकनवाज बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से।
1: अकनवाज फ्रॉम रावलपिंडी, क्या कहना चाहोगे?
4: नान भाई सबसे पहले तो मैं टॉपिक से बात करूँगा कि मैंने ना किसी से ना वाईफाई का कोड लिया हुआ है, तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं वो पासवर्ड ना चेंज कर दे।
1: पासवर्ड ना चेंज करे तो?
4: हाँ।
1: तो इसके लिए नहीं
4: भाई, मैं अभी आपको इसका रीजन बताता हूँ। अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अभी आपको लाइव स्ट्रीमिंग सुन रहा था ना, तो अचानक क्या हुआ कि एकदम से मेरा नेट जाना बंद हो गया।
1: अच्छा।
4: तो नशिया खाना खत्म हो गया, अब आपको मैं नहीं सुन पा रहा। मैंने कहा चले नैन भाई के प्रोग्राम में हाजिरी तो लगवा लेते हैं ना।
1: अच्छा।
4: तो आपसे ये पूछा था कि अभी लास्ट कितने मंथ आप और शो करेंगे?
1: मैं बस नेक्स्ट
4: एक दो मंथ कर लेंगे अभी?
1: नहीं नहीं, दो नेक्स्ट दो शोज करूंगा, दैट्स इट।
4: अच्छा, दो शो बहुत जल्दी जा रहे हैं सैन भाई, वैसे बहुत शॉर्ट मारे आपने हमें।
1: हाँ चलो, मैंने पहले बता दिया ना।
4: चले बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ, अल्लाह ताला अच्छी सारा दोबारे। तो आप वैसे मतलब ना कोई व्लॉगिंग वगैरह करनी शुरू कर दें ताकि हमें कोई मोटिवेशन आप देते रहे?
1: करेंगे, करेंगे। आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे ज्वाइन करके रखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ।
4: नहीं आप मतलब कोई व्लॉग वगैरह बनाना शुरू करते हैं करना?
1: हाँ तो आप मुझे फॉलो करके रखो ना, तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा।
4: चले ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर, सब सुनने वालों को मैं सर अस्सलाम वालेकुम।
1: चलो थैंक यू अल्लाह हाफिज। और जी आप ही कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करें 0511111 एंड 0519202540 पर। और अभी हम बढ़ते हैं एक म्यूजिक ब्रेक की तरफ, तो उसके बाद जब वापस आते हैं मजीद आपके साथ बातचीत करते हैं और आपकी कॉल जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ एनी खालिद की आवाज़ में, ट्रैक को इंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसन रज़ा, आपको मेरा साथ देगा ठीक रात के दो बजे तक।

0: ओके ओके लिसनर्स सब वेलकम बैक इन एफएम मोरो इंटरनेशनल में एनी खालिद की आवाज में आप ट्रैक सुन रहे हैं। एनीवेज जी, आपसे मैंने पूछा है कि मुझे बताएं कि कोई ऐसा डर जो आपके दिल में हो जिसे आप खत्म करना चाहते हो। सो आप अपना फीडबैक मुझे दे रहे हो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शाय के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर, साथ आपकी लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करें 0511111 एंड 0519202540 पर। आज फातिमा सैयद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने कहा कि अच्छा यू मे हैव सीन समवन राइट इट अगेन एंड देन डिलीट इट विदाउट सेंडिंग इट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू मी राइट नाउ, और आई हैव रिटन माय रिप्लाई सेवरल टाइम्स देन डिलीटेड इट, और आप जो है दोबारा आप लिख रही हैं और फिर आपने नहीं लिखा। अच्छा, क्यों आप बार बार लिख के डिलीट क्यों कर रही हैं, अब ये भी मुझे बताइएगा। अच्छा, सबा उमर अब्बासी हमारे साथ कराची से हैं, और ठीक है उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ठीक हो गया है। हाँ चलें, और बहुत सारे मैसेज हैं जिसमें जो मैंने सवाल किया उसके वाले से बात नहीं है, इसलिए मैं उनको प्रोग्राम में शामिल नहीं करूँगा। इसके अलावा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है किसने, अच्छा सरबत हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है। आपने कहा कि काम करने की कोशिश ये है कि अगर वॉशिंग मशीन लगाऊं तो कपड़े डाल के अपनी सिस्टर से कहती हूं कि उन ऑन कर दो, क्योंकि पानी वाली जगह से डर लगता है आपको। ठीक हो गया, क्या इसकी वजह क्या है? और एक और बात, अच्छा नहीं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। अच्छा ठीक है, इन सिंपल आपको इलेक्ट्रिक शॉक से डर लगता है, सही हो गया। और मजे की बात यह है कि जितना मैं डरती हूँ उतना ही मुझे छोटा मोटा करंट जो है वो शॉक जो है वो लग जाता है, ठीक हो गया। इंसान जिस चीज़ से डरता है ना वो आपका उसी तरह पीछा करती है, तो ये एक जनरल सी बात है, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा जी हमारे साथ 4471 पर, ठीक है सही होगा, उनको मैं थोड़ी देर में शामिल करता हूँ। अभी कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल करता, कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जो है मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। अब आप कॉल कर सकते हो 0511111 and 0519202540 पर, अभी कॉल जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अच्छा, ये आवाज जानी पहचानी है, शफकात भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: तो मेरी आवाज नूर जहान से मिलती है?
0: नहीं, आपकी आवाज इसलिए जानी पहचानी है, मैं लिसनर्स बता चुन बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं शफकात भाई जो है, और इन्होंने आज प्रोग्राम सुना है और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है।
1: आपसे सिर्फ 6 महीने बड़ा हूँ बस। आपका प्रोग्राम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और जब से शुरू किया आपने 12 बजे सुन रहा हूँ।
0: जी जी,
1: बिहार किसी वक्त और बड़ा मजा आ रहा है।
0: चले, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आपके जो पार्टिसिपेंट्स वो भी बड़े अच्छे हैं, बड़े वो हौसला अफजाई करते हैं, आप भी बड़े स्टाइल से बोलते हैं माशाल्लाह।
0: अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपको कोई डर है दिल में?
1: जिसे डर नहीं है,
0: कोई डर नहीं है।
1: आपको पता होना चाहिए कि शादी के बाद सब डर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बेगम का डर रह जाता है। ये ऐसा डर है कि बंदा कहता खत्म ना हो।
0: अच्छा, इसको आप खुद खत्म नहीं करना चाहते?
1: आप खुद शादीशुदा हैं, आपको तो इस बात का पता होना चाहिए।
0: हाँ जी। अच्छा,
1: कहते हैं कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे।
0: अच्छा,
1: क्या तो इस तरह गया कि मुद्दतों नहीं मिला, मिला जो फिर तू यूं के वो मलाल में मिला मुझे।
0: ओहो,
1: ये आपके समाइन की नजर तो अशार।
0: अच्छा, वैसे ये कौन है? वैसे
1: ये मुनीर नेहरी साहब हैं।
0: नहीं, वो तो है, लेकिन मतलब के जिनके लिए आपने पढ़ा, ये कौन है आपके ख्याल में, कौन आया आपके?
1: वो ख्याल में वही आया जो ख्याल में आता है। आप थोड़ा मुताहत रहे, मेरे बेगम का प्रोग्राम सुन रही है।
0: अच्छा चले, भाभी को सलाम, और क्या और क्या कहना चाहेंगे?
1: बस आपके लिए बहुत सारी दुआएं, इस तरह आप लोगों का दिल बहलाते रहें और आगे चलते जाएं।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शफकात भाई,
1: बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, जैसे हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो सऊदी अरब जिद्दा रियाद में हमें सुन रहे होते हैं और वो पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं, तो शफकात भाई जो हैं रियाद से आए हुए हैं और अभी इन्होंने नेक्स्ट वीक जो है वापस भी जाना है और मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं इनके साथ और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ शफकात भाई की। कॉलर्स कॉलर्स कॉलर्स, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी सारा, क्या कहना चाहोगी आप?
2: मुझे एक तो डर है, मतलब एक डर ये है कि क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो पहले मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं ये दुनिया छोड़ जाऊंगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। लेकिन अब ये है ना कि जब से मानी गई और कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं उसके बाद मुझे पता नहीं किस डर लग गया है कि हार्ट पेशेंट जल्दी चले जाते हैं और मुझे जल्दी जाने का कोई दुख नहीं। लेकिन जब मेरे प्रेजेंटर छोड़ के जाते हैं तब मुझे ज्यादा दुख होता है।
0: अच्छा, नहीं तो फिर इस डर को कैसे खत्म कर सकती हैं आप?
2: इसको तो शायद मैं, मुझे नहीं लगता मैं खत्म कर सकती हूँ या मैंने कभी कोशिश नहीं की है। और सेकंड ये है कि जब भी मेरा कोई भी फेवरेट प्रेजेंटर छोड़ के जाए तो आई बिलीव मुझे बहुत तकलीफ होती है। और आप बताए, शायद आप खुद कहते हैं ना आप लिस्नर रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि फेवर आगे तक चले जाए तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। और बहुत बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन ये है कि जब इमरान भाई चले गए ना उसके बाद मैं सोचती हूँ बस हमारे आगे जहाँ पे भी रहे जरूरी है तो वो FM पर ही रहे, यहाँ पे भी रहें, बस खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहें और अपनी खुशियाँ इंजॉय करें।
0: बिल्कुल ऐसा ही सोचना चाहिए।
2: और दूसरा ये है कि बस अब आप लोग हमें छोड़ जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। आप बताए, मेरे आज हैं मेरे कॉन्टेक्ट में तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ क्योंकि आप क्यों छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या चाहती हो, हम सारी जिंदगी FM पे नहीं। मैं कहती हूँ उनका, आप लोगों ने हमें खुद अपनी आदत डाली, अब हम क्या करें, आप लोगों के बगैर हम कुछ भी अच्छा नहीं होता। यकीन माने भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है।
0: ठीक हो गया, चले देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है और हर चीज़ जो है ना वो आई थिंक के टाइम पे अच्छी लगती है। और जब एक टाइम आता है कि आपको अपनी कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ती है और मेरे ख्याल से रिस्पेक्टफुली आपको छोड़नी चाहिए। मुझे अगर मेरे से डर की बात करें ना, मुझे हमेशा से एक चीज़ से डर लगता है कि यार आप कोई जगह छोड़ ना रहे हो और आपको अगला बंदा फिर कहे कि यार प्लीज़ यार जिस जगह छोड़ दो आप, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती।
2: आई नो, बट मुझे लगता है कि आप शायद अफरीदी और कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी कोई भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारी दुआओं में, हमारे दिलों में, जो लोग दिलों और दुआओं में रहते हैं आई थिंक उनसे कभी भी पूछा नहीं आता।
0: ठीक हो गया, चले, थैंक यू वेरी मच, आप ऐसा सोचती हैं और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया।
2: आप भी खुश हैं, सलामत रहें और आई रिक्वेस्ट यू, मेरे लिए दुआ किया करें। शदीद तबीयत खराब थी, मुझे सिर्फ आपका शोर था, इसलिए मैं आई।
0: ठीक हो गया, चलें, मेरी हमेशा आप सबके लिए दुआ रहती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, कॉल्स आपके हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और अभी देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ आते हैं, कहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक,
3: साजदा बात कर रही
0: हूं। साजदा फ्रॉम लाहौर। जी साजदा, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो, खैरियत है?
3: हाँ जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। भाई आपके टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, एक जब रात को लाइट चली जाती है मुझे बहुत ज्यादा अंधेरे से डर लगता है और दूसरा मुझे छिपकली से डर लगता है, मेरे कमरे में ना आ जाए या मेरे बेड पे ना आ जाए, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। जब तक मैं छिपकली को कमरे में से निकाल ना लूं तो मुझे सुकून नहीं आता, बहुत ज्यादा डर लगता है। और दूसरा भाई मेरे एक ये हो बेटा आप चले जाओगे, आप आ जाए प्लीज। आज से हम इतना कहते हैं, बहुत ज्यादा यंग लोग कहते हैं ना आपसे बात करते करते हैं ये वो, लेकिन आपके रुकने के बगैर जैसे नाचते चले तो आप यंग के कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई मुझे ना ये डर रहता आप चले ना जाओ, आज छोड़ के ना जाए प्लीज प्लीज।
0: नहीं देखो मैं अभी इस बारे में क्या कहूँ, मैंने देखो इसके बारे में पहले शो में बात की
3: है, अच्छे से विचार दिए इतना, यानी कि आपसे बहुत ज्यादा लोग ना कहते हो गए हैं। एक होता है आरजी, हर आरजी का ना अपना अपना स्टाइल, लेकिन आप बहुत अच्छे हो माशाल्लाह।
0: चले बस दुआ में याद रखें, और आप लोग ऐसा सोचते हैं मेरे लिए बहुत है।
3: नहीं सोचते नहीं, हम वैसे भी ना कब से आपको सुन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं इनके हर बंदे का ना आपके तरफ ना इनका अटैच हो गया है, सबका दिल यही है। जब मंडे आता है ना तो आपके शो का इंतजार होता है, आ जाना है आपने, आ जाना है, यकीन करें आप छुट्टी करते हैं तो वो जब पूरा यानी कि वीक गुजरता है ना।
0: मैंने कब छुट्टी की है? देखिए इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर, मैंने तो बहुत हार्डली छुट्टी की होगी।
3: नहीं मैं कह रही हूँ जब आप छुट्टी करते हैं ना तो हमें उस वो मुंडे का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, तो वो गुजरता ही नहीं सकता, हम कहते कब आएगा मंडे तो आप आओगे, तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको हम, यानी क्या आपके शो के बगैर नहीं रह सकते सुनने के बगैर।
0: चले मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका साजिदा,
3: प्लीज आप ना जाएं, अगर आपका कोई ऐसा मसला आप हल कर लो।
0: नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: तो आपको फिर देखिए आपको मैडम सदम का कह के आपको डबल सैलरी दिलवा देंगे आप।
0: देखो कभी कभी जिंदगी में ना मतलब पैसे की बात नहीं होती, कभी कभी जिंदगी में इंसान को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, शायद वो स्टेप्स जो हैं आपको कहीं और आगे लेके चलते हैं, तो वो स्टेप्स उठाना जरूरी होते हैं।
3: वो तो ठीक है लेकिन सब कंफ्यूज हो रहा है, प्लीज आप ना जाएं।
0: चलो बहुत शुक्रिया साजिदा, थैंक यू वेरी मच आपने प्रोग्राम में।
3: आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और वे जी अभी कॉल्स में शामिल कर रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा मुझे बताओ कोई ऐसा डर जो आपके दिल में हो जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो, और खैर बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो एक ही बात पूछ रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का जवाब जो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और नेक्स्ट प्रोग्राम में और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में हम और बहुत सारी बातें उस हवाले से कर लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम,
4: ताजी बात सुन रहा हूँ आपको।
0: कौन, सॉरी
4: जावेद,
0: आपकी आवाज कट रही है।
4: अफजल जावेद।
0: अफजल जावेद
4: सर,
0: जनाब कहाँ से बात कर रहे
4: हैं? इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ।
0: इस्लामाबाद से, अच्छा क्या कहना चाहेंगे अफजल भाई?
4: मैं ये कर भाई कहूँ आपके अंकल कह सकते मुझे देखा नहीं आप पहली बार किसी भी प्रेजेंटर को इतने साफ और फास में बोलते हुए सुना, और आज मैं पहले प्रोग्राम सुन रहा हूँ आपका।
0: ओके,
4: और आज ही मुझे पता चला कि आप छोड़ के जा रहे हैं, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंसान को बेहतर से बेहतर की डिस्ट्रीब्यूट तो होती है, लेकिन अच्छा अंदाज आपको बोलने का है, मैं इतने से पाक आपकी हंसी है, माकूल तीन बातें करते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि आप छोड़ चले जाए, ऐसी बात होगी जैसे कि बेहतर की डिस्ट्रीब्यू इंसान को होती है।
0: जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। हेलो जी जी, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी
4: शायद, आवाज कर भाई। अच्छा लगा मुझे आपसे, आपका प्रोग्राम पहली दफा सुना आज
0: सर, थैंक यू वेरी मच।
4: सारे दिन ही
0: हाँ
4: ये खबर मुझे कि आप छोड़ के जा रहे हैं।
0: चले कोई बात नहीं, दुनिया में छोटी छोटी बातें होती रहती है।
4: जी
0: बिल्कुल ठीक हो गए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। کال جو ہے کچھ دیر میں ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. ابھی مجھے میوزک بریک کی طرف بڑھنا ہے. نیکسٹ ٹریک میں نے آپ کے لیے کیوں کیا ہوا ہے کال بینڈ کی آواز میں, اور پچھلے دنوں میں جنید خان کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور اب تو خیر میوزک سے کافی دور ہو چکے ہیں, کبھی کبھی گنگنا لیتے ہیں لیکن ایکٹنگ البتہ بہت اچھی کر لیتے ہیں. اینی ویز اس ٹریک کو انجوائے کیجیے. میرا نام حسین رضا, آپ سن رہے ہیں FM 101 انٹرنیشنل سابا شیو سے.

0: रेडियो लिसनर्स, आप वेलकम बैक है, कहते हैं एफएम 101 इंटरनेशनल में। और मैं आपको बताऊं कि मेरे दिल में पहले डर रहता था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं, कुछ साल पहले तक जो है कि मैं ये सोचता था कि अगर मैंने हमेशा से अपने प्रोग्राम से मैं बताया है कि मैं बड़ा सोशल बंदा रहा हूँ, दोस्तों के साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, हर टाइम दोस्त। तो ऑब्वियसली मैंने एक्सपीरियंसेस भी बड़े किए हैं, लेकिन मैंने कुछ साल पहले जो है एक बात मैंने अपने आप को समझाई, और वे ये समझाई, उससे पहले मुझे डर लगता था कि यार मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स कहता हूँ, चाहे वो मेरे साथ ठीक करें या गलत कर रहे हैं, मेरे दिल में ये डर होता था कि यार कहीं ये दोस्ती ख़त्म ना हो जाए, यार कुछ किसी की नज़र ना लग जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए। अच्छा, समटाइम्स लाजमी नहीं कि आपके इर्द गिर्द के दोस्त जो हैं वो आपके साथ ठीक ही कर रहे हो, कभी कभी वो आपके साथ गलत भी कर रहे होते हैं, और वो उनकी आपको समझ भी होती है कि हाँ यार ये गलत कर रहा है, आप इग्नोर करते हो, लेकिन वही आपको खोने का डर होता है। मैंने उस डर को ऐसे ख़त्म किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो गलत लोग थे ना, जो सिर्फ मेरे साथ नहीं औरों के साथ भी गलत करते थे, जो आप कह सकते हो लोग आपके साथ होते हैं लेकिन आपके साथ हो के वो आपके साथ खेल रहे होते हैं, मैंने एक एक करके उनको ज़िंदगी से निकालना शुरू किया। मैंने उस डर को ख़त्म किया, मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है जितना मर्ज़ी मेरे क्लोज है, लेकिन जो हर एक के साथ गलत कर रहा है, गलत बंदे को मैं नहीं अपने साथ लेके चल सकता। मैंने एक एक करके मैंने उन सबको अपने से दूर कर दिया, और शायद मैंने नहीं किया, ये अल्लाह मियाँ खुद करते हैं। वो कहते हैं ना कि हज़रत अली का कौल है कि अल्लाह मियाँ दो लोगों को उस टाइम अलग कर देता है जब दोनों में से एक मुनाफिक होता है, तो वो शायद अल्लाह मियाँ एक टाइम ले के आता है, ऐसा होता है। और तो वो जो मेरे अंदर डर था ना, वो डर ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार मेरे करीब अगर कोई बहुत मतलब मेरा क्लोज दोस्त भी है ना, मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया अपने अंदर से कि यार अगर वो नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, अगर वो मेरे साथ गलत कर रहा है, ये नहीं कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आपके साथ लॉयल होते हैं, सिंसियर होते हैं, जो आपके साथ गलत कर रहे होते हैं, जो आपके साथ बैठ के आपके साथ खेल रहे होते हैं, तो उन सारे लोगों को मैंने साइड पे कर लिया, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो है विद टाइम जो है आप सीखते हो, और विद टाइम जो है वो आपके माइंड में आती हैं, और विद टाइम जो है आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, और क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ है या नहीं है, और आप एक टाइम ऐसा आता है उन लोगों को ये फील कराते हो कि उनकी जगह आपके टेबल पे नहीं है, ठीक है, और जब वो उस चीज़ को फील करते हैं तो फिर उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं वो उनको बेहतर पता होती हैं। तो ये चीज़ मैंने पिछले कई सालों में लर्न की, सीखा ये मैंने, और इस डर को मैंने अपने अंदर ख़त्म किया, और एक और डर को ख़त्म किया कि कोई भी चीज़ हमेशा रहने के लिए नहीं होती, ठीक है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई भी आपकी ज़िंदगी कोई भी चीज़ हो, वो किसी टाइम भी आपके पास से जा सकती है, तो कोई बात नहीं, उसको मतलब ज़्यादा दिल पर नहीं लेना। एनीवेज, कॉलर्स हम प्रोग्राम में शामिल करें 0511111 and 0519202540। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: अनीला फ्रॉम लाहौर।
0: जी अनीला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, और हां डर अच्छा है, कभी-कभी होना चाहिए।
0: कभी-कभी होना चाहिए। अच्छा, क्या कौन सा डर दिल में है जिसे आप
1: हर वक्त तो नहीं डरते रहना चाहिए?
0: नहीं, हर टाइम किसने कहा है?
1: ठीक है। बहुत सारी चीजों से होता है, बहुत सारे कामों से होता है, जैसे मुझे अक्सर होता है ना, मैं किचन में जब खाना बना रही होती ना, तो मेरे हस्बैंड आके जो बीच में अपनी फनकारी मार रहे होते हैं ना, जब तो मुझे डर लग रहा होता है ओए ओए क्या खाना, तो खाने में जरूर कुछ गड़बड़ होनी है।
0: अच्छा,
1: कभी किसी को होता नहीं क्या, वो वक्त से पहले उसको दम पैक करके तो उतार देंगे, या पहले अभी मैंने अभी इसमें पहले कोई चीज और ऐड करनी है, कोई और चीज ऐड कर देंगे, तो यार आप ना करो ना प्लीज, मुझे यही डर लग रहा था कि ये किचन में ना आ जाएंगे।
0: नहीं तो इसका हल क्या है, इसको इस डर को खत्म कैसे किया?
1: इसका हल ही होता है कि मेरी कोशिश होती है कि जब वो इधर उधर कहीं अपने और किसी काम में बिजी होते हैं या कहीं बाहर गए होते हैं ना, मैं फौरन से खाना रेडी करना शुरू करूं।
0: अच्छा, वरना उनको 1000 रुपए दे के बाहर मार्केट भेज दिया करें जबरदस्ती?
1: नहीं, मुझे देने नहीं पड़ते, उनके पास बतेरे होते हैं खुद ही, लेकिन ये कि उनको नमाज के लिए, जैसे देखिए खाना बनाने का टाइम तो मेरा होता है सुबह 10:30 से 11 बजे शुरू कर देती हूँ मैं किचन में खाने शाने का ना, तो लेकिन ये होता है कि उस टाइम पे तो वो घर पे मौजूद होते हैं। अगर मैं थोड़ा लेट बनाऊं तो ये होता है कि 12:30 बजे ना मस्जिद के लिए निकल जाते हैं, तो वो पहले ही चले जाते हैं मस्जिद, तो इसलिए फिर मुझे जरा इजी रहता है। तो लेकिन फिर वो बहुत लेट हो जाता है खाना बनाना, तो ये है। वैसे मुझे और पानी से भी डर लगता था ना, मुझे फोबिया था पानी में, मतलब क्योंकि एक दफा डूबते डूबते बची थी ना मैं स्विमिंग पूल में, मैं गिर गई थी।
0: अच्छा।
1: मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे तो लगा बस दी एंड हो गया, बस एकदम से जब मैं ऊपर आई ना, ओ माय गॉड ये क्या हुआ मेरे साथ, पानी ने मुझे ऊपर की तरफ देखा।
0: पानी ने अच्छा आपको ऊपर की तरफ देखा, ठीक है,
1: देखा नहीं फेंका। अच्छा। नीचे जो मैं गई
0: मैं समझा पानी ने इनको देखा, इन्होंने पानी को देखा।
1: हाँ फिर हमने देखा, देखी मैं पानी ने मुझे कहा चला फिर तेन को दिलवाई। तो लेकिन ये कि मुझे उसका भी फोबिया, फिर मुझे हाइट फोबिया भी है, फिर मुझे जहाज में जाने के जब भी मैं ओए होए होए मेरे जैसे कहते हैं त्राह निकले। हाँ कभी मेरे त्राह ही निकले होते थे। तो अभी कभी जब जाने का कभी कहे ना कहीं जाना है, तो मैं कहती हूँ मैंने नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। फिर साथ में वो लालच आ रहा होता है, हाई रुक जाके सारे इंजॉय करेंगे, मैं यहाँ बैठी रहूँ।
0: जिस चीज का इंसान को डर हो ना, वो काम आपको करके देखना चाहिए डर खत्म करने के लिए।
1: हाँ बिल्कुल करना चाहिए, वो फिर इसलिए मैं चली जाती हूँ। अच्छा फिर मैं पानी में भी ना अक्सर स्विमिंग पूल पे जाते बैठे होते हैं ना, तो मैं उसमें पाँव डाल के बैठी रहती हूँ, और वो जो उसकी सीट्स या सीढ़ियाँ जो साइड पे होती है ना, वो सीढ़ियाँ टाइप जगह बनी होती है, मैं उसमें भी नीचे नीचे आगे चलने जाती हूँ ताकि मेरा डर जरा थोड़ा कम होता चला जाए। और ऊंचाई का जो है वो मैं जब ये बाहर दूसरे शहरों में जाती हूँ जैसे कगान नरान इधर उधर, तो वो मैं ऊंचाई से ना अक्सर आगे होकर ना नीचे देखने की कोशिश करती
0: हूँ
1: ताकि मेरा डर जरा खत्म हो। मैं ट्राई जरूर करती हूँ, ये नहीं कि मैं उसको सवार करके बैठी रहती हूँ,
0: ठीक है,
1: उसको ट्राई जरूर करती हूँ।
0: ठीक है,
1: तो करना चाहिए, डर को अपने खत्म हम खुद ही कर सकते हैं।
0: ठीक हो गया,
1: थोड़ी सी हिम्मत के साथ। और बाकी ये भी डर है कि अब नैन जा रहे हैं।
0: नहीं ये कोई डर नहीं है।
1: टेंशन तो है ना, मैं एक अच्छा आरजे जब नहीं आएगा तो वो कमी तो फिर पूरी नहीं हो सकती ना, जब बेशक बहुत अच्छे आरजे और भी आएंगे, लेकिन हसनैन की जगह हसनैन ही चाहिए होते हैं ना। तब हसनैन आरजे हसनैन रजा जब नहीं आएंगे तो फिर हम हमारे कानों में अपनी आवाज गूंजती रहनी है लगता। मंडे वाले दिन हमारे कानों में गूंजा करेगा, आप सुने हैं मैं हूँ इस तब हसनैन रजा। हमारे कानों में आप ही बजता रहना ये। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुशियाँ दे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे, जो भी आपके गोल्स हैं अल्लाह उन्हें आपको कामयाबी दे। ठीक है, अच्छा है, जाना चाहिए अगर इंसान समझता है कि उसके लिए आगे कुछ और अच्छी चीजें हो रही हैं और अच्छे उसको फायदे या तरक्की, तो फिर करना चाहिए ट्राई।
0: बिल्कुल करना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू।
1: कामयाब रखे, हम आपको याद रखेंगे, आप भी हमें याद किया करना। अच्छा
0: अभी दो शोज हैं।
1: हाँ हाँ ना, दो शोज
0: यूं चले जाने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल,
1: सलामत रखिए, बहुत शुक्रिया सबके लिए, तो याद रखने के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह हाफिज़।
0: और भाई जी कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, अभी दो तीन कॉल्स जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक ऐसी लाइन के ऊपर कॉल्स आ रही हैं ज्यादा, जो कि लाइन जो है वो चल नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो, मैं ठीक हूं
0: जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। कौन कहां से बात करें?
2: शबीर गुजरखान तो
0: जी। शबीर भाई क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं चौकीदारी कर रहे थे, डर लगा रहता है हर टाइम ही के आज बढ़ता नहीं कड़ा इम्तिहान है, कुत्ते आ जाएंगे, डाकू आ जाएंगे, हर रोज ही मतलब कि इम्तिहान इम्तिहान है। इस डर नु मैं खत्म कर रहा है, जब सुबह मेरी चौकीदारी खत्म होती है फिर अगला दिन आ जाता है, फिर इम्तिहान ही पै जाने। एक दो बारी कुत्ते मैंने वड्या भी है, बस ये
0: दो कॉल और शामिल करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो और जी 051-111-111 and 051-920-2540 पर अभी कॉल्स आ रही हैं हमारे पास और अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं नाम दोबारा बताइएगा साजिद बात करें लाहौर से जी साजिद क्या कहना चाहेंगे
3: कहते थे जाने वाली चीज का हकाम क्या करें तो आपका गम तो जरूर है डर भी था यही होता है मुझे तो डर लगा रहता है कि हमारे आरजे बहुत अच्छे आए एफएम ये नहीं कह रहा वाले और चैनल जो चल रहे हैं ना उनपे बड़े बड़े अच्छे आरजे आए जो हमें बहुत कुछ सिखा गए
0: लेकिन लेकिन किसी और डर की बात करें ना वो फिर बहुत सारे लिसनर्स आ रहे हैं वो एक ही बात करी जा रहे हैं
3: हाँ तो नहीं वो मैं आपको बताऊं मैं डर की बात बताऊं मैं थोड़े दिन की बात है वो खाना और कैंटीन है ना जब खाना मिलता है ना वो मैंने खाना लिया और पानी की बोतल खाने के फ्रिज में निकालने लगा मेरा पीछे खाना किसी ने उठा के वो गायब कर दिया
0: अच्छा
3: जब मुड़के आया उस टेबल पे देखा खाना नहीं था
0: ओके
3: अब मुझे डर लगा रहता है जब भी मैं खाना खाता हूँ तो एक आंख में तो जब मैं फ्रिज से बोतल निकालता हूँ ना मुझे डर ये होता है कि खाने का टाइम होता है खाना नहीं मिलेगा कहाँ से खाएंगे तो वो डर जो है ना मुझे बार बार सता है खाना जो है ना जब मैं लेता हूँ तो मेरी एक आंख जो ना टेबल पे होती
0: है अच्छा
3: ठीक है तो ये ऐसा हो जाता है इंसान के लिए तो पता है क्या अच्छा आरजे चला जाए ना उसकी कमी जो है ना कभी नहीं पूरी होती आने वाला जो भी है ना इस टाइम तो वनोबार पे मैं सुनता हूँ और कुछ नाम है
0: अच्छा चले
3: प्रोग्राम करते हैं
0: हाँ जी
3: कुछ तो ऐसे हैं बस पता नहीं सिफारिशी बरसी की है कि पता नहीं
0: क्या अच्छा अच्छा चले वो डिटेल में हम नहीं जाते तो अभी वक्त भी मेरे पास थोड़ा कम है
3: जी जी तो आप जा रहे हैं खुश रहे हैं अल्लाह ताला आपको खरीद से रखे आप
0: थैंक यू
3: कामयाबी से तो हम तो दुआएं करते रहेंगे आपके लिए आपने बहुत सारा वक्त हमारे साथ गुजरा रातों को हमारा भी जागना होता था आप भी आते थे और भी आरजे आते हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं
0: थैंक यू वेरी मच आपका भी क्या आप लोग सुनते रहे हो थैंक यू वेरी मच
3: थैंक यू अल्लाह
0: हाफिज ऑलराइट जी एक कॉल और मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा सो देखते हैं हमारे साथ लास्ट कॉलर कौन है प्रोग्राम के अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो जी
4: वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम आवाज ठीक नहीं आ रही है
4: जी
0: हेलो जी बोलिए क्या आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही
4: है जाने वाले से जाने वाले से जाने से पहले मुलाकात हो जाए ये पिछली दफा बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे चल दिन है ये जो आपको दिक्कत मुश्किल हुई जितनी आप तफा था खा सकते अपने बच्चों को ये शामिल के मौके कुछ लोग होते ऐसे लोग जिनको वाकई इंसान बहुत मिस करता है उसकी जो कभी का फरमान है ना कि हो तो ऐसे रहो कि जब वहाँ से
0: अच्छा पहले पहले पहले अपना नाम बता दें क्योंकि और आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही इकबाल भाई बात करें जर्मनी से जी छोटी बात की वक्त में पास थोड़ा कम है थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और जी इकबाल भाई थे हमारे साथ जर्मनी से, आज इनकी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही थी, आई थिंक मैं लाइन में कुछ प्रॉब्लम था, और जहाँ पर कॉल्स का सिलसिला यहाँ पर रोकते हैं। आज आपसे मैं सवाल किया था कि मुझे बताएं कि आप क्या आपके दिल में कोई ऐसा डर है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो, तो अपना फीडबैक आप मुझे दे रहे थे, अपने व्यूज़ जो है आपके मेरे पास आ रहे थे। एनीवेज़ ये अभी लास्ट ट्रैक मैं प्रोग्राम में प्ले करूँगा आपके लिए, मैंने ट्रैक जो है वो क्यों किया हुआ फरहान सईद की आवाज़ में, और आपका मेरा साथ जो है मंडे मिडनाइट्स को रहता है रात को 12 से लेकर 2 बजे तक एफएम मोरवा इंटरनेशनल में फिलहाल ठीक है। और सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर सकते हो मेरा नाम लिखे हसनैन रज़ा HASNAIN स्पेस RZ हसनैन रज़ा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, आप मुझे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो, कोई बात करनी हो।
5: तो मैं कभी नहीं था, क्या हुआ है मुझे, रास्तों पे मैं चलते।
0: सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।

listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

0: थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लिजाती चली आई थी मूसा के पास आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो।
1: قالت

उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इंशाल्लाह नेक लोगों में पाओगे।